नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक सम्मत 1948 के अश्विन मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 8 अक्टूबर 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी समय, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य।

0: लक्ष्य हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों का समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, जीवन में गिरना बुरा नहीं, गिरकर फिर उठना सबसे बड़ी हिम्मत है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 335। पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रही हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए इस श्रृंखला का 8वां भाग। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन, संवादिका हैं ममता सिंह और संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। सुबह 7 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है दीपा महेश्वरी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक है। पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री राजश्री पर। आलेख और स्वर जी शाम का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 पिटारा में सुनिए आज के मेहमान फिल्म लेखक निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग है रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। यादों की महफिल सजेगी 12:05 से। सुरीला सफर तय करेंगे 1 से।

दोपहर 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे हेलो फरमाइश। संपादन है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 7 बजे आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम और उसके पहले 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए, गायक भवदीप जयपुरी वाले से निमी मिश्रा की बातचीत, प्रस्तुति कांचन प्रकाश। 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटिका हम किसी से कम नहीं, लेखन है चंद्र किरण सुनार किसे का और निर्देशन है चंद्र प्रभा भटनागर का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक, आपके लिए कार्यक्रम रात 9 बजे। 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ।

वानर और आसुरी सेना का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वानर भालुओं का संहार करते रावण को लक्ष्मण ने चुनौती दी। रावण तो अपने पुत्र घाती को ढूंढ ही रहा था। उसने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। लक्ष्मण ने उसके लाखों अस्त्र काट डाले, उसके रथ को वाणों से खंडित कर दिया। 100-100 वाण उसके 10 सिरों पर मारे और उतने ही वाण उसकी छाती में। रावण मूर्छित हो गया, किंतु मूर्छा अवस्था से उठते ही उसने ब्रह्मा से प्राप्त अस्त्र लक्ष्मण को छाती में मारा, जिसके प्रहार से वे धरती पर गिर पड़े। रावण ने उन्हें उठा लेने की चेष्टा की, किंतु शेष नाग के रूप में जिसने पूरे भुवन को एक तिनके के समान अपने फन पर उठा रखा है, उसे भला रावण कैसे उठा सकता। रावण को लक्ष्मण के शरीर को उठाने का प्रयत्न करते देख हनुमान जो आगे आए तो उसने उन पर घूंसे से प्रहार किया। अपने को संभालते हुए हनुमान ने उसे जो घूंसा मारा तो रावण एक बार फिर मूर्छित हो गया। इस बार मूर्छा टूटने पर रावण यज्ञ करने के लिए अपने महल की ओर

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 335।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। श्रोताओ, जिनके कंठ में संगीत है, शब्दों में साहित्य है, अभिनय में जीवन है और साधना में अपने देश की आत्मा बसती है, ऐसे कलावंत का सानिध्य पाना किसे नहीं अच्छा लगेगा। शेखर सेन हमारे विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और तबले पर इनका साथ निभा रहे हैं आशीष विश्वास जी, जिनकी उंगलियों की थाप ऐसी है कि देखते ही बनती है। तो हम आशीष विश्वास जी का एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। आशीष जी नमस्कार। शेखर दादा, एक बार फिर से स्वागत है आपका, नमस्कार।
2: नमस्कार, और सभी संगीत सरिता के श्रोताओं को एक बार पुनः प्रणाम। आज की कड़ी में मैं चाह रहा हूँ आपको एक और भारतीय संगीत के एक महान विभूति से
1: जी
2: आपका दोबारा परिचय करवाऊं, और इनका

0: नाम था पंकज कुमार मल्लिक या पंकज मलिक
1: जी जी,
0: जिन्होंने न केवल बांग्ला में और हिंदी में संगीत निर्देशन दिया और कई अमर गीतों की रचना की, बल्कि इन्होंने तमिल फिल्मों में भी संगीत दिया।
1: जी जी,
0: आप उस युग की सोचिए कि जिस समय 50 की शुरुआत में भारत में इस तरह का आदान प्रदान हो रहा था कि एक बंगाल के संगीतकार जाके तमिलनाडु में संगीत दे रहे थे
1: जी।
0: तो उनकी एक फिल्म है उनके संगीत निर्देशन में, 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था यात्रिक
1: जी,
0: इसका एक गाना था। मुझे ये रचना बहुत पसंद है, ये मेरे जन्म से 9 साल पहले की बंदिश है, लेकिन फिर भी कुछ रचनाएं होती हैं जो सुन सुन करके आपको एक अलग अनुभूति होती है
1: जी।
0: तो ये गाना था इस तरह का।

0: राग विहाग पर ये रचना आधारित है
1: जी,
0: लेकिन इसको फिल्म यात्रिक में गाया था, उस समय गायक थे बीरेन बल
1: जी,
0: बंगला में बीरेन बॉल उनको कहेंगे, तो बीरेन बल जी की आवाज में। मैं चाहूंगा कि सारे श्रोता अब जो ओरिजिनल गाना था
1: जी,
0: वो सुनिए, राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।

0: शेखर दादा, राग विहाग का आपने जिक्र किया, तो राग विहाग के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे और कुछ गाकर बताएंगे?
1: राग विहाग हमारे उत्तर भारतीय संगीत का बड़ा ही प्रसिद्ध राग है, और अगर कोई गायक ये कहे कि मुझे विहाग नहीं मालूम
0: जी,
1: तो पक्का जानिए कि उन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा,
0: नहीं सीखा।
1: तो ये उस तरह के रागों में से जो हमारे यहाँ कुछ राग बड़े कहे जाते हैं जो जिनको आप 2 घंटे 3 घंटे गा सकते हैं, विहाग, यमन, हाँ। दरबारी, मालकौंस, उस श्रेणी का ये राग है।

0: दादा, आपने राग विहाग के बारे में बड़ी ये जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, अब बताइए अब क्या सुनवाए अपने श्रोताओं को।
1: जैसे हमारी हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में राग विहाग बहुत महत्वपूर्ण राग है, वैसे ही एक राग बड़ा ही मधुर है और उसका नाम है राग श्री
0: जी।
1: हमारे यहाँ इस राग को बहुत कठिन राग भी माना गया है और संगीत में जो तंत्र साधना होती है या माँ की उपासना होती है, शक्ति की पूजा, उसमें जिन रागों में हम साधना करते हैं उसमें से एक श्री राग है
0: जी।
1: बड़ा सिद्ध राग है। और जिन गायक की आवाज में आपको मैं ये रचना सुनाने जा रहा हूं, उनका जन्म हुआ था 1921 में और उनका देहांत हो गया था दुर्भाग्य से 1955 में
0: जी।
1: तो सिर्फ 34 वर्ष वो जिए और ये थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के एकमात्र सुपुत्र, डीवी पलुस्कर जी के नाम से हम उनको जानते हैं। और बहुत छोटा सा जीवन होते हुए भी, जबकि वो जब बड़े हो रहे थे तब तक उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उन्होंने संगीत की शिक्षा पाई अपने पिताजी के ही एक शिष्य विनायक राव पटवर्धन जी से
0: जी जी
1: और फिर उन्होंने जितने भी हमारे पास आज रिकॉर्डिंग्स हैं पलुस्कर जी की, चाहे वो पायो जी मैंने हूं या ठुमकी चलत रामचंद्र हो या चलो मन गंगा जमुना तीर हो, जानकी नाथ सा, ये सब डीवी पलुस्कर जी की आवाज में है। पर मूलतः जो डीवी पलुस्कर जी थे वो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के गायक थे और उनकी एक बंदिश बहुत ही मशहूर है राग श्री में, और वो मैं चाहता हूँ। राग श्री बड़ा सुंदर राग है, उसका छोटी सी झलक आपको सुना रहा हूँ।
0: जरूर सुनाएं।

मैं चाहूंगा कि डीबी पलुस्कर जी के स्वरों में आप सुने, अद्भुत अनुभूति आपको होगी और आपको लगेगा कि सचमुच में संगीत का जो आध्यात्मिक रंग होता है, जिसको हम नाद ब्रह्म कहते हैं, उसकी अनुभूति आप कर सकेंगे। हरि के चरण

0: और अब हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि इस अद्भुत रचना के बाद हमें अनुमति लेनी होगी अपने श्रोताओं से। लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और कल हम मिलेंगे अगली कड़ी में।
0: जी,
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टैक्सी ड्राइवर, इस फिल्म के गाने के साथ किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: गली की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, ब्रेकिंग पहिया, अरे पंपिंग।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं शबाब फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: कार्यक्रम का अगला गाना तुलसीदास फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाजों में जीएस नेपाली के बोल और संगीत है चित्रगुप्त का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए संतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रही हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं नास्तिक फिल्म से ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, प्रदीप के बोल सी रामचंद्र का संगीत।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोदान फिल्म से महेंद्र कपूर, गीता दत्त और साथियों की आवाजों में अनजान के बोल रविशंकर का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
2: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
2: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
2: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की।

0: उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: उषा मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे हैं रानी रूपमती फिल्म से गाना, भरत व्यास के बोल, एस एन त्रिपाठी का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमें रही प्यार के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दूर का राही इस फिल्म के गाने के साथ, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट

0: तो आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: कार्यक्रम का अगला गाना प्रिंस फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फारूक कैसर के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के। अगला गाना सुनते हैं तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं एक फूल दो माली इस फिल्म से गाना। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में प्रेम धवन के बोल और संगीत है रवि का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक को स्वचलित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का

0: तहमिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। यह कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैक वाटर्स ने वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशन और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबदान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरु मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, इसी है नहीं। बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं।
2: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
3: न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा,
4: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। अब्दुल
2: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
2: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
4: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
2: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मानुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में

0: 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। आरबीआई द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडप में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानु शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आसमान को देखकर अक्सर हमारे मन में उड़ने की इच्छा जागती है, लेकिन किसी देश के लिए आसमान सिर्फ उड़ान भरने की जगह नहीं, उसकी सुरक्षा का प्रहरी होता है। जल, थल और नभ देश की सुरक्षा के ये तीन मजबूत स्तंभ हैं, और नभ की जिम्मेदारी संभालती है हमारी भारतीय वायुसेना। जी हाँ, आज 8 अक्टूबर, आज है भारतीय वायुसेना दिवस, वो दिन जब हम उन जाबाजों को सलाम करते हैं जिनकी निगाहें आसमान पर और दिल तिरंगे के साथ धड़कता है। वायुसेना की ताकत सिर्फ उसके लड़ाकू विमान में नहीं, असली ताकत है उन वीरों का साहस जो देश के लिए हर चुनौती के सामने डटे रहते हैं।

उड़ान सुनने में कितना खूबसूरत शब्द है, लेकिन एक वायु योद्धा के लिए उड़ान सिर्फ रोमांच नहीं, जिम्मेदारी है। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते वक्त हर पल सतर्क रहना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी तक लगा देना, इसके लिए सिर्फ पंख नहीं हौसला चाहिए। वायुसेना में शामिल होने वाला हर जवान अपने भीतर एक ऐसा दिल लेकर उड़ता है जिसे ऊंचाई डराती नहीं बल्कि चुनौती देती है, क्योंकि कुछ उड़ानें मंजिल के लिए नहीं होती, कुछ उड़ानें वतन के लिए होती है।

वायुसेना की कहानी सिर्फ आसमान में दुश्मन के मुकाबले की कहानी नहीं है। जब बाढ़ में गांव डूब जाते हैं, जब भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, जब किसी दुर्गम पहाड़ी इलाके में लोग मदद का इंतजार कर रहे होते हैं, तब भी आसमान से मदद उतरती है। कहीं हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित निकालते हैं, कहीं भोजन, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाते हैं, और कहीं हमारे जवान अपने साथियों को कठिन से कठिन स्थान तक पहुंचाते हैं। योद्धा हो या आपदा, सीमा हो या संकट, भारतीय वायुसेना ने बार बार अपने साहस और सेवा का परिचय दिया है। और जब इन वीरों को आकाश की ऊंचाइयों पर तिरंगे के साथ देखते हैं तो मन में बस एक ही भाव आता है, इनकी उड़ान भले ही आसमान में हो लेकिन इनके दिल में हमेशा तिरंगा रहता है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। महान और प्रभावशाली अभिनेता में से एक माने जाने वाली नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे। भारतीय सिनेमा का एक सितारा आज अस्त हो गया। उनके दमदार अभिनय की छाप उनके हर रोल में नजर आई। उनकी दमदार आवाज में बोले गए संवाद अलग ही प्रभाव छोड़ते थे।

कैसे बताऊं मैं तुझे मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो, मेरी हर बात में तुम हो, मेरे दिन रात में तुम, सुबह में तुम, शाम में तुम, सोच में तुम, काम में मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां, तुम हो मैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ, कैसे बताऊं मैं तुम्हें?

अग्निसाक्षी, लवेरिया, नट सम्राट, वेलकम जैसी चर्चित फिल्में करने वाले नाना पाटेकर जी हमेशा याद रहेंगे। आइए सुनते हैं उनकी हाल ही की फिल्म वनवास से ये गाना, नाना पाटेकर की आवाज़ में।

नाना पाटेकर की प्रतिभा का कैनवस बहुत ही विशाल था। उनकी फिल्म प्रहार, अंकुश, प्रतिघात, अग्नि परीक्षा जैसी फिल्में उनकी सशक्त अभिनय

से एक नई पहचान उन्होंने छोड़ी। उन्हें अपने अभिनय के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर मराठी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनकी हाल ही की परिचित फिल्म वेलकम से ये गाना।

0: श्वेता पंडित, आनंद राज आनंद और की आवाजों में आप सुन रही थी वेलकम फिल्म से गाना आनंद राज आनंद की बोल और अनजान सागरी का संगीत।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

चित्रलो कार्यक्रम पे आइए सुनते हैं अगला गाना सुल्तान फिल्म से। मीका सिंह की आवाज में इरशाद कामिल की बोल, विशाल शेखर का संगीत।

हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 1932 में इसी दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। देश की सुरक्षा से लेकर युद्ध और आपदा के समय राहत तक भारतीय वायुसेना ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। आज का दिन हमारे वीर वायु योद्धाओं के साहस, समर्पण और बलिदान को समर्पित है। आसमान की ऊंचाइयों को अपना बनाकर देश की रक्षा करने वाले हमारे वीर वायु योद्धाओं को एयरफोर्स डे पर सलाम।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अगला गाना बैंग बैंग फिल्म से। एश किंग, शिल्पा राव और शेखर अफजियानी की आवाजों में अन्विता दत्त और कुमार के बोल संगीत है विशाल शेखर का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्र सेवा पर आप सुन रही हैं चित्रलोक कार्यक्रम। राज फिल्म से गाना सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजों में सईद कादरी के बोल, राजू सिंह का संगीत।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश।

0: पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

विविध भारती राष्ट्र सेवा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का अगला गाना उंगली फिल्म से गुलराज सिंह की आवाज में, गुलराज सिंह का म्यूजिक और लिरिक्स हैं मनोज यादव के।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे हैं द स्काई इज पिंक। इस फिल्म से गाना गुलजार के बोल, प्रीतम का संगीत।

अरिजीत सिंह के साथ आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा की आवाज फिल्म द स्काई इज पिंक से। कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं जवान फिल्म से अरिजीत सिंह के साथ शिल्पा राव की आवाज, कुमार के बोल, अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है, और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना सुनते हैं।
1: Happy I,

जयश्री वी शांताराम की पत्नी थी, जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम हैं। राजा राम वानकुंद्रे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म थी।

0: सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपना गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।
1: तुम

0: हिसाब दो।
1: सन 1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में राशि ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र।

1965 में आई फिल्म दो दिल इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर।

0: बात 1966 की है, फिल्म आई सगाई। ये एसडी नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी।
1: खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न।

0: अब तुमने खफा ना होना अगर मैं पूछूं।
1: मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में राजश्री के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेन वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राजश्री ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत एसएच बिहारी के थे और संगीतकार थे ओपी नैयर।

सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा यह तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

अब राजश्री की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कलाकार थे।

अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहागरात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे। जीपी सिप्पी।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राष्ट्रीय की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई हैं।

0: आज हमने अभिनेत्री राशि के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई,
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही है ममता
3: सिंह।
0: आइए सुनते हैं इस दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी।
4: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। ये हैं युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
4: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
5: धन्यवाद।
4: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
5: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कहे जा सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरविंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, जिसमें श्री नीलकंठ बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
4: जी।
5: इसके अलावा वो मतलब हर तरह के चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे, पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते ही रह जाता है, तो ये भी एक चीज थी। इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए, पर मैं खुद से उनको फॉलो करता हूं कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहां से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोली गांव है उत्तर प्रदेश में, जहां पे उन्होंने

0: साधना अर्ली एज में कि वो अपने फिल्म में दिखा
1: जी, बिल्कुल।
0: तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी, क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूं। और प्रतीत होने से ज्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे, तो ये आई थिंक उद्देश्य था। इसलिए हनुमान अंश और श्री नीमकरोली बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई।
1: तो नीमकरोली बाबा को एक भक्तिभाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार न करते हो, और रहस्य के रूप में भी। तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियां आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
0: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज्यादा प्रयास किया है, क्योंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं
1: जी।
0: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है, वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं, आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपकी लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 10 ईयर्स और 20 ईयर्स कहां से कहां पहुंचेगा। लाइक मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूं तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम 20 इयर्स बैक। तो इसको लीला बोलते हैं, तो इसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं। चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है, वो होते ना कि हवा में ऐसे कुछ करते हैं, कुछ ले आते हैं, तो चमत्कार ही व्यक्ति लोग उनके उनको चमत्कारी बोलते हैं पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उन्होंने हरदम बोला कि हनुमान जी ने किया होगा, आपका राम जी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, ऊपर वाली कृपा होगी, तो इस तरह से। तो मैं मानवी उनके साइड को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयत्न मैंने किया है।
1: जी, ये फिल्म में आपने दर्शाया भी है जब वो क्रांतिकारी अंदर कमरे में है और वो बेल बजाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है, तो ये क्लियर है कि जैसे वो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं या इंट्यूशन हुआ है, इस बात को आपने दर्शाया भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज का जो युग है इसमें जरूरी है कि चमत्कार से दूर जाया जाए। और आपने बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, MBBS पढ़ रहे थे और अचानक फिल्मों की ओर रुख कर लिया, कैसे ये संभव हुआ, कहां से आपके मन में ये बदलाव आया?
0: मुझे लगता है कि लखनऊ, जब मैं रहने वाला बुंदेलखंड का हूँ, वहीं पढ़ाई पला बड़ा भी वहीं पे हूँ और मैं पढ़ाई भी वहीं से की है, जालौन जिले में एक छोटी सी जगह है कोंच, वहां पे मैंने अपनी 10+2 तक पढ़ाई की, उसके बाद एक साल ग्वालियर था, वहां से लखनऊ आ गए और लखनऊ में जो एक जैसे बोलते हैं वहां की जो सभ्यता है, वहां की जो अपनी अपनी तहजीब है
1: जी।
0: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया, तो पहले तो भाषा सुधरी वहां जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है, तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूजिक में इंटरेस्ट मेरा आया। मैं जिस गली में रहता था वहां पे प्रताप नारायण मिश्र जी जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी हवेली जस्ट घर के सामने थी, छनूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना वो गली का ही पार्ट थे, तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया, फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में गायकी में।
1: अच्छा।
0: और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया, एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था वो सडनली स्फुटित हो गया, और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था, तो तैयारी करता था शाम को 6 बजे से, वहां की क्लास होती थी, तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश हो जाता था, तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था, और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता रहा है, अमरनाथ बली नाम का एक वहां पे एक प्रेक्षागृह है, तो वहां पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था
1: जी।
0: तो वो एक रूटीन बन गया, और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने जाऊं, तब तक मेरा काफी इंटरेस्ट चला गया था इसमें, तो

0: मेरी माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना। एंड मेरा जब जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था,
1: जी
0: तो
1: जी
0: गोरखपुर का थोड़ा कला वगैरह से थोड़ा सा कम लेना देना है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर और हमारा कॉलेज भी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज भी शहर
1: ग्रामीण परिवेश है, बिल्कुल आंचलिक
0: जी, और शहर से बाहर भी है, तो वो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था। तो शहर जाने के लिए, फिल्म देखने के लिए जाते थे हम लोग बस। बाकी वो हमारा जो 12-15-50-40-50 एकड़ की जो कॉलेज कैंपस था, वो वही दुनिया थी हमारी।
1: जी
0: तो उसके अंदर की जो सो खैर, कहने का मतलब ये है कि एमबीबीएस किया तो उस बीच में जितनी भी क्रिएटिव परस्यूट्स थी उनको फॉलो भी किया वहां पे, बट इवेंचुअलिटी में अब होता ये कि आप किसी चीज के साथ में बहुत समय तक रहने लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था।
1: जी जी
0: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी, एज एन द वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है, ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया।
1: जी
0: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं, और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीने के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं, और वहां से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई, जिसे हनुमानंज की यात्रा जिसे बोलेंगे, वहां से शुरू हुई। जी
1: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं, और हनुमान अंश में आपकी आवाज में एक गाना है जो काफी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनना
0: वही आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं, हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूं।
1: जी जी
0: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूं। मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे।
1: जी जी।
0: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा, उनकी फिल्म जो है ना मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब लिटरली उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
1: क्या बात है।
0: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूं। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूं अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो मैं अपने लिए गाता हूं, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को, बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई विल से कि इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट यू स्पेसिफिकली आस्क मी एनी ऑफ द सॉन्ग, आई लव ऑल द सॉन्ग्स, आई कैन सिंग एनी वन ऑफ इट, आई वोंट माइंड।
1: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
0: चलिए, तो मैं पहले हृदय में जिनकी सीतारामी गा देता
1: हूं। जी, एक लाइन सुना दीजिए।
0: एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं।
1: जी।

0: एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के। तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया? कुछ पहले से सोच रखा था या फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी,
1: जो फिल्म में आपने देखा है। लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के फैमिली मेंबर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कजिन, मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह है, उनकी माता जी, ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया है और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था। और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहां पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक अलग चीज बन गई थी जहां पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहां पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था। पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं। पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयूज, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले, फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए। तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं।
0: जी,
1: तो एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा। तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
0: जी जी जी।
1: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है। अगर आप वो, उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मांझी उससे के, मांझी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पाठ क्यों है? ओके, ओके। तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है। तो क्या? तो तुमरे भजन राम जी को पावे। तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है? तो कहते हैं कि नहीं, माँ से था क्यों? बोले माँ राम जी के पास चली गई। और करना क्या चाहते हो? राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई। तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से। वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
0: अभी सुनाइए
1: हनुमान चालीसा चैट,
0: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है। तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहां पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए। तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
1: नहीं
0: तो
1: हनुमान चालीसा तो मैं गा दूंगा, बट मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइन्स। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ आप बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री निकोले बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहने, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। तो आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
0: ईस्ट
1: को ही करते हैं। भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। दैट इज वन। अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुम्हारे पास।

0: So you have the cosmic code or the code, the formula to reach Ram. सदा रहो रघुपति के दासा. तीसरी लाइन है तुमरे भजन राम जी को पावे. एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो. ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसों सुरभूप. हृदय भसों सुरभूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है. इसीलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसे लाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता, आठ सिद्धियां आप ही दे सकते हैं. और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें जो सिद्धियां जिनकी प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई हैं. क्योंकि हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन दाता असबर दिन ऐसा वर सीता दीन दीन जानकी माता
1: जी.
0: तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको ये वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां

0: एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन दाता असबर दिन ऐसा वर सीता दीन दीन जानकी माता
1: जी।
0: तो जो जगत जननी माता सीता हैं उन्होंने आपको ये वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम रोज जसगावे अस्क श्रीपति कंठ लगावे। जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम रोज जसगावे। इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी हैं
1: जी,
0: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं। तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे आपको वहां पे जो टेम्पल्स हैं वो पेरू वगैरह में, वहां पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000 साल पुराने टेम्पल्स हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: ही वॉज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट इज ही इज पॉपुलर कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे बराक ओबामा।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं, डर से निजात पाने के लिए। हम सब भी वो करते हैं, डर लगता
0: था, हनुमान चालीसा
1: अंधेरे कमरे में पार करना है
0: करेक्ट,
1: तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना
0: है। वो फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप, लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है
1: जी जी।
0: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना, और आपको जिस भी आप देवता जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे। जी
1: बिल्कुल, सकारात्मक भाव पैदा होता है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते
0: हैं? मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ।
1: जी जी प्लीज सुनाइए।
0: जी जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुं लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जय सिया राम जय सिया राम

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे, बट
1: गाने की बात चलिए हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपके पीछे की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन की गलियारों में। वहां आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया, तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर लगा के फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
1: डॉक्टर इंजीनियर
0: आईएएस, तो मेरा थोड़ा पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं एक पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूट्स डेवलप फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियां पता चली मुझे, एंड दैट टुक मी। वरना बचपन चंबल में बीता तो वहां पे बुंदेलखंड में, तो जहां पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी तिशु की, एक और तिशु के बाद में अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते ना कि परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया जिसमें 30 सीटें थी, 30वां नंबर रैंक मेरा आया।
1: अच्छा।
0: और वो तेज सिंह टाक जी वहां पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन। तो 4-5 साल वहां पे फिर वो रॉक वॉक गाते थे और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4-5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो practicing and working on it, and I do it primarily for myself. तो मतलब वो completely मेरे उसको commercialize करता नहीं हूँ, music को कुछ भी commercialize नहीं करता. So it's a very soul satisfying sort of an event for me every day. लेकिन neck for music, finding great music, recognizing great talent, musical talent is probably one art I developed over the period of मतलब multiple years, decades I'll say. तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: था,
0: तो बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना फोन नंबर भी।
0: हाँ जी जी जी। तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक ग्रेट साउंड 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, अफेक्ट भी करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड

0: इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर. तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज एन इंडस्ट्री के लिप सिंक नहीं करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है. गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का. थर्ड वीक ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं. अच्छा आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले दो वीक तक कोई गाना चला ही नहीं और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी. फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू गए चौथे वीक से
1: और गाने बजने
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया.
1: हाँ, और रील बनने लगे,
0: रीले बनने लगे, हजारों की संख्या मतलब अनगिनत है. तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया. अब जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है. मतलब कॉन्स्टेंटली इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी. 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है.
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना दे श्रोताओं को.
0: जी मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ ऐसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ. जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि सप्तऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभो शिव शंभो.

0: बम भोले, भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो
2: अरे वाह
1: उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना सिनेमा, हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज है उनके भी म्यूजिकल तेज। तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का, हाँ थप्पड़ के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे और उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की है, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़,
2: तो ये अभी की फिल्म है लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माई गॉड क्या क्या एल्बम उन्होंने चूज किए। तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते हो उस पर इंटरफेयर नहीं करते। और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लिख।
1: अच्छा।
2: फिल्म का नाम था उस वक्त, उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसाड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को। लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी है और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ। और मेरी बात उनसे दो साल दो बार ही होती है और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतना ही उनके लिए हृदय में उतना ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
2: जी।
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के
2: जी जी,
1: तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, क्यों बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
2: हाँ तो मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ जैसे मैंने बताया, बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे फर्स्ट बोली है क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है। तो बुंदेली मुझे चूंकि, तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
1: जी,
2: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को लोग जो बनाते तो उनको फॉलो कर लेता था। तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन है
2: वो है। और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते हो, किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लगा गाता है। अच्छा मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर थी वर्सोवा बीच पे है वो। मैंने कहा ये कहां से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू, बट चूंकि ये मौका था कि वहां पे था तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा और हैपेंस सो दैट इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो, इन आवर ऑफिस एंड स्टूडियो। फिर हमने उसके बाद में सेटल किया कि भाई कब जा रहा है वो, क्या है कैसा, तो पता चला कि 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे, तो उसके

0: पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया। मैंने कुछ इसमें लाभ लग गई बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट। और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पे कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पे कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमानो, बहुत गूढ़ शब्द है उसमें।
1: जी जी,
0: सागर में नैया डार दी, कौन उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई, अरे काहे की वो नाव बनाई काहे की पतवार,
1: जी जी बिल्कुल याद है,
0: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दई। सो बेसिकली इट्स अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डार दई का मतलब, और हनुमत कौन है खेवनहार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवनहार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें। अब आंसर क्या है, सीता सखी वामे बैठन हारी
1: जी।
0: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवनहार कौन है, हनुमत खेवनहार सागर में नैया डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे आप ही खेवनहार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंप्लीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है, तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड। मैं आपको बता रहा हूं पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, 15 दिन पहले 2.5 लाख रील से भी पता नहीं हुई, अभी देखेंगे तो लगता मिलियन हो गई या 5 मिनट के हो गए।
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट
0: गाने, हाँ।
1: गाने लोगों के जुबान पर, बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना, और गाने हिट हो रहे हैं, रीले बन रही, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं
0: जी।

0: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूं, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है, उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
0: दिख जाता है
1: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एक दिन तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
0: क्या बात है,
1: मैं सब कमरे से बाहर। सो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो जिसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो शट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है, देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव, जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: मोबाइल में है, जबकि
1: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट फील होता है ना आपको,
0: जी,
1: आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है वो, हाथ से जब आप लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल दैट हैपेंस। एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है,
0: बिल्कुल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन
1: होते रहते हैं।
0: सही कह रहे हैं, और ये बात है कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए?
1: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम
0: फेवरेट,
1: प्रेम पुजारी का गाना है,
0: साहब का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन संगीतकार, तो सुनते हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना था और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं। बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रेवल कर रहा था एक कालपी से उरई के बीच में, और वहां पे रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रांग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली वो ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूं मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रांग मेमोरी है, जहां पे फिर मैं देख रहा हूँ बड़ा सा खोड़ा और उस पर एक छोटी सी महिला, उसने जो है ना पट्टा बांध रखा है, उसके हाथ में बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर अ किड अचानक से इतना कि कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं और फिर वो चली जाती हैं वहां से। किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जब मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी, वो मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहां पे रानी लक्ष्मीबाई जब वहां से निकली थी और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहां पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनके। तो ये सारी चीजें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रिज की लठमार और एक थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है
0: जी, जी।
1: तो वो लहजा जो है ना मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है, स्पेशली पानसिंह तोमर और बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर, इनफैक्ट वो नत्था वो यूज टू स्पीक उसमें पीपली लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो
0: जी,
1: एक
0: जी,
1: एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज मित्र थे जिनके जिनकी अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक्चुअली पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में, वो गाने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए ही बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना, सासा आले हंसा चाले अवधि है, फिर ये ब्रिज है, आवागमन थोड़ा ब्रिज और इसके बीच का है, आवागमन मिटा दो भोले शंकर। तो ये सारे गाने जो है ना एक एक करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
0: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।
2: हर हर महादेव।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
6: विविध भारती से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, आज हमारे बीच फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे। उन्हें याद करते हुए उन्हीं की यादगार फिल्म गुलाम ए मुस्तफा से आपको ये कव्वाली सुनवाते हैं।

आनंद बख्शी की लिखी ये कवाली आप सुन रहे थे गुलाम मुस्तफ़ा फिल्म से, इकबाल साबरी और अफजल साबरी के साथ साथियों की आवाज़ें थीं।

0: पंकज उदास को अभी आपने सुना, तर्ज थी पंकज उदास की।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: आई लव फाल्गुनी इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे। फाल्गुनी पाठक की आवाज थी, महबूब के बोल ललित का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

शमीम जयपुरी की ये रचना आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज में। ये थी पूर्वी दादरा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम रंग तरंग।

0: फिल्म निकाह की यह गजल आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में, हसन कमाल के बोल थे, रवि का संगीत था।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

अमजद नदीम की तर्ज थी। शब्बीर अहमद का लिखा यह गीत आपने सुना, रेखा भारद्वाज की आवाज में। फिल्म थी जिंदगी 50-50।

फिल्म लम्हे में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। श्रोताओ, रंग तरंग ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। रंग

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के

0: लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। चार दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि बैठक में उन्होंने संतुलित और सार्थक परिणामों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ताध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी।
1: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओ, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें याद करते हुए आपको सुनवाते हैं उन पर ही फिल्माया गया ये गीत।

0: फिल्म वनवास से ये रामधुन आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों की आवाजों में, विजय प्रकाश और महालक्ष्मी अय्यर की भी साथ में आवाजें आपने सुनी। सईद कादरी के बोल थे, मिथुन की तर्ज थी। श्रोताओ, भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे। अपनी सहज और बेबाक अदायगी से उन्होंने हम सभी का दिल जीता। हिंदी और मराठी सिनेमा के लोकप्रिय कलाकार रहे नाना पाटेकर के लिए जाने माने फिल्म निर्देशक पार्थो घोष, जिन्होंने फिल्म 100 डेज, अग्निसाक्षी, तीसरा कौन, गुलाम मुस्तफा जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं नाना पाटेकर के लिए।
1: नाना पाटेकर साथ कैसा आपका संबंध रहा?
2: नाना को साथ हमारे बहुत ही अपने तरीके से एक दोस्ती हो गई।
1: नहीं, कहते हैं कि उनको समझना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है।
2: नहीं, वो क्या है, वो एक बार उसको जब दोस्ती हो जाते हैं फिर उसको साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। फिर वो कोई चीज में कुछ बात ही नहीं करते और उसको एक बार विश्वास हो जाते हैं।
1: हाँ।
2: जो सामने वाले वो अपने काम जानते हैं।
1: हाँ हाँ।
2: तो फिर वो कभी भी डिस्टर्ब करते नहीं और उसको साथ ऐसे दोस्ती हो गया था, मतलब वो सारा दिन में तो 10 बार फोन और खाना कुछ बनाया, खुद का खाना बनाने का
1: अच्छा,
2: बहुत शौकीन
1: अच्छा।
2: था, मैं खाना खाने का शौकीन था।
1: हाँ।
2: तो खाना बनाए तो पार्थो तू आ जा, तू कहाँ बैठा है, क्यों नहीं आ रहा है, तेरे लिए मैं ये बना रहा हूँ। और उसको मुझे खिला के उसका बहुत खुशी होता
1: है, संतुष्टि मिलती
2: है। बोलते तू खाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से खाता है।

0: खाने अच्छे बनाते हैं यार, वो बहुत मेहनत करके बनाता था।
1: अच्छा
0: है, बहुत दिल से, मतलब
1: जितनी मेहनत वो फिल्मों में करते हैं
0: बहुत मेहनत करते।
1: अच्छा।
0: वो मतलब सचमुच वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो है।
1: हाँ।
0: ये तो उसने दिखाई दिया,
1: बिल्कुल थिएटर से आए हैं,
0: थिएटर से मेहनत की और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी। उसका जिंदगी में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: कुछ नहीं चाहिए उसको, अगर बोलो तो महीना दो महीनों घर उसका अपना वो छोटे से फ्लैट के अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। कपड़े का कोई शौक नहीं, कोई खाने का शौक नहीं, ना कहीं जाने का शौक है, ना होटल में जाने का शौक है, ना बाहर घूमने का शौक।
1: नाना के साथ कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद रहेगी, याद रहे ऐसा कुछ?
0: नाना को साथ मेरे जिंदगी का बहुत सारे घटनाएं हैं।
1: हाँ।
0: तो पर एक मजे का घटना है जो मैं कभी कभी मैं याद करता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। उसमें एक चीज पता चलता है जो आदमी कितने अलग है।
1: अच्छा सर।
0: उस घटना से वो घटना ये था जो मुझे एक दिन बोला नाना ने, परसों चल मैंने एक जगह देखा है, फार्म हाउस बनाएंगे।
1: हाँ।
0: है पुणे का पास है, चल तुझे लेके चलता हूँ, देखते हैं, देख के आते हैं। है? और मैं बोला अच्छा, बोले तुझे तो कमाल की लगेगा, मुझे मालूम है। और उसको लगता, वो उसको मालूम था कि मैं कविता विता सब लिखता हूँ और मेरे नेचर उस तरह है नेचर। तो हम लोग साथ में पुणे गए, वहां पर बहुत बड़ा नदी था, डैम था। तो मैं बोला यहाँ पर कहीं जमीन ले रहे क्या? जगह तो अच्छा लग रहा है। बोले नहीं रे यहाँ नहीं है, अभी और आगे जाना है। बोला आगे कैसे जाना है, अभी तो खत्म हो गया, मतलब जगह वहाँ एंड हो गया।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बोले नहीं अभी हम लोग बोट है, अभी बोट नीचे भाई। बोला बोट तो है। बोले बोट से हम क्रॉस करेंगे, वहां पर हमारे एक दोस्त ऑलरेडी वो पहाड़ पे बना है। तो बोला अच्छा तू वो लेना चाहता है? बोला नहीं चलना तू अभी मुझे लेके बोट पे। हम लोग पूरा नदी क्रॉस कर, काफी बड़ा नदी था, क्रॉस करके हम लोग आए एक पहाड़ के ऊपर। ये उसका दोस्त ने बहुत अच्छे जगह बनाए। तो अच्छा, और बरसात का टाइम, जस्ट गर्मी खत्म हुआ,
1: खत्म हुआ
0: मुंबई का।
1: हाँ।
0: पहला बरसात जैसे हुआ उस समय, पता नहीं बारिश से बहुत लगा हुआ है।
1: अच्छा अच्छा।
0: मतलब बरसात होगा तो मैं भीगूंगा जरूर।
1: क्या बात।
0: अपने छत पे हो।
1: हाँ।
0: या रास्ते पे हो।
1: हाँ।
0: या कहीं भी हो।
1: हाँ।
0: मुझे भीगना है।
1: अच्छा।
0: मुझे छतरी नहीं चाहिए।
1: हाँ।
0: तो मुझे बहुत भीगने का शौक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बाहर आ गए, भीगा पानी में एकदम, पर घनघोर बरसात। तो भाई बोला अभी क्या करें? बोले अभी चलेंगे ना जगह देखने। बोला अभी जगह देखने कहाँ जाएंगे अभी? बोले अभी तुझे बारिश में तो प्रॉब्लम। बोला मुझे एंजॉय हो रहा है यार, क्या खूबसूरत बारिश था, मजा आ गया। फिर हमने फिर बोट पे चढ़ा,
1: फिर बोट पे
0: स्पीड बोट और दोस्त का।
1: अच्छा।
0: तो फिर स्पीड बोट अभी नदी का उल्टा तरफ, नदी का तरफ मतलब जहां से नदी शुरू हुआ उस तरफ,
1: उस तरफ चल दिया।
0: चारों तरफ से पहाड़ और नदी और बारिश।
1: हाँ।
0: और कुछ नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है।
1: हाँ।
0: तो मैं बोला कितने दूर जाना है? बोले 10 किलोमीटर। बोले नदी में 10 किलोमीटर जाना है?
1: हाँ।
0: उसका बाद तेरा वो जगह आएगा जहाँ तू फार्म हाउस बनाएगा। अल्टीमेटली 10 किलोमीटर अंदर चल गए नदी में।
1: हाँ।
0: और दोनों बाजू कुछ नहीं, मतलब एक आदमी नहीं, एक घर नहीं, कुछ नहीं। सडनली एक जगह पे बोट रुका
1: दिया। हाँ।
0: और बोले ये जो पहाड़ है नाना।
1: हाँ।
0: ये तेरे, इसके लिए मैं बोल रहा था, तुझे तुझे पसंद है।
1: अच्छा।
0: मैं बोला नाना ये क्या है? ये तो पहाड़ है, यहाँ पर तू एक आदमी आएगा कैसे?
1: यहाँ फार्म हाउस कैसे बनाएगा?
0: ये बनाएगा, फिर बनाएगा तो चल कुछ भी करके तू बनाएगा, पर यहाँ तो आदमी क्या कोई, मतलब मुझे बर्ड्स भी नजर नहीं आ रहे, क्या रहेगा कैसे तू? बोलता है पर तो मतलब मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ।
1: हाँ।
0: मुझे डिस्टर्ब चाहिए ही नहीं। बोला डिस्टर्ब नहीं चाहिए, बात अलग है।
1: हाँ।
0: कम से कम दुनिया से लिंक तो होना चाहिए।
1: हाँ।
0: ये तो दुनिया का बाहर का जगह, मैं तो ये तेरे साथ नहीं हूँ भाई, ये जगह तुझे मैं नहीं बोलूंगा, तू ये जगह। तो ये है नाना का कहना।
2: श्रोताओं, जाने माने निर्देशक पार्थ घोष नाना पाटेकर के बारे में अपनी बातें कह रहे थे। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनवाई। बस एक गीत आपको सुनवाएंगे और उसके बाद सुनवाएंगे पद्म भूषण सई परांजपे, यानी निर्देशिका सई परांजपे अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में अपनी बातें कह रही हैं। ये थोड़ी देर में बस आपको सुनवाते हैं।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म थी पत्थर के सनम। श्रोताओं, नाना पाटेकर को लेकर जानी मानी फिल्म निर्देशिका पद्म भूषण सई परांजपे, जिन्होंने चश्मे बद्दूर और स्पर्श जैसी फिल्मों को बनाया है, आप जानते ही हैं क्या कह रही हैं नाना पाटेकर के लिए, आइए सुनते हैं।
1: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
2: जी जी
1: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वाज मेकिंग गमन एंड ही सेड सई आई वांट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो सो आई सेड आई विल गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर। एंड नाना इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
2: जी,
1: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
2: जुनून
1: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि वो ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे

0: उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही। उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना करना अपन। हाँ, मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा। कहते हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म की शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही। फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई।
2: ये थी जानी मानी फिल्म निर्देशिका पद्म भूषण सही परांजपे जो बातें कर रही थी नाना पाठेकर के लिए। आपको ये रिकॉर्डिंग श्रोताओ हमने सुनवाई विविध भारती के संग्रहालय से, जिसमें ये दोनों ही रिकॉर्डिंग आपने सुनी, फिल्म निर्देशक पार्थ घोष और पद्म भूषण सही परांजपे की बातें थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म महबूबा का दो गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: संतोष आनंद की रचना आपने सुनी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये गीत था प्यासा सावन फिल्म से।
1: बुआ तेरी तस्वीर।

0: इश्क पर जोर नहीं, इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिल्म लावारिस का ये गीत था, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया, अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता।

बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

चित्तचोर फिल्म का गीत आपने सुना येसुदास की आवाज में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आदमी का नगमा, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

लता मंगेशकर का गाया आदमी फिल्म का गीत आपने सुना, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। यादों की महफिल, ये प्रोग्राम श्रोताओं यहीं संपन्न हुआ। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती की सुलहरियों पर श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर और हमारे बहुत सारे श्रोता भी फेसबुक के जरिए इस कार्यक्रम में अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज भी रहे हैं। नए श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे। नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए आप अपने उद्गार सुरीला सफर कार्यक्रम में भेज सकते हैं। नाना पाटेकर के लिए भेजे गए आपके कमेंट्स हम शामिल करेंगे कार्यक्रम में। शेष कार्यक्रम हमारा जो आज का है वो फेसबुक की पोस्ट पर जो इबारत है उसके अनुसार ही होगा। तो ये जो इबारत है वो भी आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं जो हमने आज फेसबुक पे पोस्ट की है। हवाओं में हल्की सी सेहरन, फिजाओं में रुमानियत, ये कहती है गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है। सुबह की ओस से रोशन फूलों के चेहरे और रात की नम चांदनी को कहीं नजर न लग जाए। गुलाबी ठंड में लिपटे मोहब्बत के जादुई नजरानों ने सुर्ख वादियों से पर्दा हटाया है। पहाड़ों की सुबह और अनुरागी शाम अब देखते ही बनती है। राजस्थान के गुलाबी रंग में खिलती चांदनी रात तो कहीं कश्मीर में हरूद का मौसम, सुर्ख लाल रंग के गलीचे की रौनक जैसे सपनों की रानी ने ओढ़ी हो लाल रंग की चुनर। आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में श्रोताओं, ये पहला गीत सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर की याद को हम समर्पित कर रहे हैं।

0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर को याद किया है। आप अपनी बातें, अपने उद्गार लिख सकते हैं श्रोताओं। आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे जरूर। और अंकुश फिल्म का ये गीत हमने श्रद्धांजलि स्वरूप सुनवाया अशोक खोसला, मुरलीधर, घनश्याम वासवानी और शेखर की आवाज़ें थी। अभिलाष का लिखा ये गीत था, कुलदीप सिंह की तर्ज थी। और हमारा आज का जो शेष कार्यक्रम है, फेसबुक पर जो दी गई इबारत है उसी के अनुसार है। तो हमारी एक श्रोता ने लिखा है, गुलाबी ठंड इसलिए खास है क्योंकि इसमें मौसम केवल बदला नहीं करता, मन भी बदलने लगता है। ठंडी हवाएं भीतर की उदासी को सहलाती हैं, धूप स्मृतियों को गर्माहट देती है, धरती ने लाल चुनरी ओढ़ी है, आसमान ने प्रेम का संदेश संभाल रखा है और पूरी प्रकृति किसी अनकही मोहब्बत की खूबसूरत गवाह बनकर हमारे सामने खड़ी है। ये हमारी एक श्रोता लिखती हैं। वैसे हरुद नाम का एक शब्द हमने अपनी इबारत में इस्तेमाल किया है श्रोताओं, ये शब्द किस बाबत हमने लिखा है, अगर ये आप बताएं तो क्या ही अच्छा है। वैसे ये शब्द कश्मीर की वादियों से वाबस्ता है, ये आपको बताना है। और आपके शहर में मौसम कैसा है अब, ये आप बताइए हमें। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं, ठंड की चादर धीरे धीरे दस्तक दे रही है, खुशनुमा वातावरण चारों ओर फैल रहा है, सुबह फूलों में ओस की बूंदे, फिजाओं की रुमानियत, गुलाबी ठंड रात में नहाई चांदनी सुरख वादियों में मोहब्बत का नजराना देखते ही बनती है, हमें प्रकृति के और करीब ले जाते हैं। और गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है, अश्विन महीना आ रहा है, बल्कि आ चुका है श्रोताओं, और गुलाबी ठंड की पहली तरल मखमली आहट सुनाई दे रही है, सुबह की ताजी हवा में अब एक हल्की सिहरन है, उषा काल में सूरज की गुनगुनी धूप घास की पत्तियों पर मोती जैसी चमकती ऊस की नन्ही बूंदें मन को मोहित कर रही हैं, यही हल्की ठंड अपने साथ नवरात्रि, दशहरा और काजोरी पूर्णिमा और दीपावली, इन मन भावन त्योहारों की खुशबू और गर्माहट को लेकर आ रही है। जी हाँ, इंतजार ही तो रहता है और इंतजार जब मुकम्मल हो जाए तो क्या ही बात है। वैसे गुलाबी शब्द से जो गीत आपको याद आ रहे हैं वो आप हमें लिख सकते हैं और अपने शहर का मौसम जरूर बताइए।
1: हर चेहरा यहाँ चांद

श्रोताओं, इस गीत के गीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। वैसे इस फिल्म को अगर आपने देखा है तो इसमें बहुत ही अलग और कम चर्चित एक कलाकार थे, तो उनके बारे में भी अगर यानी उनका नाम अगर आप लिखें तो क्या ही बात है। आबरू फिल्म का गीत हमने आपको सुनाया, सोनिक ओमी की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखा है कि हमारे सिने जगत को नाना पाटेकर जैसे कलाकार के जाने से बहुत क्षति हुई है, हमने एक शानदार कलाकार खो दिया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर जी का देश प्रेम फिल्मों में झलकता है, देश से बहुत प्यार था, उन्हें सामाजिक मुद्दों को बार बार फिल्मों के जरिए उठाते थे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि नाना पाटेकर की हर फिल्म मैंने देखी है, उनके अभिनय की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। आज मुझे फिल्म प्रहार का सीटी वाला सीन याद आ रहा है, सीटी बजवा कर उन्होंने उस फिर एक मतलब इन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं फिल्म की। एक श्रोता हमारे आज की जो इबारत है, टेक्स्ट है, उस पर लिखते हैं कि हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, इस गीत को इन्होंने याद किया है। ठंडी हवाएं लहरा के आए, गुलाबी आंखें जो तेरी देखें। जी हाँ, गुलाबी शब्द तो ऐसा है श्रोताओं, इससे बड़े सारे सवाल हैं जो आज आपको बताने हैं। मसलन एक बड़ी प्यारी सी एक मछली है, उसका क्या नाम है जो गुलाबी होती है और कहें तो भारतवर्ष में पाई नहीं जाती, लेकिन आप बता सकते हैं तो बताएं ज़रूर कि उस मछली का क्या नाम है। और राजस्थान के ख़ास शहरों को पिंक सिटी

क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। और अपने शहर का मौसम तो आप बता ही रहे हैं, गुलाबी ठंड क्या आपने राजस्थान में कभी महसूस की है, या इस समय कभी आप राजस्थान गए हों तो वो भी आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी धूप है लेकिन शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है। जी हाँ, शाम भी बहुत ही सुहावनी होती है आजकल। ये फिल्म आपको पहचाननी है।

इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था श्रोताओं आबरू फिल्म का, वो दीपक कुमार पर फिल्माया गया गीत था और जीएल रावल के बोल थे, सोनी कोमी का संगीत था। वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत आपने सुना, भरत व्यास की रचना है, संत त्रिपाठी की तर्ज, और एक श्रोता के उद्गार हैं कि नाना पाटेकर जैसे कलाकार सदियों में आते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि इन्होंने दी है। और एक और श्रोता ने लिखते हैं कि सुबह सुबह की हल्की ठंडक, फिजाओं में रोमानियत और रंग बिरंगे फूलों पर ओस की बूंदें शरीर और दिमाग दोनों को तरोताज़ा कर देती हैं। इस मौसम में न बहुत ज़्यादा गर्मी और ना कांपने वाली सर्दी होती है। कांपने वाली सर्दी मन एक अजीब सी शांति और अपनों के बीच आने का एहसास जगाता है। फूलों पर गिरी ओस की बूंदें मानो प्रकृति ने मोतियों के हार से सजाया हो, इसलिए ये नज़ारा आँखों और दिल दोनों को सुकून देता है। लेकिन राजस्थान में कुछ अलग सा सुकून होता है श्रोताओं, वहाँ के बारे में आप जरूर लिखिए कि वहाँ की रातें अगर आपने देखी हैं इस गुलाबी ठंड की, वैसे ये तो पूरा शहर पूरा स्टेट ही कहें तो गुलाबी गुलाबी सा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय फिल्मों

नाना पाटेकर जी का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और उनकी फिल्मों के बारे में लिखा है क्रांतिवीर, तिरंगा, परिंदा, शक्ति, अग्नि साक्षी जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार से जान डाल दी। नाना जी की निर्देशित फिल्म प्रहार मुझे उनकी सबसे प्यारी फिल्म लगती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें सबसे अलग करती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हारूत के बारे में कि जिसका कश्मीरी भाषा में अर्थ पतझड़ का मौसम होता है।

श्रोता ने लिखा है कि हारूत के बारे में कि जिसका कश्मीरी भाषा में अर्थ पतझड़ का मौसम होता है। ये समय खूबसूरत मौसम सितंबर के अंत तक से लेकर नवंबर के मध्य तक रहता है। जी हाँ, और जो अक्टूबर का महीना है श्रोताओं, ये ख़ास कश्मीर जाने के लिए ये मौसम जो होता है, ये समय जो होता है, बड़ा ही मुफीद होता है। इस समय अगर आप जाएँ तो आप देख सकते हैं कि चिनार के पत्ते किस तरह से रंग बदलते हैं। और इसी को लेकर हमने इबारत की जो अंतिम लाइन थी वो लिखी थी, क्योंकि लाल सुर्ख रंग सी चादर या ओढ़नी सी कहें कश्मीर में बिछी हुई नजर आती है। एक और श्रोता लिखती हैं कि कश्मीर में हारूत का अर्थ पतझड़ का मौसम होता है और कश्मीरी संस्कृति, जीवन शैली और आर्थिकी में इस मौसम का एक बेहद खास स्थान है। इसके साथ ही कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी हारूत नाम की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भी है। तो एक और श्रोता लिखती हैं कि कल शाम की बारिश है और भोर की बारिश ने हमारे शहर को बेहद खुशनुमा बना दिया है। हवाओं में ठंडक आ गई है और अभी धूप का टुकड़ा हमारे छत और बालकनी पर भी आकर सिमट गया है, जैसे कह रहा है कह रहा हूँ ठंड आया है, मैं तो भी साथ में हूँ। जी हाँ, जहाँ ठंड देर से पड़ी है श्रोताओ, वहाँ पर तो ये बारिश जो होती है वो बेमौसम आती है, जिससे कि ये ठंडक को ला सके। फिलहाल गुलाबी ठंड है।

और श्रोता ने लिखा है कि अपनी दमदार आवाज़ और अभिनय से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर जी को हम उनके श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की ये इबारत केवल मौसम के बदलाव का वर्णन नहीं करती बल्कि प्रकृति के मानवीय भावनाओं के बीच गहरे रिश्ते का एक सुकुमल दस्तावेज है। गुलाबी ठंड की आहट को हवाओं की सेहरन और फिजाओं की रोमानियत के साथ पिरोना बेहद असरदार है। ये ठंड सिर्फ तापमान का गिरना नहीं बल्कि भावनाओं के जागने का प्रतीक बन जाती है। ये तो बताइए श्रोताओं कि गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, यानी आपको सवाल याद रखने हैं। पहला सवाल, गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, और दूसरा सवाल एक और है कि गुलाबी रंग का इस्तेमाल खूब हमारे किस त्योहार में किया जाता है, और एक जगह की तो पगड़ी भी गुलाबी है। तो आप बताएं, ये सारे सवाल आपके लिए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो इस समय शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है लेकिन दिन में अच्छी धूप है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है, फिजाओं में रंग से घुलने को आ गई, वो सुहाना मौसम, सुबह की धूप और घास पर ओस की बूंदे मोती बिखरने लगे, ऐसे में विविध भारती का साथ, वाह क्या बात है। जी हाँ, विविध भारती है हमेशा से आपकी साथी। तो ये गीत आप सुनिए और जो हमने सवाल आपसे पूछा वो भी बताइए। इस गीत में जो कलाकार नजर आ रहे हैं श्रोताओं, उनको अगर आप बता सकें उनके बारे में तो क्या ही बात है।

कश्मीर की अगर बात करें तो श्रोताओं, तारीफ कितनी भी करें, शब्द इस प्रदेश के लिए कम ही पड़ जाते हैं। आप सुन रहे थे एसएच बिहारी की रचना। संगीतकार आप अगर बता दें तो क्या बात है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी डॉल्फिन अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है और इसके बारे में पूछा, क्या सही है, इसको जानने का इंतजार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर साहब चले गए और उन्हें हम याद करते हैं।

0: मुझको ओ मेरे यार संभलना मुश्किल हो गया।
1: नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया द ट्रेन फिल्म का गीत आपने सुना और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने तमाम अपनी बातें हमसे साझा की हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी सुबह सुबह गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, रात से ही ओस गिरना शुरू हो जाती है, सुबह तो

ठंड लगती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि इस समय कश्मीर में फसलों और खासकर केसर की कटाई का मौसम ये माना जाता है, जिसे स्थानीय लोग उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और एक हमारे श्रोता नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखते हैं कि इनकी फिल्म नट सम्राट देखी है, क्या भूमिका थी उस फिल्म में इनकी, और अभी तक वो आखिरी दृश्य याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें बहुत पसंद है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर जी को याद किया है। वहीं हमारी एक श्रोता लिखती हैं कुछ गीतों के बारे में, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, कहां सिलाई हो जाने मन के ताबी चेहरा, और तमाम गीतों को इन्होंने याद किया है, लिखा है इसके बारे में। एक और श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम की गुलाबी ठंड, वादियों की हवाएं और चांदनी रातें अक्सर दिल में किसी खास यादों का चिराग जला जाती हैं। इस खूबसूरत माहौल में किसी को याद करना और खो जाना स्वाभाविक। हवाओं में घुली है ये गुलाबी सी ठंड, चांदनी रात में बहकी है ये वादियां मलंग, ऐसे में दिल को कोई याद ना आए तो कैसे हो सकता है। और भी कुछ लाइनें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैं छत पर जाती हूँ तो एक दो दिन से हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, इसका मतलब है मौसम करवटें ले रहा है और जो त्यौहार हैं वो भी आने वाले हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और जी हाँ, नाना पाटेकर की यादें तो कुछ ऐसी ही हैं। श्रोताओं, आज की इबारत जो गुलाबी ठंड को लिए हुए है, इसी बाबत हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो जो जयपुर है वो तो पिंक सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से एक कार्यक्रम आता है रात 8 बजे, इस इमारत की गुलाबी रंग को लिए क्या खासियत है ये आप हमें बताएं, और हम किस इमारत की बात कर रहे हैं।

राजश्री और शमी कपूर पर फिल्माया गया फिल्म जानवर का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, अब कुछ सवाल जो हमने आपसे पूछे थे कि गुलाबी रंग किन रंगों को मिलाकर बनता है, ये आपने अभी तक नहीं भेजा है, तो आप इसे जरूर भेजें। और एक तितली होती है श्रोताओं जिसके गुलाबी पंख होते हैं, ये कौन सी तितली है? मतलब दो तीन सवाल की बौछार।

पर आप पर कर दी जाए, मुझे ऐसा लगता है। और गुलाबी जो चूड़ियां हैं उनका बाजार भारत में कहाँ है? एक और आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि एक सुंदर सा गुलाबी फूलों का पेड़ होता है, इस पेड़ को यानी इस फूल को क्या कहते हैं? तो अब बढ़ते हैं उन श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ जिन्होंने अपने कमेंट्स भेजे हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हर बदलता मौसम अपने साथ एक नई आभा लेकर आता है और प्रत्येक जाने वाला मौसम अपनी नियति जानता है। जाने वाला मौसम विदा लेते समय कुछ मुरझाया सा, कुछ अलसाया सा लगता है, इसलिए गुलाबी ठंड लिए इस मौसम में मन में अलग ही उत्साह को सुरूर रहता है। बदलते मौसम के मन पर कोई व्याख्या नहीं लिखी जा सकती, जो सामने है उसका स्वागत करके ही जीवन को चलाना का हुनर सीखना होगा। गुलाबी ठंड अपने साथ ढेर सारे उत्सव लेकर भी आती है और ये सच है कि ये प्रकृति ईश्वर की सुंदरता का वहन करती है। हर बदलता मौसम इसकी पहचान है। तो ठंड जो है उसकी तो शुरुआती दौर है और आपने इसकी बहुत सारी तैयारियां भी की होंगी, तो क्या खास आप ध्यान दे रहे हैं ये भी आप हमसे बता सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं, ठंड, रोशन नज़र, पर्दा, गुलाबी, कश्मीर और सपनों जैसे ये शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं चला मौसम में कब गुलाबी सर्दी ने अपना शबाब घोल दिया। सुबह योगा में जाती हूँ तो पार्क में हरी घास पे छोटी छोटी शबनम की बूंदें किसी चमकीले मोती सी लगती हैं। हल्की सी सिहरन उड़ते हुए पंछी, नीला आकाश, सब कुछ जैसे मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो क्या इन ओस की बूंदों को कभी आपने छुआ है? तो आप जरूर बताएं। वैसे हमारे आज के जो गीत हैं श्रोताओं, उनमें भी आपने देखा होगा कि गुलाबी रंग छाया हुआ है, जैसे इस गीत में।

देव मुखर्जी और तनुजा पर फिल्माया गया एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने इस गीत की बातें भी बिल्कुल ठीक लिखी हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप जयपुर की जिस इमारत की बात कर रही हैं जो विविध भारती पर रात 8 बजे कार्यक्रम प्रसारित होता है उसका नाम हवा महल है। जी हाँ, और ये इमारत जो है वो गुलाबी पत्थरों की सुंदर सी जो एक तामीर है देखते ही बनती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है और फिजाओं में कुछ रंग का एहसास होता है, घास पर भी ओस की बूंदे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी रंग लाल और सफेद रंग को आपस में मिलाने से बनता है, क्या ही बात है। एक और श्रोता लिखती है कि बेमिसाल अभिनेता नाना पाटेकर का जाना आंखों को नम कर गया है, ईश्वर महान अभिनेता को अपनी शरण में ले, दिल से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ, विनम्र नमन। एक और श्रोता लिखते हैं कि इसी रंग के बारे में, गुलाबी रंग के बारे में, लेकिन तितली का जो पंख पिंक होता है यानी गुलाबी होता है उस बारे में आपने लिखा नहीं और हमने आपसे पूछा था कि गुलाबी चूड़ियों का सबसे बड़ा बाजार भारत में कहाँ है, वो भी आप जरूर बताएं अगर आप बता सकते हैं तो। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ कोलकाता में आषाढ़ महीने से बारिश लगी हुई है जो अभी अश्विन मास तक भी हो रही है, कल भी बरसात हुई थोड़ी, अभी थोड़ी थोड़ी गुलाबी ठंडी सी हवा शुरू हो गई है, हवा में पूजा का पूरा असर, जगह जगह पंडाल बनने की तैयारी हो रही है, कुल मिलाकर बहुत ही खुशनुमा वातावरण है हमारे कोलकाता में। जी हाँ, और इस समय लोग जो है ना बड़ी अलग अलग जगहों पर सैर के लिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये मौसम बड़ा ही खुशगवार होता है। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है तो वो कौन सा शहर है जहां आप जाना चाहते हैं या जहां जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी जो है वो ठंड शुरू हो गई है और इस तरह से कई हमारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो तेज धूप निकली है लेकिन रात को ठंड हो जाती है। कलाकार और फिल्म आपको पहचाननी है।

बड़ा ही खूबसूरत था लंदन पैलेस का ये सीन। श्रोताओ, नाइट इन लंदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। माला सिन्हा और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था, आनंद बख्शी की रचना थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि अर्ली मॉर्निंग जब गार्डन में पैरों पर छोटी छोटी बूंद बिखरी रहती है, यानी ओस की बूंदों की ये बात कर रही हैं, तो उनको छूकर आंखों से लगाने में बहुत सुखद एहसास होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ओस की बूंदें जो हैं उन पर चलते हैं या फिर उन्हें आंखों में लगाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे ठंडियों की सुबह सवेरे 5 बजे जो गुलाबी ठंड पड़ती है मेरे मन को बहुत लुभाती है, मुझे बहुत पसंद है ये मौसम। सुबह सुबह ठंड में टहलने का बहुत पसंद है जब हल्की हल्की ठंड होती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं हाल ही में राजस्थान के एक साल में पयाना, बंसी, पहाड़पुर, हिंटोन सिटी रहकर मंदिर के लिए पिंक पत्थरों को नक्काशी बनवा कर ही आया हूँ, तो शायद इन्होंने इस पर काम भी किया हुआ है, तो उस बारे में ये लिखते हैं। जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं श्रोताओं जो राजस्थान की वादियों में रहते हैं और जो गुलाबी बलुआ पत्थर होते हैं उनके काम यानी ऐतिहासिक इमारतें, खूबसूरत जगहों का निर्माण करते हैं आज भी, तो ऐसे हमारे कोई श्रोता हैं तो अपनी बातें वो भी लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गुलाबी और पीला रंग अक्सर पूजा पाठ और शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हमने गुलाबी रंग की बात करी थी श्रोताओं, होली में बड़ा इस्तेमाल होता है ये रंग, इसका जवाब ये था। और होली में तो बहुत सारे रंग इस्तेमाल होते हैं लेकिन गुलाबी रंग खास नज़र आता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जी हाँ, मैंने राजस्थान की गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड में बहुत भ्रमण किया है। राजस्थान का ही वाशिंदा हूँ, बेशक दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ के गुलाबी किले भी देखने लायक, विशेषकर अक्टूबर से फरवरी तक। और अब आपको ये कलाकार पहचानने

एक पक्षी है श्रोताओ जो गुलाबी रंग के लिए मशहूर है, फ्लेमिंगो इसका नाम है। और हमने आपसे पूछा था कि जो राजस्थान है उसमें गुलाबी जो इमारतें हैं उनकी खासियत क्या है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि गुलाबी रंग के पत्थर से ये बनी होती हैं। और एक सवाल हमने आपसे अभी भी पूछा है जो आपको बताना है, और एक पेड़ है जिसमें गुलाबी रंग के फूल जो है वो खूबसूरती से खिले होते हैं, चेरी ब्लॉसम ये है। और अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि अब जो ठंड का मौसम है इसमें बड़ा ही प्यारा सा एक अलग शबाब लिए हुए अमरूद आता है जो गुलाबी रंग की भी अहमियत को लिए हुए होता है, और ये कहाँ का है, किस बाग का है, अगर आप जानते हैं तो जरूर बताएं।

0: माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर।
1: एक फूल दो माली इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, साधना और संजय खान पर फिल्माया गया। इसके पहले शिकारी का गीत हमने आपको सुनवाया, अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया वो गीत था। श्रोताओं, एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि बेईमान ही होता है, मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका इंतज़ार भी बना रहता है। हमको प्रकृति को प्यार करने वाले को मौसम

उनका लूटना फिर वापस आना, ये भी जीवन की एक प्रक्रिया होती है। अब आप एक सवाल और बता दें। एक तो हमने आपसे एक फल का सवाल पूछा है कि हरे और गुलाबी रंग का ये जो फल होता है यानी अमरूद भी शायद हमने आपको बताया है, ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, और एक गुलाबी रंग की झील है, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो जरूर लिखें।

आराधना फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। जिस झील को हमने पूछा है श्रोताओं, ये लेक हिलर झील है ऑस्ट्रेलिया की, जो गुलाबी रंग की है, और ये अमरूद प्रयागराज यानी इलाहाबाद के खुसरो पार्क में पाया जाता है।

फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आसमान को देखकर अक्सर हमारे मन में उड़ने की इच्छा जागती है, लेकिन किसी देश के लिए आसमान सिर्फ उड़ान भरने की जगह नहीं, उसकी सुरक्षा का प्रहरी होता है। जल, थल और नभ देश की सुरक्षा की ये तीन मजबूत स्तंभ हैं, और नभ की जिम्मेदारी संभालती है हमारी भारतीय वायुसेना। जी हाँ, आज 8 अक्टूबर, आज है भारतीय वायुसेना दिवस, वो दिन जब हम उन जाबाजों को सलाम करते हैं जिनकी निगाहें आसमान पर और दिल तिरंगे के साथ धड़कता है। वायुसेना की ताकत सिर्फ उसके लड़ाकू विमान में नहीं, असली ताकत है उन वीरों का साहस जो देश के लिए हर चुनौती के सामने डटे रहते हैं।

सुनने में कितना खूबसूरत शब्द है, लेकिन एक वायु योद्धा के लिए उड़ान सिर्फ रोमांच नहीं, जिम्मेदारी है। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते वक्त हर पल सतर्क रहना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी तक लगा देना, इसके लिए सिर्फ पंख नहीं हौसला चाहिए। वायुसेना में शामिल होने वाला हर जवान अपने भीतर एक ऐसा दिल लेकर उड़ता है जिसे ऊंचाई डराती नहीं बल्कि चुनौती देती है, क्योंकि कुछ उड़ानें मंजिल के लिए नहीं होती, कुछ उड़ानें वतन के लिए होती है।

लेकिन वायुसेना की कहानी सिर्फ आसमान में दुश्मन के मुकाबले की कहानी नहीं है। जब बाढ़ में गांव डूब जाते हैं, जब भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, जब किसी दुर्गम पहाड़ी इलाके में लोग मदद का इंतजार कर रहे होते हैं, तब भी आसमान से मदद उतरती है। कहीं हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित निकालते हैं, कहीं भोजन, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाते हैं, और कहीं हमारे जवान अपने साथियों को कठिन से कठिन स्थान तक पहुंचाते हैं। योद्धा हो या आपदा, सीमा हो या संकट, भारतीय वायुसेना ने बार बार अपने साहस और सेवा का परिचय दिया है। और जब इन वीरों को आकाश की ऊंचाइयों पर तिरंगे के साथ देखते हैं तो मन में बस एक ही भाव आता है, इनकी उड़ान भले ही आसमान में हो लेकिन इनके दिल में हमेशा तिरंगा रहता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस

0: ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है, इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMT को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान July 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेते निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने AI को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा गया है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद

0: दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
2: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
3: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
4: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
5: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुंह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपनी मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
2: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
6: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
7: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
8: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
7: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर

0: अग्नि साक्षी, नट सम्राट अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9-2-11 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गंगा की लहरें फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था, संगीत चित्रगुप्त का था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: यह ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शैलेंद्र की रचना आपने सुनी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में।

0: रवि की तर्ज राजेंद्र कृष्ण के बोल मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
2: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
2: तो सुनिए।

0: डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नव में।

फिल्म जानवर का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब आपको सुनवाते हैं वो कौन थी, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं, मदन मोहन की तर्ज। और यही है श्रोताओं आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को

0: श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: अगर अचानक आपसे कोई पूछे कि आपको कोई कविता याद है, कोई गीत याद है, कोई लोरी याद है, तो आप क्या जवाब देंगे?
0: मुझे तो लोरी याद आ जाएगी, क्योंकि जो बचपन में सुनी हुई होती है ना लोरियां, वो दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है कि झट से मुंह में वो लोरी ही आ जाएगी।
1: बिल्कुल। लेकिन आजकल जैसे विलुप्त हो रही है लोरियां। अभी मैंने कई माओं को ऐसे सुना है कि क्या करें, बच्चा सोता नहीं है, हम क्या करें, कहानी हमें आती नहीं है, कहाँ से लाएं कहानी। तो उन्हें बताना पड़ता है कि आप कहानी खुद बुनिए। किताब जब मांगते हैं लोग, माएं मांगती हैं कि हमें कोई किताब दे दो, उसमें से पढ़ के सुना दे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कहानी खुद बुनिए, धीरे धीरे बच्चा भी सीखेगा। इसी तरह से लोरी आप गा के सुनाइए उनको, तो अपने आप गाने का, संगीत का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, बच्चे के मन पर, अंतर मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो विलुप्त हो रही हैं लोरियां, हमें लगता है कि वो पारंपरिक गीत, वो लोरियां वापस ले आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ गूगल में न ढूंढे, उसे बाकायदा गाए, गुनगुनाए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाए।
0: ये हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आजकल मम्मियों को टाइम ही नहीं होता है, तो कहाँ से लोरी गाएंगी। तो वो ऐसे करती हैं कि मोबाइल पकड़ा देती हैं बच्चों के सामने और उसमें कोई भी फिल्मी गीत या कोई भी गाना चला देती हैं, तो बच्चे उसी से आकर्षित हो जाते हैं। पर जो खुद गा के हम जो सुलाते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनत्व का भाव बच्चे के प्रति आ जाता है। और दूसरा, जो हम हमेशा क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, तो माँ और बच्चे के बीच का जो नाता है वो और भी गहरा होता है।
1: और जब बड़े होते हैं बच्चे, तो जो माँ की थपकी है, माँ के आंचल पर लेट कर लोरी सुनने का आनंद, वो याद रहता है। चित्र, मोबाइल और ये सब
0: भूल जाते हैं,
1: नहीं याद रहता है
0: जी।
1: और ऐसे ही हम सबका एक नजरिया होता है कोई चीज देखने का, और आंखें कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है
0: जी।
1: तो अगर किसी के पास आंखें नहीं है, तो सोचिए कि दुनिया कितनी फीकी है
0: जी
1: लोगों के पास। तो आज दरअसल हम बात करें विश्व दृष्टि दिवस की
0: जी,
1: तो किस तरह से अपनी आंखों की देखभाल करें, किस तरह से हिफाजत करें और दूसरों को अपनी आंखों से रोशनी कैसे दे सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करें।
0: नेत्रदान जी। और साथ ही आज वायुसेना दिवस भी है, उस बारे में भी हम जानकारी देंगे। और एक खास मुद्दा है ममता जी, मुझे कुछ कहना है, इसके अंतर्गत बेटे बेटी में भेदभाव जो आजकल थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, पर अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर घर में ही बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है कि बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है जबकि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। खाने पीने के मामले में भी बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है।
1: तो इसमें खास तौर से सखियां अपने अनुभव जरूर साझा करें कि उनके घर में क्या हुआ है, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वो किस तरह से ये मैनेज करती हैं, वो लिखें। और इसके अलावा
0: कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम छुटनी महतो के बारे में जानकारी देंगे।
1: और सोनाली जी, आज एक दुखद खबर मिली है, बहुत बड़ी दुखद
0: जी।
1: वो जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में कि वो इस दुनिया से, आज उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। और उनके संवाद में कितनी गहराई थी, अभिनय में उनकी ऐसी ताकत थी कि सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचती थी। और आपको याद होगा कि बहुत सारी उनकी फिल्मों के संवाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराते रहे हैं। और ये कहा जाता है बड़े ही दबंग व्यक्तित्व वाले रहे और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी उनकी रही। तो वो जो क्या कहा जाता है कि अपनी बातों में आग उगलते थे कई बार, और वो आग बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई के रूप में सामने आता था। तो आज वो नहीं है भले ही, लेकिन हम सब के दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे
0: जी। और उनके निभाए किरदार और उनकी बुलंद आवाज हमेशा दर्शकों के स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगी। ममता जी, हम यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार, मित्रों और उनके करोड़ों प्रशंसकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे।
1: सुनते हैं नाना पाटेकर की फिल्म का ये गाना।

0: ये हमने नाना पाटेकर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये गाना सुनवाया इस प्रोग्राम में, और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि एक और प्रोग्राम हम प्रसारित करने वाले हैं शाम को 5:30 पर, नाना पाटेकर से बातचीत, जो हमारे विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित है और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के किस्से हैं उसमें, उनकी फिल्मों के किस्से हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि नाना पाटेकर से कई बार मुलाकात का मौका मिला, और ये बातचीत जब हमने रिकॉर्ड की थी कई साल पहले तो हम उनके निवास पर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, उनके स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान नजर आए थे, और इतनी सहजता से इतनी विनम्रता से वो बातचीत की है कि मैं क्या कहूँ, इस वक्त बातें करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने है। और इसके अलावा कई बार मुलाकात हुई, तो आज 5:30 पर हमारे श्रोता वो प्रोग्राम सुन सकते हैं जो उन्हें उनके नाम पर हम प्रसारित कर रहे हैं
1: जी।
0: और
1: आज वायुसेना दिवस भी है। तो वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना के

0: स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में वायुसेना के वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है।
1: और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि वे देश की सुरक्षा संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं।
0: और ये दिन देशवासियों को उन वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर परेड, एयर शो, विमान प्रदर्शन और हवाई करतब आयोजित किए जाते हैं।
1: वायुसेना केवल साहस और रोमांच का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और देशभक्ति का संगम भी माना जाता है। वायु योद्धाओं का जीवन युवाओं को यह संदेश देता है कि ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत जरूरी है और साथ में आत्मविश्वास और अनुशासन बहुत ही जरूरी है।
0: साथ ही ममता जी, आज एक और खास दिन है, विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है और 2026 में यह दिवस 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को आंखों की देखभाल, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार के प्रति जागरूक करना है।
1: क्योंकि आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दुनिया को देखना, पढ़ना, लिखना, काम करना, सीखना सब कुछ आंखों से ही तो होता है। लेकिन आंखों की जब अनदेखी करते हैं तो फिर आंखें आपको परेशान कर सकती हैं। बढ़ता स्क्रीन टाइम और डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां भी आंखों को प्रभावित करती हैं। पोषण की कमी और नियमित आंखों की जांच न करवाने से भी दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
0: और ये दिन हमें याद दिलाता है ममता जी कि दृष्टि की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जाँच और उपचार से कई दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। कि जैसे समय समय पर आंखों की चेकअप करवाना चाहिए, साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम देना चाहिए
1: और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। ये जो बात आपने कही ना कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल, इससे तो कोई बच नहीं पाता है। और लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने लोग काम करते हैं, कुछ तो मजबूरियां भी होती हैं। लोगों की जॉब है ऐसी कि आपको लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। लेकिन उसका उपाय है, डॉक्टर्स उपाय बताते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए, पलकों पर हाथ रख के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, और या फिर पानी से थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को धोते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें, नुस्खे हैं जिससे आप आंखों को आराम दे सकते हैं। और धूप में जब जाएं तो जो काला चश्मा होता है वो लगाएं, उससे भी आंखों को सुरक्षा मिल जाती है। और आंखों में कोई समस्या हो तो बिना सलाह के दवा या आई ड्रॉप कतई ना ले।
0: नहीं तो ऐसा होता है ना कि घर में एक कॉमन रखा हुआ होता है सभी के फ्रिज में, और बस लोग लेते हैं, डाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सबकी आंखों के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स होते हैं, तो आप चिकित्सक से परामर्श लेके ही कोई दवाई आंख में डालें। और सबसे जरूरी बात है ममता जी, हरी सब्जियां, फल, दालें और पोषक आहार को अपने भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। और जिनको डायबिटीज वगैरह है, जैसे उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें नियमित आंखों की देखभाल, ये जांच करवानी चाहिए। और ये कहते हैं ना कि आंखों की रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के रंगों को महसूस करने का जरिया है। तो अपनी सेहत के साथ अपनी आंखों को भी प्राथमिकता देना चाहिए और दूसरों को भी दृष्टि की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। और मरणोपरांत आप आई डोनेट कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, कहा जाता है ना किसी के दिल में उतरना है तो आंखों के जरिए। आप आंखें, एक आंखों से आंखों में बातें होती हैं। और तमाम गीतकार शायर ने आंखों पर शायरी की है, गीत लिखे हैं। एक गीत ये जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने और लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म चिराग। सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि ममता जी की नाना से सुनी मुलाकात हमें बहुत भाई थी।
1: क्या बात है, शुक्रिया। तो फिर जिन्होंने नहीं सुनी है ये बातचीत, आज शाम को 5:30 पर सुन सकते हैं। और अब देखिए ना, बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही जो हम शामिल करेंगे। और मेरे मोबाइल में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे श्रोता नाना पाटेकर को लिख रहे हैं विनम्र नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। दरअसल वो ऐसे अभिनेता थे कि वो गए तो नहीं हैं, हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। जब जब उनकी फिल्में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जिंदा इंसान हमारे सामने है।
0: जी।
1: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समाज सुधारक की
0: जी,
1: जिनका नाम छुटनी महतो है
0: जी,
1: और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को हम दे रहे हैं। छुटनी महतो झारखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जीवन अंधविश्वास और जो डायन, भूत, पिशाच जैसी कुरीतियां हैं ना, जिस तरह की बातें होती हैं, इनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और बाकायदा मोर्चा निकाला। इसको, इस तरह की कुरीतियों

0: को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मुहिम चलाई
1: जी। और ममता जी कभी वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। छिटनी महतो ने बाद में अपने जीवन में उन महिलाओं की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता था।
0: और सोनाली जी यहाँ एक बात और बताना है, जैसे कि बहुत सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी में है, कोई मानसिक बीमारी है, तो लोग

0: सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी में है, कोई
1: जी
0: मानसिक बीमारी है, तो लोग टोना टोटका करवाते हैं, कहते हैं अगर इसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। और बहुत सारे आप मंदिरों मस्जिदों में भी जाकर देखते हैं कि जहाँ पर इस तरह के भूत पिशाच से दूर भगाने की मुहिम चलाई
1: उतारा
0: जाती
1: जाता
0: है।
1: है जी।
0: तो दरअसल समस्या क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस अपना, कि अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण किया जाए,
1: जी
0: न कि भूत पिशाच के
1: जी
0: जरिए जरिए।
1: अंधविश्वास को दूर भगाना है। और छुटनी में है तो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोला डीह क्षेत्र से जुड़ी है। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 1995 में परिवार के एक बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक व्यक्ति ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ।
0: और 1995 की वो घटना जिसने जीवन बदल दिया। गांव में अंधविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि छुटनी महतो को डायन कहकर सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा, तो और उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई इसी वजह से कि वो डायन है। बाद में उन्हें अपने बच्चों के साथ गाँव छोड़कर जाना पड़ा आखिरकार।
1: ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनी। गांव से निकलने के बाद छुटनी महतो की मुलाकात एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जो इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कानून प्रशासन और जागरूकता के माध्यम से इस कुप्रथा का मुकाबला करना उन्हें सिखाया। 1990 के दशक के मध्य से ही उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी आशा नामक संस्था के साथ मिलकर काम किया। वे प्रभावित महिलाओं तक पहुंचती, उनके मामलों की जानकारी जुटाती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा प्रशासन की सहायता से उन्हें सुरक्षा दिलाने का प्रयास करती।
0: छुटनी महतो ने केवल पीड़ित महिलाओं की मदद ही नहीं की, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या पारिवारिक परेशानियों को जादू टोने से जोड़ना गलत है। उन्होंने महिलाओं को ये भी संदेश दिया कि अंधविश्वास के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, ठीक नहीं होता। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला भी करना चाहिए।
1: और उनके अथक प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सैकड़ों से अधिक महिलाओं की मदद की है। और छुटनी महतो पुनर्वास केंद्र से भी जुड़ी रही, जहां ऐसी महिलाओं को सहायता मिलती है जिन्हें डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया था। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की एक टीम भी विभिन्न गांवों में ऐसे मामलों पर नजर रखती है और सूचना मिलने पर सहायता के लिए पहुंचती है।
0: और उनकी कोशिश केवल किसी एक पीड़ित महिला की समस्या हल करना नहीं था, बल्कि समाज की सोच को बदलना था। छुटनी महतो के लंबे सामाजिक संघर्ष और समाज सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। दिन था 25 जनवरी 2021 जब उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में झारखंड से उनका नाम शामिल किया गया। ये सम्मान उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ उन सभी महिलाओं के संघर्ष की भी पहचान बना जो अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है।
1: और छुटनी महतो का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अंधविश्वास का मुकाबला जागरूकता से किया जा सकता है, व्यक्तिगत पीड़ा को समाज की भलाई की शक्ति में बदला जा सकता है, महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है और एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। छुटनी महतो की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। जिस कुप्रथा ने कभी उनके अपने जीवन को झकझोर दिया था, उसी के खिलाफ उन्होंने जीवन भर आवाज उठाने का फैसला किया
0: और उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे समाज की बेहतरी का माध्यम बनाया। और उनका जीवन हमें भी तो सिखाता है, अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी जागरूकता की लौ भी काफी होती है, और छुटनी महतो उसी जागरूकता की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने मशाल बनकर सामने आई है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं
1: जी।

0: विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के

0: बात तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, एक सखी ने लिखा है कि आपका कार्यक्रम ऐसा है कि छूटता ही नहीं। अभी सोने की इच्छा थी, कमरे में जाकर लाइट भी बंद करी, फिर मोबाइल पर चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए उंगली बढ़ाई। ना ना, अब तो रिटायर हुई ऑफिस की भी बंदिश ने खुरपी कैची और गार्डनिंग का सामान लेकर बाग में आई। गाना चल रहा है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है।
0: क्या बात है, तो गार्डनिंग कीजिए, सोने के लिए रात है ना, दिन में सोने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा आराम जरूरी है
1: जी।
0: तो लेकिन वो आराम सखी सहेली के समय तो मुलतवी की कर सकती हैं
1: जी। एक हमारे साथी ने नेत्र दान के बारे में लिखी है, आंखों या चक्षु दान की बात निकली है, तब एक दुर्घटना याद आ गई। हमारी सोसाइटी के एक परिवार का इकलौता बेटा जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के वार्षिक उत्सव में मंच सजाने के कार्य के दौरान ऊंचे टेबल से गिर जाने की वजह से मौके पर ही उनका मृत्यु हो गई। और उनके माता पिता ने इस दुख की घड़ी में भी देर न करते हुए उनकी आंखों को दान करने का त्वरित निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनका बेटा किसी दो व्यक्ति में अपनी आंखों के द्वारा जीवित है।
0: क्या बात है, नेत्रदान महादान कहा जाता है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए और ये शुभ काम जरूर करना चाहिए। और सोनाली जी, आपको याद होगा कि एक जमाना ऐसा था जब घरों में दिन की शुरुआत और अंत भी गीतों से होता था। हमें तो याद है बचपन में कि सुबह उठते ही रेडियो शुरू हो जाता था और रेडियो से सुबह सुबह भजन आया करते थे। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी है और बहुत सारे घरों में ये होता है, सुबह के मंगल गीत, त्योहारों के गीत, विवाह गीत, रात को माँ की गोद में जो लोरी सुनाई देती थी, ये सब हमारे जीवन का सहज हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन कहीं कहीं अब जैसे गायब हो रही,
1: पीछे छूटते जा रहे हैं ना ये सब बातें। लोरी केवल बच्चों को सुलाने की धुन नहीं थी, बल्कि माँ के प्रेम, दादी नानी के अनुभव और परिवार की भावनाओं का संगीत था। और इसी तरह पारंपरिक गीत हमारे लोक संस्कृति के ऐसे धरोहर थे जिन्हें किताबों से नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर सीखा जाता।
0: बिल्कुल सही बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये सीखो, सीख कर हम पता चला कि मोबाइल में ढूंढ रहे हैं गाना और लोरी, फिर उस अपने बच्चे को सुना रहे हैं, बल्कि सुन सुन के याद भी हो जाती थी, वो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी,
1: उसकी धुन भी याद हो जाती थी।
0: तो बाकायदा टेक्स्ट ढूंढा जाता है गाने के, गीत के टेक्स्ट कहाँ मिल जाए, तो हम लिरिक्स मोबाइल से पढ़ते हैं और गाते हैं, हम मतलब आप
1: जी
0: मतलब हम सभी। आज जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें पारिवारिक संरचना ही ऐसी हो गई है कि इन गीतों की गूंज जैसे गायब हो रही है, पहले की तुलना में कम होती जा रही है। बहुत सारे लोकगीत हैं, लोरियां हैं ऐसी जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सुना भी नहीं होगा। और बच्चे के रोने पर माँ का उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे गुनगुनाना, जैसे कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे, फिर वो मतलब अपने जैसे उस बच्चे का नाम लेके कि अपने बच्चे का नाम
1: उसमें
0: कि
1: उसके नाम जोड़े जाते थे,
0: कहाँ किसी का नाम जोड़ दिया, तो ये होता था और ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती थी, सहज निकलता था मुंह से। और लोरी के शब्द भी बड़े सरल होते थे लेकिन उनमें भावनाओं की बड़ी गहराई होती थी। कभी माँ बच्चे के भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी उसे में, और कभी उसके लिए सुख समृद्धि की कामना भी करती थी, और कभी प्रकृति, चांद, सितारों और पक्षियों को अपनी लोरी का हिस्सा बना लेती थी। और बहुत सारी महिलाएं जिनमें गीत और कविता की प्रवृत्ति होती थी, उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके भीतर एक कवि
1: छिपी हुई प्रतिभा है जी। और दादी नानी की लोरियों में तो उनके अपने जीवन के अनुभव भी घुल जाते थे ममता जी, इसलिए लोरी बच्चे को नींद देने के साथ साथ परिवार की स्मृतियों को भी जीवित रखती थी। और फिर पारंपरिक गीत भी, हर अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते थे, विवाह गीत, शादी के अवसर पर महिलाएं मिलकर गाती थी, बन्ना बन्नी के गाने गाते थे। और
0: आपको याद है क्या बन्ना बन्नी? तो कभी हम लोग तैयारी से आएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे,
1: बट ढोलक चाहिए उसमें साथ में।
0: तो ठीक है, ढोलक की व्यवस्था कर लेंगे और पारंपरिक गीत और इसी पर एक सखी सहेली हम करेंगे। अब देखते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं, कि उनको ऐसा वाला प्रोग्राम चाहिए या नहीं,
1: पसंद आएगा या नहीं।
0: जी
1: जी। और है ना ममता जी, इन गीतों में हंसी मजाक, भावनाएं, रिश्तों की मिठास और बेटी की विदाई का दर्द भी दिखाई देता था।
0: बारिश के मौसम में झूले पड़ते थे, महिलाएं मिलकर सावन के गीत गाती थी, और कोई जो पटना बोलते पटोहा
1: जी,
0: तो उसको झूले को झुलाते थे, और इनमें प्रकृति प्रेम और मायके की यादों का सुंदर चित्रण भी मिलता था उन गीतों में
1: जी। और साथ ही घर में

0: बच्चे के जन्म पर खुशी व्यक्त करने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे। ये परिवार के सामूहिक खुशी का प्रतीक होते थे। और त्योहारों के गीत पे होली, दीपावली, तीज, गणगौर, नवरात्रि और अन्य पर्वों पर भी अलग अलग क्षेत्रों की अपनी लोकगीत परंपराएं भी रही है।
1: स्कूलों में लोकगीत और लोरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। बच्चों को स्थानीय भाषा और लोकगीतों से परिचित कराया जाता था, याद है कि नहीं?
0: बिल्कुल याद है।
1: और विवाह और त्योहारों में रिकॉर्डेड संगीत के साथ पारंपरिक गीतों को भी स्थान दिया जाता था।
0: और तो अगर इन गीतों को भी अभी भी अगर स्थान मिले तो कितना अच्छा होगा ममता जी।
1: बिल्कुल अच्छा होगा। ये रहा भाई हमारा तो ये कहना है कि ये जो गीत कम सुनने को मिलते हैं लोरी की शक्ल में, श्रोता इन्हें साथ में गुनगुना सकते हैं।

0: भाई देखिए सुना लीजिए, हमारे श्रोताओं को तो ये लोरी पूरी याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप भी याद कर लीजिए और हमें भी याद है। तो हमारे एक श्रोता ने पूरी लोरी लिख भेजी है, तो इनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। और जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, ये लोरी वहां से लेकर अपने बच्चे को आज सुना सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने पोते को, नाती को, जो भी घर में छोटा बच्चा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो सोते समय कोई ना कोई लोरी, जैसे चंदा मामा दूर के लल्ला लल्ला लोरी, कोई गीत गाते हुए सुलाती थी। अगर मैं रुक गई तो कहते थे मम्मी गाओ ना, जब तक गहरी नींद न हो जाए मुझे गाना ही पड़ता था। पर अब वही बेटियों को लोरी गाने का टाइम नहीं है, बस एक ऑडियो लगाकर बगल में रख देती हैं। और कामकाजी लड़कियों को नौकरी से टाइम बेटाइम घर आना पड़ता है, घर के कामकाज, बच्चे लोरी गाने का टाइम ही नहीं, बच्चों के लिए लोरी गाने का टाइम ही नहीं है। देश विदेश में रहने के कारण या दूसरे शहरों में रहने के कारण दादी नानी भी पास नहीं रहती हैं। भाई यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर महिलाओं की नौकरी तो वो आजीविका के कारण करती हैं, मजबूरी है और करना भी चाहिए, तो लेकिन पिता है घर में तो पिता को सुनाना चाहिए।
1: हाँ।
0: दादा दादी है,
1: सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: हाँ।
0: जो घर में है उसे सुनाना चाहिए। और मान लीजिए कि दादी दादी को, नानी को बहुत सारी लोरियां याद है,

0: तो अब तो फोन का जमाना है, फोन पर वीडियो कॉल करके भी सुना सकते हैं।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि लोरियों से अपना बचपन और अपने बच्चों का बचपन याद आ गया, और साथ ही कहती थी कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले, आवा बबुआ के मुहुआ में घुटुक, ए चंदा मामा आरे आओ। एक सखी ने लिखकर भेजी।
0: और जब घुटुक जिसपे दूध पिलाने के नाम पर माए बच्चे को करती है घुटुक, अपने बच्चे का नाम लेगा तो कई बच्चे मुंह पर हाथ लगा लेते हैं कि नहीं घुटुक नहीं,
1: दूध पिलाएंगे।
0: घुटुक नहीं बोलो, बस बाकी लोरी सुनाओ, ये भी होता था।
1: एक साथी कहते कि हमारे यहाँ बेटा होने पर जो मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर गीत कहा जाता है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लोरियां विलुप्त हो गई हैं लेकिन पारंपरिक गीत तो अभी भी बरकरार हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो शादी ब्याह नामकरण कुआं पूजन वगैरह, उसमें आज भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिनके बिना आयोजनों में आनंद नहीं आता। ये पारंपरिक गीत अपनी लोकल भाषाओं में गाए जाते हैं जिनको सुनना एक अलग ही एहसास कराया जाता है। भाई अभी तो जब शादी ब्याह होते हैं तो बहुत सारे रस्म होते हैं कई दिन, और उसमें छोटे छोटे रस्म के मंदिर जाती हैं महिलाएं,
1: कुआं पूजन,
0: हाँ, फिर वो मिट्टी की मिट्टी होती है तो मिट्टी पूजन करती हैं, वहाँ एक लोकगीत होता है, फिर वो एक मतलब सात महिलाएं एक बर्तन को पकड़ती हैं जिसे क्या बोलते हैं, सिकोहली बोलते हैं या फिर भौरी बोलते हैं, तो वो उठाती हैं तो उस समय एक गाना गाया जाता है, फिर वहां से निकलती हैं तब सड़क पर जब चलती हैं तब एक गाना, फिर दरवाजे पर आती हैं तो
1: तब गाना,
0: बहुत सारे गाने हैं। लेकिन हाँ, इन परंपराओं को, इन गीतों को आने वाली पीढ़ी को बताना उन्हें
1: हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल
1: जी। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी, लोरी एक शांत मधुर और सौम्य गीत होता है जिसे माँ या अभिभावक अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए गाते हैं, पर आज आधुनिक जीवन शैली, एकल परिवार और डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक लोरिया और लोकगीत विलुप्त होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन और टीवी पर सिर्फ लोरी मिलती है आत्मीयता और प्यार नहीं, नई पीढ़ी का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति से दूर होना भी तो इन मौखिक परंपराओं के लुप्त तो होने का एक मुख्य कारण है।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि दुनिया बदली सो बदली, मगर ताज्जुब ये कि अब शायद ही कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाती हो। माँ और बच्चे के रिश्ते में पालना और लोरी का अटूट संबंध रहा है। लोरी की दुनिया दरअसल सपनों की दुनिया है। माँ की लोरी में ऐसे हसीन और सुहाने वादे होते हैं कि माँ के चेहरे पर आते भाव से रीझ कर हर बच्चे के चेहरे पर पहले मुस्कान और फिर आंखों में नींद आ जाती है, और नींद में सपने होते हैं, तब शायद सपनों में माँ भी होती है। हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसी लोरियां हैं जिनको सुनकर कानों में आज भी मिठास घुल जाती है।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि लोरी बच्चे के लिए भाषा का पहला परिचय है और पहला संगीत हुआ करती थी। माँ की थपकियों की लय और उसकी धीमी आवाज में बहता वात्सल्य बच्चे को न केवल गहरी नींद में ले जाता था बल्कि उसे मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव भी कराता था। लोरी माँ और शिशु के बीच एक अनूठा संवाद थी जिसमें लोक कहानियां, प्रकृति और पारिवारिक रिश्ते ताने बाने की तरह बुने होते थे।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आपके विचार से लगता है कि ये तो मेरी ही बात है। समय मिलने पर ही मैं अपने शिशु से बातें करती थी। सुलाते समय लोरियां तो जरूर, स्वरचित लोरियां भी बेटा सुनता है। रूप कथा कहानी सुनकर वो बड़ा हुआ है, मेरी स्वरचित कहानी भी सुना है, इससे बच्चों में कल्पनाशीलता तो बढ़ती ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप एक इसका एक तरीका और है कि आप कहानी सुनाने लगती हैं तो दो चार लाइन सुनाइए और फिर पूछिए बच्चे से फिर क्या हुआ,
1: हाँ, तो वे उसमें तो शामिल होंगे उसमें।
0: बिल्कुल, वो लाइन जोड़ेंगे कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और वो जब दहाड़ता था तो बहुत सारे वहाँ जानवर डर के मारे दुबक जाते, फिर क्या हुआ, तो बच्चे वहाँ पर बताएंगे आपको, इससे उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार होता है।
1: एक साथी ने कहा चंदा मामा आरे आवा, बारे आवा, नदिया किनारे आवा, भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोरी गीतों में से एक है। ये गाना बच्चों को सुला रहे और उनका मन बहलाने के लिए पीढ़ियों से गाया जाता है। 50 साल पहले जिनका बचपन बीता होगा शायद ही कोई बच्चा इस लोरी के बिना सोया होगा, या माँ अपनी माँ, दादी माँ, बुआ, नानी, मौसी की गोद में खेलते हुए इस लोरी को नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं होगा।
0: तो चलिए फिर ये लोरी एक बार फिर से सुनते हैं।

0: ये वाली लोरी कितने श्रोताओं को याद है जरा बताइए, अगर याद है तो पूरा लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, क्योंकि ये तो सुरक्षित रहता है, जब भी श्रोता चाहेंगे आपके इस कमेंट को पढ़ सकते हैं। और देखिए ना सोनाली जी, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं इसके लोरी के लिए
1: जी।
0: कि एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे जहाँ बेटा होने पर मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर कहा जाता है, बेटा नहीं बल्कि बेटा बेटी आप लिखिए, क्योंकि बेटी के पैदा होने पर भी अब सोहर गाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ढोलक वाला प्रोग्राम तो अवश्य पसंद आएगा। देखिए आ गई टिप्पणी, तो आप तैयार हैं?
1: हाँ बिल्कुल तैयार हूँ।
0: हाँ तो अगली बार ढोलक लेके
1: बैठेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुहा में घुटुक। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जब हम ये गाया करते थे और सुना करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटा हो या बेटी हो सोहर खिलौना सभी के जन्मोत्सव छठी बरही में गाया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी बहुत माँ को देखा है बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, और आजकल तो अलेक्सा भी आ गई है, तो मेरा पोता छोटा था तो अलेक्सा पर हम लोग लोरी लगा देते थे और सुनता था। एक श्रोता ने लिखा है कि गुजराती लोरी है जो हमारे भाभी जी गाकर अपने बेटे को सुनाती थी, भाईलो मारो डायो पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी भाईलो मारो गयो हसी। ये लोरी सुनाती,
1: यानी कितनी मिठास है ना, जो भी भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें एक अलग ही मिठास होती है, फिर वो हमें भले ही समझ ना आए पर उसकी मिठास हमारे दिल तक पहुंच जाती है।
0: सोनाली जी अब देखिए आपको ढोलक की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है ढोलक संगत के साथ सभी सखियों सहेलियों के गाने के प्रोग्राम कीजिए ना, सृजन भारती में भी ऐसा प्रोग्राम हो आनंद आ जाएगा। तो चलिए अब तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो टिप्पणियां आ रही हैं
1: जी
0: उसे पढ़ दिया।
1: अब जैसे कहा एक श्रोता ने कहा कि हमारे बेटे के जन्म होने पर वो जो खास
0: सोहर
1: गाया जाता है, तो फिर बेटी के जन्म पर भी गाना चाहिए, बेटे बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि मेरे तो तीन बेटियां ही है, किसी भी भेदभाव की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से बेटियों को पालने की कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे भोजन, एजुकेशन, साफ सफाई, अच्छा पहनना, ओढ़ा, सभी बहुत बेहतर करने की कोशिश की, एजुकेशन पर बहुत जोर

0: दिया, जिसके कारण आज बड़ी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और एक कथक डांस स्कूल भी चला रही है, और दूसरी बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है, दूसरे के बेटों से बेहतर है, वो भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है। क्या बात है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि ये पुरानी मान्यता गलत साबित हो चुकी है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है। असलियत में बेटियां विवाह के बाद भी माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमलों के कारण काफी सुधार आया है, लोग बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं।
0: एक हमारे साथी ने कहा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग क्यों हो जाती है। बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है, लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती है। चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार। फिर खुद से पूछती हूँ कि जब प्यार दोनों से बराबर तो सोच में फर्क क्यों। शायद ये भेदभाव जानबूझकर नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही सोच का असर है। अब कोशिश है कि दोनों को सिर्फ बराबर प्यार नहीं बराबर भरोसा भी दे सकूं। अब बेटियां इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वह एरोप्लेन उड़ाने के साथ साथ देश के लिए बंदूक लेकर भी खड़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि हमने यानी कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं किया है। सबको बराबर कॉलेज स्कूल में शिक्षा दिलाई है, सबको उनकी रुचि के अनुसार हायर एजुकेशन कराया, और बेटे अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और बेटियां भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए बेटियों को पहले आत्मनिर्भर होने का पूरा मौका दिया है।
0: क्या बात है। एक सखी ने लिखा है, मेरे ससुराल में बेटियां बहुत कम है, मेरी बेटियों के होने पर बहुत खुशियां मनाई गई, मेरे सास ससुर नंद बहुत खुश हुए थे, कभी हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि इनके तो बेटियां ही है। कितनी अच्छी उदाहरण है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग हो जाती है। बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है, लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती हैं। चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार हैं। फिर खुद से पूछती हूँ, जब प्यार दोनों से बराबर है तो सोच में फर्क क्यों।
0: एक साथी ने लिखा है कि बेटे बेटी में भेदभाव ये क्यों होगा, जब लड़का लड़की सब बराबर है तो आजकल सभी क्षेत्र में दोनों बराबरी से अपनी भागीदारी देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या ढूंढ लेते हैं बेटे और बेटी में जो हमें भेदभाव सिखाए। मैं तो बेटा और बेटी दोनों की माँ हूँ, इसलिए मेरे लिए सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं किसी भी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं होता। जितनी बेटी लाडली है उतना बेटा भी है, दोनों को एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि अगर बेटी बेटे में भेदभाव की बात करें तो आज के युग में भेदभाव रखने का प्रमाण कम होता जा रहा है, क्योंकि आज की बेटियां बेटों के समकक्ष हो गई हैं, जो नौकरी करते हुए पूरा घर पूरा परिवार संभाल रही हैं, इसलिए उसे नारायणी भी कहते हैं। कोई अतिशयोक्ति न होगी, ये भेदभाव पुराने जमाने में जरूर था और माना जाता था कि केवल बेटा ही वंश आगे बढ़ा सकता है, जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। असल में पुराने जमाने में भी बेटियों को बाकायदा सक्षम बनाया जाता था। बहुत सारी महिलाएं वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन भूल सकता है। तो ये समय है, हाँ ये जरूर है कि अब जो समय है इसमें बेटियों को भी बराबरी का मौका मिल रहा है। तो जो लोग जो जिन घरों में अभी भी भेदभाव है, मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम से चर्चा से वो भेदभाव करना छोड़ देंगे।
0: और अब गीत सुन ले।
1: सुनते हैं ये गाना।
2: कह दिए हो शुम्या।

0: भाई हमारे भी अब जाने का वक्त हो रहा है, कुछ कहना है?
1: एक सखी ने लिखा है कि लोरी और पारंपरिक गीत के विषय ने सखी सहेली में चार चांद लगा दिए।
0: क्या बात है, आपकी टिप्पणियों ने चार चांद लगा दिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत जब आपकी पसंद का हो तो गीत और भी खास हो जाता है ना? तो आइए आज के इस फरमाइशी सफर में शामिल होते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यारी बातें और साथ ही हमारे एहसास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ही कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: रहीम मिस्त्री बात कर रहे हैं, हुजूर साहिब नांदेड़ से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रहीम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं साहब?
0: हम भी अच्छे हैं, देखिए, और हेलो फरमाइश के जरिए और भी अच्छे हो जाते हैं आपसे भी श्रोताओं से बात करके।
1: हाँ जी हाँ, सही, आपका हमारा मनोरंजन तो इतना बढ़िया, इतना भारी आता है विविध भारती, इतना अच्छा मजा आता है जब चलता है, तो ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं और है, ऐसा है कि हम हमेशा रात के 11 बजे तक विविध भारती के प्रोग्राम सुनने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं साथ में आप, विविध भारती का प्रोग्राम तो सुनते हैं?
1: है मिस्त्री के साथ में बांधकाम वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं।
0: बहुत बड़ा काम करते हैं आप, है ना? सर्दी गर्मी धूप बरसात कोई भी मौसम हो और घरों में बनाने के लिए आप तैयार रहते हैं।
1: जी हाँ, सही, देखिए हम तो अच्छा रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, जैसा सर्वधर्म संभाव बोल के चलते हैं, और हम सभी से कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा में स्वर्ग है जन्नत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई बच्चे ऐसे है जो माता पिता को थोड़े थोड़े बातों पे दुख दे रहे हैं, कभी उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरा रूप भगवान का माता पिता होते हैं, और माता पिताओं के साथ में रहना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा भविष्य है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी और निश्चित रूप से आपने भी अपने माता पिता का ख्याल रखा होगा।
1: जी हाँ
0: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म का नाम है मिस्टर नटवर लाल।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। मैं तेरी खुशबू हूँ, आज शबनम अब्बासी है मेरा नाम। दीदी
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही हैं, आरजे हैं आप?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग एक साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए दीदी। जी दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या करें दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
0: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले है ना, काम ही तो पूजा है। आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी होगी।
1: दीदी आपकी आवाज जब गूंजती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
0: आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे घंटों बात करती रहूं।
1: थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमारे पार्लर में रेडियो बजता रहता हो, हम सुनते रहते हैं, कस्टमर भी सुनते हैं।
0: क्या

0: बात है। तो एक बात बताइए, कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं आप?
1: जब हम प्यार से उनसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे। हम उनका मतलब जैसे पहले आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो हमें हमारे पास वो जरूर आते हैं। दीदी
0: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना?
1: ये देखो, बड़ा हो या छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक, उसका टाइटल सॉन्ग है, यही सुनवा देना दीदी।
0: आइए सुनते हैं ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: हम राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
0: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
1: जो लाइसेंस बनते हैं, हाँ, गाड़ियों के, वाहन के, चाहे चार पहिया हो या दो पहिया हो या जितने बड़े वाहन हो, सभी के जो बनते हैं।

0: वो काम करते हैं?
1: नहीं, इसमें ड्यूटी चल रही है।
0: अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी ड्यूटी के?
1: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा। अभी तो हम अकेले ही हैं, 24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
0: बहुत कठिन काम है ये तो, फिर परिवार के साथ समय बिता पाते हैं?
1: नहीं मैम जी, हम अकेले ही हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
0: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
0: और अपने स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
1: बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ना ज्यादा धूप है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है, मीडियम सॉफ्ट है। जब मौसम बदलेगा तो हानिकारक तो होगा ही मैम जी। नींद भी पर्याप्त समय पे लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे नींद तो जरूरी है मैम जी।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। तो
1: हाँ
0: बताइए,
1: जी,
0: गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मूवी का नाम है सौदागर, जाने के बोल है तेरी याद आती है। मैम जी तो लाइने हैं, बोल दे इजाजत हो आपकी।
0: सुनाइए।
1: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है। जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है।
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: आपका जिंदा श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मुंडा जी,
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी दोनकले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गाँव?
1: हो ग्राम विभाग का खेड़ गाँव है।
0: क्या नाम है?
1: खंड गाँव।
0: अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी तो नया तालुका है, नया गांव, इसमें खंडगांव गांव है।
0: अच्छा, तो बताइए अपने गांव के बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: अच्छी, सब आदमी, सभी गांव, सभी किसी के सुख दुख है। कौन सा ही कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ अनेक अनेक जो अलग कार्यक्रम है, कुछ है, तो सभी आदमी मिलके करते है। कोई वाद नहीं, संटे नहीं, कोई नहीं। सभी आदमी, इलेक्शन हो या कौन सा ही कारण हो, एक दिन में न हो कि सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते है। धार्मिक कार्यक्रम बहुत अच्छे आदमी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी ये मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: वो मंडा जी,
0: जी
1: आपने जो आज के फंड करे ना कार्यक्रम, क्या बढ़िया कार्यक्रम है और मंच है जी।
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: हो, और सेहत नामा का डॉक्टर है ना, उसकी जानकारी मिलती है हर दवा के बारे में। हमारे ग्रामीण भाग में, हर टाँडा बस्ती वाले में डॉक्टर का विचार क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण में सभी पहुँचते है ना।
0: बहुत अच्छी बात कही, सेहत नामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
1: और इसीलिए जो महिला का, तो तुम्हारा सखी सहेली ना, हमारी महिला, हमारी पत्नी सभी मिलके वो कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो सखी,
0: सखी सहेली भी सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना?
1: तो
0: बहुत अच्छी,
1: पूरा जानकारी मिलती है ना हर आदमी की। हर कहाँ से फोन लगा, कुछ मैडम ने हमारे जो बहन रहते हैं धन, उन्हें कहाँ से बात कर रहे क्या नहीं, सब मिलता है ना हमारे लेडीज को।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना?
1: वो भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोले तो विविध भारती, देश में कहाँ भी जाओ।
0: चलिए, आपकी खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं विविध भारती को सुन के। अब बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें?
1: गोरा और काला, धीरे धीरे बोल कोई।
0: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी दीदी, हम ग्राम चिड़ावत कंजर डेरे से बात कर रहा हूँ। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाड़ा।
0: कैसे हैं आप? संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए?
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन की कटाई हो गई है, हम अब गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करेंगे।
0: अच्छा, गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है, जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
1: दीदी इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोटा रोटर एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरियां बना के पालियां, और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूं चना तो डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
0: मौसम खेती बाड़ी के लायक है?
1: हाँ, खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो गया है दीदी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और होल को अभी से ही कमजोर चल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर वाला यदि पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा, जो हमारा देवास जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
0: अच्छा, पर हिम्मत नहीं हारनी है आपको, मन छोटा नहीं करना है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: हाँ, चलिए गाना बताइए, कौन सा सुनेंगे?
1: बटवारा फिल्म का है दीदी, सारे वास्ते रे ढोला नैन मेरे जागे
0: रे जर। अरे वाह, ये गाना मुझे इतना पसंद है, आपने तो मेरी पसंद का गाना ही कह दिया यार। चलिए आपके साथ मैं भी इस गाने को जरूर सुनूंगी। आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवा देते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: जम्मू कश्मीर सोनामार्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए।
1: यहाँ आज तो मौसम लगे बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी रहती है, स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतना गर्मी।
0: दिन की गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: होता है तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है ना सितंबर का महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं दिन भर?
1: नहीं, बाकी बाकी काम कर लेता है ना, जैसा अखरोट का अभी गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट ये पैकिंग करते हैं, ऐसा
0: हाँ,
1: ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं अखरोट
1: हाँ,
0: की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना, अखरोट उठाते हैं, उसमें तो दो फाट गिरी निकालते हैं, वो निकालते हैं, तो फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं,
0: अरे,
1: पत्थर पे उठा। हाँ,
0: अच्छा, कितने अखरोट
1: पत्थर
0: को
1: पे
0: तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग 1 क्विंटल किसी को निकलता है, 1 क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं, हल्का हल्का एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हो
1: हाँ
0: हाथ
1: हाँ
0: से करते हैं?
1: हाँ हाथ ही, वो तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है, ये छिलका पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हथेड़ी से दब मारते वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते हैं।
0: तो गिरी चूरा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना?
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: बहुत मुश्किल काम है ये भाई।
1: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
0: चलिए, बहुत
1: हाँ जी,
0: महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
1: हाँ, बहुत मुश्किल मेहनत तो अब यही है, रोजगार
0: बिल्कुल, फिर
1: मेहनत
0: भी
1: करनी पड़ती।
0: आपने समय निकालकर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
1: हाँ, सही बात सही बात, मैं दिल से सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, सेहतनामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ, सारे
0: बताइए।
1: प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम आते हैं वो मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार भी सुनता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद का।
1: फिल्म का नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, इन जहां की तुम्हारी आंखें।
0: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, हम मिलके सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: जिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जी बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: बाइक टू व्हीलर गाड़ी जो है सीट कवर के काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में मोटर बाइक के।
1: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं
1: जी हाँ।
0: अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका या किस तरह?
1: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं जो पानी वानी नहीं जाते हैं। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
1: ये सीट कवर ही जो नॉर्मल आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं जो।
0: अच्छा, पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, या ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे, जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपने स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
1: अभी क्या एक नेट वाला कवर आ रहा है, जाली वाला, तो वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में।
0: हाँ,
1: कुछ तो जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है, उसमें गर्म नहीं होती।
0: ये पते की बात कही है आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के, तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
1: ये मेरी दुकान है, गराज के ऊपर है, गराज जितने आए जितने टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, ऊँटों के हुड वुड में सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
0: तो फोर व्हीलर

0: कि जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते हैं या?
1: सीटें बड़ी होती है, गाड़ी खड़ी रखने की भी जगह होनी चाहिए। हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ियां तीन गाड़ियां चार गाड़ियां खड़ी रह जाती है आराम से। उसके लिए जगह की भी स्पेस चाहिए ज्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए, आप तो उदयपुर में रहते हैं, झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: उदयपुर में फिल्माया गया गाना है राजपूत का।
0: कौन सा?
1: मेरे संग संग आया यादों का मिला।
0: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्माया था।
1: उदयपुर राजस्थान किशोर कुमार।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कह रही हूँ।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छा है। मैं कम से कम एक महीने से प्रयास कर रहा था मैडम, तो इसके बाद इतना व्यस्त तो आज लगा है तो बड़ा मुश्किल से लगा था, चलो अच्छा हुआ लग गया मैडम। और सबसे पहले आपको दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाले छठ पूजा की ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अरे इतनी सारी शुभकामनाएं एक साथ दे दी, कहाँ रखेंगे हम?
1: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा, बांटते
0: जी जी जी जी बिल्कुल, आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट फील्ड में नौकरी करता हूं मैडम, और नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूं, लाइव फोनिंग कार्यक्रम में जुड़ता हूं, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूं, ईमेल में जुड़ता हूं, बड़ा मोबाइल में बात करता हूं, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूं, सभी केंद्र का सुनते रहता हूं। बहुत केंद्र का मेरा प्रसारण आया मैडम, और आपके केंद्र में लगा बहुत अच्छा लगा आज।

0: मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो। गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक हैं।
1: तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: काइले नगर से बात कर रहा मच्छिंद्र हरिदास चांडवले। मेरे को जो गाना देने का राज और रंग चित्रपट का, तो पहली पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माताजी, उसके बाद पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बाद जो अपने को आध्यात्म वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते हैं, जो आपने आंख पे जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मांगता जिंदगी में, तो वो सही रहती वो माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती, तो अपन सबका कर्ज अदा कर सकते, माँ का दूध का कर्ज जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो।
1: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ले, हमने हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं भूले।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
1: अभी मेरा वीट भर्ती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे 50 साल से,
0: बचपन
1: स्कूल में चौथी में से था, जब

0: तब तो आज तक लेके हम विविध भारतीय बचपन से सुन के बड़े होते आएले और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते हैं एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी में कुछ जो गाना देने का राज और रंग चित्रपट का
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश संस्कार धानी से प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह ही बोल रहा हूँ मैडम। सबसे पहले तो दीदी, मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
0: चलिए, अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या आपने वो स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से शाम 4 बजे तक?
1: शानदार, बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा, दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा। हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। जो प्रस्तुति थी और जिन कलाकारों को बुलाया गया दीदी, बहुत ही काबिले तारीफ। विविध भारती में राष्ट्रीय सेवा परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी ऐसी ही चीजें आती रहें, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: आपने उसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये शिरकत की थी?
1: जी, सभी सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी में किया हुआ दीदी। मैं नियमित श्रोता फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर

0: प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट रहेगा ही रहेगा दीदी।
1: हाँ बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक से हम लोग जुड़े रहते हैं और तब करते हैं, तो आपकी जो टिप्पणियां हैं, संदेश हैं, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी खास प्रोग्राम के लिए जब वो लाइव हो।
0: जी दीदी, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे।
1: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आनंद बख्शी जी के बोल हैं और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
1: आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228702888, 02240002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छायांकित कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है।

0: मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार में।

0: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: ना ना।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्ही ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

0: प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून है इस प्रेम में।
1: बहुत दूर मुझे जा...

0: दोस्तों, हमने एक ऐसा कलाकार खो दिया है जिन्होंने अभिनय की दुनिया में अपनी एक विशेष शैली गढ़ी थी। उनके बोले संवाद को दर्शक अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, वजूद, वनवास जैसी फिल्मों में उन्होंने सशक्त भूमिका निभाई। नाना पाटेकर का जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, ये उस आवाज का मौन हो जाना है जिनके संवाद सुनकर दर्शक ठहर जाते थे। उनका बेबाक अभिनय सिनेमा की दुनिया में दर्शकों में हमेशा हमेशा मौजूद रहेगा। विविध भारती के संग्रहालय में नाना पाटेकर से एक दिलचस्प बातचीत मौजूद है। नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि स्वरूप आज आपके लिए हम वो रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं, तो आइए सुनते हैं नाना पाटेकर से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ बीता आपका बचपन?
1: मेरा बचपन गांव में बीता, मुरुड जंजिरा में, पहली से सातवीं तक। फिर मुझे सुधारने के लिए माँ ने मौसी के पास भेजा, फिर मौसी के बच्चे बिगड़ जाएंगे इसलिए मौसी ने मुझे वापस अपने घर में भेजा।
0: जी, सुना है कि बहुत संकोची किस्म के थे बचपन में आप।
1: संकोची तो नहीं था, अभी मैंने जैसे कहा ना कि
0: जी
1: मेरी मौसी ने उसके कई बच्चे बिगड़ न जाए इसलिए मुझे वापस
0: जी
1: अपने घर भेजा। मतलब आप सोच सकते हैं कितना संकोची था मैं।
0: तो क्या आज भी आपको वो खेत खलिहान और पहाड़, नदी?
1: हाँ, मैं वैसे ही जाता हूँ, वही रहता हूँ।
0: अच्छा।
1: मैं बम्बई में बहुत कम रहता हूँ, मैं भीड़ मुझे रास नहीं आती, तो मैं पूना में मेरा एक छोटा सा फार्म है वहाँ रहता हूँ मैं
0: जी।
1: सिमगढ़ जो है खाई में है, बड़ा मजा आता है।
0: जी, अच्छा, पढ़ाई की आपने, पढ़ाई के बाद रंगमंच और चित्रकारी, पेंटिंग, तो तीनों का ये समन्वय कैसे एक साथ?
1: बचपन से चित्रकारी और थिएटर में स्कूल में था तब से कर रहा था, चित्रकारी में स्कूल में था तब से कर रहा था। कॉलेज में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में गया
0: जी,
1: फिर वहाँ से कमर्शियल आर्ट की डिग्री हासिल की, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, लेकिन इसके साथ लगातार मैं थिएटर करता रहा। और फिर एक दिन नौकरी छोड़ दी और मैंने थिएटर करना ही शुरू कर दिया
0: जी।
1: तो थिएटर के बाद मैं फिल्मों में आया, वो स्मिता पाटिल की वजह से, वो मुझे घसीट के लेके गई और उसकी वजह से मैंने फिल्मों में काम कर शुरू किया
0: जी। अच्छा, थिएटर का जिक्र आपने किया है, तो थिएटर किया आपने, बहुत सारे नाटक किए, अच्छे मशहूर नाटक किए। 80 के जमाने में आपने पुरुष नाटक किया था, जयवंत दलवी का लिखा हुआ। तो एक बार दोबारा आपने कई सालों के बाद पुरुष नाटक किया,
1: हिंदी में किया था तब मैंने।
0: तो ये दोबारा जब स्टेज पर आए तो कैसा था अनुभव?
1: दोबारा मैंने इसलिए किया था, परदेश में शो करने थे और काफी पैसे कमाने थे उससे
0: जी।
1: उस पैसे से मैं कुछ, मेरे जहन में जो चीजें थी वो मैं कर सका। लेकिन थिएटर में आविष्कार ग्रुप से जुड़ा हुआ था जब मैंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर शुरू किया, अरविंद देशपांडे, सुलभा देशपांडे जी, और कमर्शियल थिएटर मैंने जब शुरू किया विजय मेहता जी के साथ, तो लगातार मैंने तीन नाटक किए उनके साथ, हमीदाबाई चिकोठी, महासागर और पुरुष। पुरुष में 16 साल तक करता रहा, 1860 शोज किए मैंने उसके, तो तकरीबन 105 शो मैं बरस में करता था
0: जी।
1: लेकिन जो मेरी जिंदगी का बहुत सा अहम जो वक्त था मैंने उस नाटक के लिए दिया। कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, अगर मैं 16 साल नहीं करता वो, तो 16 साल में 4 साल के बाद अगर मैं वो नाटक छोड़ देता तो शायद अगले 12 साल में और कुछ नाटक कर सकता था, लेकिन शायद उस सक्सेस में मैं इतना अटक गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं लगातार करता रहा। लेकिन मुझे लगता था कि अभी आज लगता है कि वो गलती हुई और मैं कोई प्लेस कर सकता था
0: जी। अच्छा, थिएटर से आप फिल्मों की ओर आए, तो फिल्मों की बात करने से पहले हम एक गाना सुन लें आपकी पसंद का।
1: हाँ, मुझे वो प्यासा का गाना बड़ा पसंद है, बिछड़े सभी बारी बारी।

0: हम ये जानना चाहते हैं कि आज की आवाज मेरा ख्याल है आपकी पहली फिल्म
1: नहीं, मेरी पहली फिल्म थी मुजफ्फर अली की जी, गमन
0: जी,
1: और उसमें मैंने काम किया था। स्मिता थी, फारूक शेख था, जलाल आगा था।
0: कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, गमन फिल्म का रोल कैसे मिला आपको?
1: वो सही परांजपे की वजह से, उसने मैं वो पाहिजे जाती जे विजय तेंदुलकर का प्ले कर रहा था, तो उसने सही ने रिकमेंड किया मुजफ्फर को कि ये ऐसा ऐसा बच्चा है, तो उस तरह मुझे वो रोल मिला और मैंने किया। बहुत, हालांकि बहुत छोटा सा किरदार था, लेकिन अपने आप को स्क्रीन पे देख के मुझे लगा था कि यार क्या कमाल, ये सुंदरम में लगी थी फिल्म। मैंने सोचा मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो लोग मुझे देखते रहेंगे, परेशान करेंगे। पूरे थिएटर में 13 लोग थे, ऊपर हम 6 थे
0: जी।
1: बालकनी में एक सातवां आदमी था हमारे अलावा, शायद बारिश बहुत हो रही थी इसलिए कोई थिएटर में आए थे, और नीचे कुछ 5-6 लोग थे
0: जी।
1: कुल मिला के 13 लोग थे, लेकिन मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख के इतना खुश हुआ था
0: जी।
1: निकलने के बाद मुझे लगा लोग मुझे पहचानेंगे, कुत्ते ने भी नहीं देखा मेरी तरफ
0: जी।
1: इतनी, हालांकि फिल्म मुझे इतनी, मुझे तो बकवास लगी थी, लेकिन उसको अवार्ड्स बहुत मिले
0: जी, काफी
1: मुझे। ये इंटरनेशनल अवार्ड्स किस वजह से मिलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सच कहो तो मुझे वो फिल्म उतनी रास नहीं आई थी, लेकिन शायद ऐसे ही फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते होंगे, मालूम नहीं।
0: अच्छा, अंकुश आपकी बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है।
1: हाँ, उसके बाद मैंने आज की आवाज की, और उसके बाद एन चंद्रा ने मुझे अंकुश का रोल ऑफर किया। हालांकि अंकुश में उन्होंने पहले दूसरा रोल ऑफर किया था, ये मैंने जो रोल किया वो रविंद्र महाजनी करके हमारे मराठी के एक एक्टर थे, उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने 25,000 रूपये मांगे तो वो उनके पास थे नहीं
0: जी।
1: तो फिर एन चंद्रा ने मुझे पूछा तो मैंने ये रोल किया। लेकिन एन चंद्रा का मेरी ये इस करियर में फिल्मों में आने में बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्होंने मुझे वो रोल नहीं दिया होता तो शायद ही मेरी थोड़ी सी जो पहचान है वो हो पाती, तो एन चंद्रा का मैं आभारी हूँ उसलिए
0: जी। अच्छा, बात उन दिनों की चल रही है आपके शुरुआती दौर की, तो शुरुआती दौर का कोई गाना अपनी पसंद का सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: वो शुरुआती मुझे उस फिल्म का, वो इतनी शक्ति हमें देना दाता मुझे बहुत पसंद है,
0: अंकुश फिल्म,
1: अंकुश का
0: जी, सुनते हैं।

0: नाना अपहरण आपकी फिल्म है, तो अपने रोल के बारे में कुछ बताइए ना।
1: एक जो कहानी जो कहने जा रहे हैं, जो एक स्वाभाविक जो घट रहा है हमारे यहाँ हमारे देश में, हालांकि हर पूरे दुनिया में जो घट रहा है उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं प्रकाश झा। एक बेहतरीन कुछ कहना चाहते हैं, बेहतरीन मतलब ये कोई फिल्म का कैसे सब्जेक्ट हो सकता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसको फिल्मी बगैर फिल्मी बना के उन्होंने जिस तरह से कहा है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये इस फिल्म का हिस्सा होने का मुझे मौका मिला।
0: जी, और प्रकाश झा बना रहे हैं, आपने जिक्र भी किया, तो प्रकाश झा के साथ किस तरह की आपकी ट्यूनिंग है शूटिंग के दौरान फिल्म?
1: प्रकाश झा के साथ बेहतरीन ट्यूनिंग है क्योंकि हमारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। आज भी वो मुझे खाना खिलाता है, मैं उसे खिलाता हूँ, एक दूसरे को गाली नहीं देते, तो मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने जितने पैसे तय किए थे वो सब दिए मुझे, मैंने भी लिए, और आज भी एक दूसरे के प्रति आदर है।
0: अच्छा, कोई यादगार घटना है अपहरण से जुड़ी हुई कुछ बताना चाहेंगे?
1: यादगार मतलब इस फिल्म के वजह से मुझे प्रकाश ने, अजय देवगन नाम का एक बेहतरीन इंसान है, एक्टर कैसा है खैर आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बेहतरीन इंसान है, बड़ा नटखट है, बहुत मतलब हैरान करता है सेट पे सबको, लेकिन कमाल का इंसान है। मैं उसका आभारी हूँ प्रकाश का कि वो उसकी वजह से ये अजय मुझे मिला।
0: किसी ऐसी घटना का जिक्र करना चाहेंगे?
1: अरे एक छोड़ यार भाई, इतनी घटनाएं मतलब इतना परेशान करता था सबको, कभी किसको भंग खिला दे, कभी जमाल गोटा खिला दे, कभी कुछ भी करता है, मालूम नहीं है यार, ये बड़ा परेशान करता है बच्चा।
0: अच्छा नाना, सुना है कि दोबारा आप निर्देशन की ओर आना चाह रहे हैं?
1: हाँ, बहुत सालों के बाद एक जहन में कहानी थी, प्रकाश को मैंने ऐसे बैठे बैठे बोल दिया, तो उसने, प्रकाश ने कहा ये क्यों नहीं बनाता अपने बैनर के लिए, तो उनके बैनर के लिए मैं बना रहा हूँ। अब वो उसका नहीं रहा, मेरा भी रहा, मेरा हो गया उसका बैनर
0: जी,
1: तो उसके लिए बना रहा हूँ।
0: और प्रहार आपकी
1: पहली फिल्म निर्देशित,
0: तो प्रहार के बारे में क्या यादें हैं कुछ बताइए ना।
1: प्रहार के बारे में मैं जब भी प्रहार देखता हूँ, मेरा जो बच्चा है उसमें से छोटा सा, मेरे बचपन का रोल उसने किया है, मैं सच कहता हूँ आज भी मैं अपने बच्चे को देखता हूँ मुझे वही बच्चा याद आता है, मेरे जो बड़ा हुआ मुझे मल्हार जो है वो मेरे जहन में ही नहीं बैठता, मुझे वही बच्चा याद आ जाता है। तो प्रहार के साथ मेरी जुड़ी हुई जो बातें है वो मल्हार के साथ जुड़ी हुई है, जिस तरह से मैंने उससे काम करवाया था, वो बेचारा रोता था, उसको रुलाने के लिए मैंने क्या किया, और आज भी वो मिलता भी है तो उसी तरह से मिलता है।
0: जी, कैसे करते थे, कैसे रोल कैसे करवाते?
1: यार रो नहीं रहा था तो दो चाटे लगा दिए, मैंने कहा रो, और वो इतना
0: दुख नहीं होता था आपको?
1: हमने क्या करे, लेकिन वो शॉट चाहिए था, और बाद में मैंने उसको गले लगाया तो मुझे ढकेल रहा था, कहता कि नहीं मुझे गले लगना, तूने मारा मुझे, सबके सामने मारा, और भीड़ के बीच में मैंने उसके साथ वैसे बर्ताव किया था। खैर काफी अच्छी यादें हैं।
0: अच्छा, फिल्म प्रहार के निर्देशन का ख्याल कैसे आया था आपके मन में?
1: वही बात कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बहुत पहले, वो तो मैं कर नहीं पाया, वहां खड़की में, मैं पुणे में जाते हुए खड़की जो लगता है, खड़की में हम जब भी कोई मैं जवान देखता था उनका सामान उठाओ या कुछ करो उनको सलाम करो जहन में था, लेकिन जिस तरह से उनकी इज्जत होनी चाहिए वैसे वो जो हमारे सिविल एरिया में जब आ जाते हैं तो उस तरह की उनकी इज्जत नहीं की जाती है, ऐसे मुझे लगता था। और फिर वो लगातार जब हमारे यहाँ वॉर होती है तब हम बड़े नारेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे वो खत्म हो जाता है हम उनको भूल जाते हैं, उनकी कुर्बानी भूल जाते हैं, तो उस वजह से वो जहन में था। उसके बाद मैंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में स्पेशल परमिशन लेके काफी वक्त गुजारा, वहाँ पूरी स्क्रिप्ट लिखी और बाद में ये फिल्म बनाई थी।
0: अच्छा, ये बहुचर्चित बहुप्रशंसित फिल्म थी, लगभग 15 साल हो गए, हमने सोचा था कि आप और फिल्में डायरेक्ट करेंगे।

0: लेकिन इस बीच आपकी फिल्में आई नहीं, क्या वजह थी?
1: नहीं, वजह ये थी कि बीच में जब मैं वैसे बहुत ही साधारण घर से था, उतने पैसे थे नहीं मेरे पास, ये फिल्म करने के बाद काफी ऑफर्स आई तो पैसे बटोरने में मैं मशगूल हो गया, हालांकि ये गलत था। और अपना एक घर हो, छोटा सा क्यों ना हो, उस घर के लिए, फिर आदमी हूँ, इंसान हूँ, तो फिर वो लालचें बढ़ जाती है, फिर ये थोड़ा सा ये भी चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, और ये बढ़ता गया और वो मैं कर नहीं पाया। अब जाके ऐसे लगता है कि जिंदगी में जितना कुछ चाहिए था वो उससे बहुत कुछ ज्यादा ऊपर वाले ने दे दिया है। तो एक जहन में कहानी थी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक बार आप सोच लो कि मुझे इतना चाहिए और वहाँ अगर रुक जाओ ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हम उसमें इतने मशगूल हो जाते हो बटोरने में।
0: अच्छा, फिल्मों में आप बड़े गुस्सेल नजर आते हैं और मुझे भी पूछते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है तो इस जो असली जिंदगी है, असली शख्सियत क्या है नाना पाटेकर की?
1: नहीं, अब आपने मुझे देखा है, आप पहली बार मुझे मिल रही है,
0: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ, तो आपको तो मालूम है मैं मेरे किरदारों की वजह से, अब किरदार ही ऐसे निभा है तो ये बिल्कुल जायज है कि आपको लगे कि नहीं मैं वैसे ही हूँ। अब अभी आप मिली है तो आपको शायद पता चला होगा कि मैं उतना डरावना नहीं हूँ जितना आपने सोचा था। लेकिन वो क्या, जैसे एक बार एक किरदार अगर लोगों को पसंद आ जाता है वो फिर उसी उसी तरह के किरदार में आपको डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर वो कैद कर देते हैं।
0: पर असल जिंदगी में नाना पाटेकर बड़े ही अच्छे और
1: हाँ भाई, मैं भी हंसना चाहता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, मैं भी सोता हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी हंसी आती है, मुझे भी दुख होता है।
0: अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कोई आपकी पसंद का गाना सुनते चले?
1: वो एक जो दो आंखें भारत का सैया
0: सैया झूठों का बड़ा सरदार
1: निकला,
0: जी सुनते हैं।

0: अच्छा मुनाना, जैकी श्रॉफ के साथ आपकी कई फिल्में आई हैं?
1: 4-5 फिल्में हैं।
0: हाँ, परिंदा, अग्निसाक्षी, युग पुरुष भी।
1: युग पुरुष थी, फिर गैंग थी।
0: तो जैकी के लिए कुछ बताइए ना, कैसी ट्यूनिंग रही है, कैसी दोस्ती रही?
1: जैकी बहुत अच्छा दोस्त है, बेहतरीन इंसान है। ऊपर से दिखाता है बहुत ही ऐसे है नहीं, वो बहुत बहुत बहुत ही सीधा सा बंदा है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त है।
0: जी, तो कोई वाक्या बताइए ना दोस्ती का, कि लोगों को भी यकीन हो।
1: आज तक मिलते रहता है, आज तक गणपति में आता है, बीच में जभी फोन करके पूछता है, माँ कैसी है, तू कैसा है, टाइम है क्या, चलाऊं क्या कैरम खेलने। वो पहले शशिलाल नायर, वो मैं, काफी अंगार फिल्म जब हमने की थी, काफी खेला करते थे। वेरी नाइस सोल।
0: अच्छा, जैकी श्रॉफ के लिए कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: जैकी श्रॉफ

संगम पर।

0: अच्छा जैकी साहब, के लिए और कुछ बताना चाहेंगे? कोई खास घटना, थोड़ी नोक झोंक, तकरार भी होती है?
1: नहीं, जैकी के साथ कभी तकरार हुई ही नहीं, वो उसके साथ तकरार नहीं हो सकती
0: कभी।
1: ज्यादा गुस्सा आएगा उधर, चले यार जाने देना छोड़ना, खत्म हो गया, उधर ही खत्म हो जाता था उसका।
0: अच्छा नाना, लोग आपकी डायलॉग डिलीवरी के बारे में बहुत चर्चा करते हैं और डायलॉग डिलीवरी के बड़े दीवाने हैं यूं कहें, लेकिन आजकल फिल्मों में जैसे ज्यादातर फिल्मों के डायलॉग हिट नहीं होते हैं, हालांकि आपके फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है, तो आप कितनी मेहनत करते हैं इसके लिए?
1: मुझे नहीं मालूम, ये सभी कुछ निर्भर होता है कि वो फिल्म लिखते जो है, मेरा श्रेय उसमें 10% होगा, लेकिन जो लिखते हैं उस पर ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन वो किरदार कौन सा है, किस तरह से आपको निभाना है, उस पर निर्भर है। हर जगह वो उस तरह से नहीं बोल सकते आप।
0: कोई खास तैयारी करनी पड़ती है आपको?
1: रटने तो पड़ते हैं भाई, वो अंदर डालने पड़ते हैं। सिर्फ रटना नहीं, अगर नाभि तक जाए तो वहां से वो आते हैं, तब गले से उतरते हैं तो वो झूठ लगते हैं, अंदर से आते तो आप वो खांसते भी है तो भी अच्छा लगता है, आवाज आपकी श्रील हो जाती है तो भी अच्छा लगता है, फटती है तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि नहीं वो अंदर से जहन से बोल रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है।
0: क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन से डायलॉग्स आपको बहुत पसंद है आपकी फिल्मों के?
1: नहीं, मुझे याद ही नहीं
0: याद
1: उस वक्त याद

0: रहता है क्योंकि वो उस प्रसंग से निगड़ित रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट सही होता है। अभी आइसोलेशन में अभी ऐसे बोलूं मैं अलग से तो उसका मजा नहीं है।
1: संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में आपने
0: उसके डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, मेरे
1: बताना चाहेंगे?
0: ना
1: बताइए ना,
0: याद कीजिए उसके कौन से है, बोल ही नहीं सकते, उसके गुंगे का रोल था ना, उसके बारे में क्या बोलूं, आपको बोलना चाहिए उसके बारे में।
1: किस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ी?
0: काफी संजय ने एक जो बच्ची थी हमको सिखाने के लिए, एक खुद
1: जी।
0: वैसी थी, उसका बच्चा जो मेरे बच्चे का रोल किया था वो उस संगीता का लड़का था उसमें
1: जी।
0: तो वो हमें पढ़ाती थी, सिखाती थी, और उसके बदौलत मैं जो कुछ कर पाया। लेकिन वो संजय ने उसका सब जिम्मा लिया था। संजय बहुत मतलब करता है जब, तो वो पूरा उसमें अपने आप को पूरा डाल के वो करने की संजय की
1: अच्छा, खामोशी की चर्चा हो रही है, खामोशी का जिक्र हुआ है, तो उसी फिल्म का गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: आज मैं ऊपर।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत, और आज हम उन्हें दे रहे हैं विनम्र श्रद्धांजलि। ये कार्यक्रम जारी रहेगा समाचारों के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जलशक्ति

0: मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषध कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दोस्तों, समाचारों से पहले आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आइए उस बातचीत का आगे का हिस्सा सुनते हैं।
2: अच्छा नाना, आपकी दो छवियां मानी जाती हैं, तो आपकी दोनों छवियों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक तो गुस्सेल छवि है और दूसरी बड़ी सॉफ्ट है। तो आपकी कई ऐसी फिल्में जिसमें आपका किरदार तेज तर्रार और मार धाड़ वाला है, जैसे क्रांति वीर, गुलाम ए मुस्तफा, अग्निसाक्षी, तिरंगा या फिर अब तक।
3: अग्निसाक्षी में कहां मार धाड़ है,
2: थोड़ा गुस्सेल तो रहा।
3: गुस्सेल तो बहुत ही है, लेकिन मारधाड़ कहाँ है?
2: तो गुस्सेल भी है और मार धाड़ वाला रोल, मतलब दोनों को हम मिक्स करते हुए बात करना चाह रहे हैं। तो अपनी इस छवि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं क्या कहूँ, तुम बताओ। तुम बताओ क्या है?
2: कैसा अनुभव रहता है आपको? क्या
3: अरे भाई, अनुभव तो आप लेते हैं, मैं तो कुछ अलग ही हूँ, मुझे मालूम है
2: जी।
3: ये तो मेरे लिए सिर्फ एक किरदार होता है
2: जी।
3: आपका अनुभव क्या है? बहुत से लोग ऐसे है कि अग्निसाक्षी के बाद वो औरतें मुझसे बात ही नहीं करती थी कि नहीं ये बंदा ऐसे, लेकिन कहीं वो आइडेंटिफाई भी करती थी कि हमारा मियाँ भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है, इतना ही पजेसिव है, इतना ही थोड़ा सा मारधाड़ उतनी नहीं करता होगा
2: जी।
3: लेकिन हर कोई बंदा अपनी बीवी के बारे में उतना तो पजेसिव होता है, जितना दिखाया हमने उतना तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक तो होता ही है, तो कहीं तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है
2: जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो छवि आपकी है, इस छवि में कहीं कैद तो नहीं किया जा रहा है?
3: हाँ, बहुत बहुत कैद हो गया। मैं सच कहता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर उस वक्त मैंने वो लगातार वो जिस तरह के रोल किए वो नहीं करता, तो शायद मुझे अलग तरह के रोल उस वक्त मिल जाते, लेकिन वो वैसे हुआ नहीं। लेकिन उसके पहले मैंने परिंदा के बाद अगर मैं अमोल पालेकर ने मुझे
2: जी।
3: थोड़ा सा रुमानी हो जाए उस तरह की फिल्म, मतलब उन्होंने भी सोचा था कि नाना ये तुम्हारे मतलब प्रकृति का रोल है नहीं और तुम ये नहीं कर पाओगे। मैंने कहा भाई एक्टर हूँ, थोड़े दिन मेरे साथ रिहर्सल कर ले और बाद में देख ले, अगर तुझे नहीं जचता तो निकाल दे मुझे। और फिर मैंने वो फिल्म उनके साथ की थी, हालांकि उसके डायलॉग जो है बहुत कमलेश पांडे ने लिखे थे
2: जी।
3: तो मतलब वो मुक्त छंद में लिखे हुए वो डायलॉग थे, मतलब हाँ मेरे दोस्त वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। तो जिस तरह से उसका रिदम था, इसे पानी भी कहते हैं उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं, संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, उद, अंबु भी कहते हैं, ग्रीक में इसे अक्वाप्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है। और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है, इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूँ। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश सिर्फ 5,000 रुपए में, इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी, मेरी बारिश। तो ये जो है,
2: क्या बात है, बहुत अच्छा।
3: ये उन्होंने लिखा है आज इतने सालों के बाद, मतलब 15-16 साल के बाद भी वो जहन में रहता है, क्योंकि उसका एक जो रिदम है, उसके वर्ड्स है, उसकी वजह से याद नहीं करना पड़ता
2: जी।
3: तो वैसे वो वजूद में उन्होंने, जावेद साहब ने जो लिखा था, कैसे बताओ मैं तुम्हें
2: जी।
3: मेरे लिए तुम कौन हो, धड़कनों का तुम गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और

0: जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। सो ये जो है ये हुनर राइटर का है, नहीं तो ये जहन में कैसे रहेगा, सोचना नहीं पड़ता, वो लफ्ज अपने आप जुबान पे आ जाते हैं
1: जी,
0: क्योंकि वो दिमाग में नहीं है, जहन में जाके बैठा है
1: जी। पर तारीफ का थोड़ा श्रेय तो आपको इस वक्त लेना चाहिए, वो याद है आपको
0: वो क्या है, पोस्टमैन जैसे वो यहाँ से पत्र वहाँ डाल देता है ना
1: जी,
0: वैसे हमारा काम है वहाँ से ले लिया और आप तक पहुंचाया बस
1: जी। बहुत अच्छा लगा हमें और जो आपने इतना सारा सुनाया और हमारे श्रोता भी बहुत मेरे ख्याल से,
0: मैंने आपको कहां मौका दिया, मैं तो बोलते गए आप चुप बैठी सुनना पड़ा आपको
1: इस वक्त तो आपको सुनना लोगों को ज्यादा पसंद आएगा इसलिए आप ज्यादा बोले। अच्छा गुलजार साहब के साथ हुतुतु में आपका कैसा अनुभव रहा है?
0: बहुत अच्छा अनुभव रहा, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि वो किरदार, अब गुलजार साहब ने एक बार स्क्रिप्ट लिख दी तो लिख दी, उसमें कोई बदलाव आ नहीं सकता, वो उतना ही वैसे ही वैसे। मैं चाहता था कि वो थोड़ा सा, मैंने बहुत मिन्नतें की लेकिन उन्होंने मेरा रोल बढ़ाया नहीं, वैसे ही रखा।
1: अच्छा
0: बिल्कुल जायज था, लेकिन वो करते हुए हर एक आदमी का एक अपना तरीका होता है काम करने का। लेकिन वही गुलजार साहब जब वो खुद कैमरा के सामने खड़े हुए ना तो पूरे पसीना पसीना हो गए थे।
1: अच्छा।
0: तो वजूद में उनको मुझे ट्रॉफी देनी थी, इतना ही रोल करना था। गुलजार साहब मतलब सर से लेके नाखून तक नीचे भीग गए थे। मैंने कहा आप कैसे लगा, वो उस वक्त आसान लगता था ना, नाना ऐसे करो ऐसे करो, तो कहते बदतमीज ठहर जरा खत्म होने दे फिर बता दो।
1: अच्छा।
0: तो वो हर एक की अपनी एक फैकल्टी होती है। गुलजार साहब जब कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि मतलब क्या सुनते ही रहे, हर एक का एक अपना तरीका है, बड़ा मजा आता है।
1: गुलजार साहब के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: गुलजार साहब के लिए
1: मेरा गोरा अंग ले ले मुझे शाम रंग,
0: ये उनका लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से उनका पहला गाना है।

0: आपने थोड़ा सा गुनगुनाया लेकिन बहुत धीमे धीमे गुनगुनाया।
1: हाँ, इससे ज्यादा गुनगाऊंगा ना सब रेडियो बंद कर देंगे ना, जोर से गुनगाऊंगा।
0: अगर सच में गाते हो आप, मैंने सुना है कि आप संगीत के बहुत शौकीन हैं।
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है संगीत,
0: शास्त्रीय संगीत।
1: तानसेन तो नहीं बन सका लेकिन मैं कानसेन हूँ, मैं सुनता बहुत हूँ, और शास्त्रीय संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि विदेशी संगीत मैं बहुत कम सुनता हूँ, तो शायद वो विदेशी संगीत मुझे रास नहीं आता, उसकी वजह यह है कि मेरी अकल कम है, वो अंग्रेजी आती नहीं है ज्यादा, तो उसकी वजह से शायद। लेकिन शास्त्रीय संगीत भी कोई समझ में नहीं आता, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है।
0: कभी गाते नहीं है?
1: नहीं, गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, लेकिन किसी को डराना है तब।
0: अच्छा। नाना, अब मैं आपकी दो तीन महत्वपूर्ण फिल्मों की बात करना चाहती हूँ, एक सलाम बॉम्बे, दीक्षा और त्रिशाग्नी। तो बतौर अभिनेता ये बताइए कि आपको क्या संतोषजनक लगी थी ये फिल्में, क्योंकि ये फिल्में ऑफ बीट थी, बल्कि आजकल की शैली में कहें तो कला फिल्मों का दर्जा दिया जाता है। बतौर अभिनेता ये बताएं कि कैसी लगी थी आपको?
1: नहीं, मुझे, मैं सच कहता हूँ, मैं जब स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगती है तो मैं तुरंत हाँ कर देता हूँ, फिर रहती बात

0: कि आपका किरदार क्या है उसमें। अब ये फिल्में जब मैंने हाँ बोल दी थी, दीक्षा का वैसे रोल बहुत ही छोटा था, सलाम बॉम्बे का हालांकि काफी फुटेज थी उसको, या त्रिशाग्नि तो पूरी फिल्म ही उस पर है, उस कैरेक्टर पर। एक रहती है कि यहां से निकल के आप कहीं सीखने जा नहीं सकते, और इधर अंदर रहते हुए एक सीखने का मौका होता है। तो घोष साहब थे जिन्होंने त्रिशाग्नि बनाई, तो उनके साथ एक सीखने का मौका मिला था। फिल्म चलेगी कितनी नहीं चलेगी मुझे मालूम नहीं था, इसलिए त्रिशाग्नि की। दीक्षा उसी तरह पहले बनी हुई फिल्म थी, दूसरी भाषा में घटश्राद्ध उस पर वो आधारित थी, लेकिन घटश्राद्ध में मेरा कैरेक्टर नहीं था, बहुत ही एक शॉट के लिए था जिसको उसको थोड़ा काफी फुटेज दी थी इसमें। और तीसरी थी सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे में जिस तरह से पहले मैं सहमत नहीं था, मैं सच कहूं जिस बार मतलब फिल्म कंप्लीट होने के बाद सलाम बॉम्बे देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि निर्देशक हमारी यहाँ की गरीबी और वो गंदापन कितना है वही दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उस पर तो मुझे मैं उतना खुश नहीं था। लेकिन जिस वक्त ये फिल्में मैंने साइन की थी, लेकिन ये त्रिशाग्नि और इसने मुझे बहुत सुकून दिया। वो सीखने मिलता है अलग लोगों के साथ काम करके सीखने मिलता है, तो एक प्रोसेस था वो, उस प्रोसेस से मैं गुजरना चाहता था।
1: अच्छा, इन तीनों फिल्मों की बात करते हुए थोड़ा सा गंभीर हो गया है माहौल,
0: क्यों
1: थोड़ा सा लग रहा है?
0: आप गंभीर हो
1: तो माहौल को हल्का करने के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ, क्रांतिवीर फिल्म में आपने अच्छा खासा डांस किया था बिंदु जी के साथ।
0: हाँ, मैं हिल गया था वहाँ ऐसे, मतलब टेढ़ा बाका उसको डांस कहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो उसने मेहुल कुमार ने कहा ये ऐसे है, मैंने कहा हाँ भाई। और हमारी डांस डायरेक्टर या हमारा डांस डायरेक्टर विजय ऑस्कर आई थिंक डांस डायरेक्टर, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई देखो एक टेक होने के बाद दूसरे टेक में मैं वैसे ही नाच नहीं सकता, क्योंकि मैंने कैसे नाचा हूँ मुझे ही मालूम नहीं, तो आपने एक बार जो तीन चार कैमरे लगा के जितना करना है वो कर लो
1: जी।
0: क्योंकि मुझे मतलब बिंदु जी के साथ नाचना था, बिंदु जी को कहा, मैंने कहा आप जैसे नाचती है वैसे तो मैं नाच नहीं पाऊंगा, तो मैं जैसे नाचूंगा वैसे आप नाच पाएंगे क्या? तो उनका पूरा ध्यान मेरी तरफ था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: और बिंदु जी को इतना परेशान कभी शायद ही किसी ने किया होगा, लेकिन तो कुछ नहीं, एक अपने आप को महसूस करके जो भी करना था वो कर लिया था और कन्विंस हो गया था मैं कि नहीं वैसे करना जायज है, तो कोई पिछले साल नेशनल में हिस्सा भी लिया
1: जी,
0: कुछ थोड़ा सा
1: सिल्वर मेडल वगैरह आपको मिला?
0: हाँ, वो तो चलता है
1: कुछ कैसा लगता है आपको?
0: नहीं, अच्छा लगता है। क्या होता है कि ये फिल्म आपके पास कोई एक और एक जरिया हो जिसकी वजह से अपनी इंटेंसिटी है कहीं, तो आप डाइवर्ट कर सकते हैं। फिल्में तो मैं लगातार नहीं करूंगा, तो एक बेहतरीन सा कोई एक ऐसा खेल हो या कोई और हुनर हो जिसमें आप अपने आप को ढाल सकते हैं, तो मुझे ये पहले से दिलचस्पी थी, रुचि थी इसमें, तो इसमें गया और मजा आ रहा है,
1: अच्छा लगता है।
0: हाँ।
1: अच्छा, सिल्वर मेडल की बात हमने की है तो हमें याद आया पुरस्कारों की, आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, तो आपके जीवन में क्या महत्व है अवार्ड्स का?
0: मैं सच कहता हूँ अवार्ड्स का मेरे जीवन में बिल्कुल कोई महत्व नहीं है। पहले अच्छा लगता था नेशनल अवार्ड, आज भी मैं कहता हूँ मुझे मिले तो मुझे अच्छा लगेगा, उसके अलावा मैं किसी भी अवार्ड के लिए
1: जी।
0: अब हमारे शूटिंग के राइफल शूटिंग में तो मैनिपुलेशन का कोई सवाल ही नहीं है, आपने जो एक हाथ दिखाया दूसरे हाथ ले लिया, क्या करना है वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ किसको क्या अच्छा लगे, कौन क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता।
1: सही अवार्ड तो लोगों की चाहत और लोगों
0: बस
1: की
0: बहुत है, बहुत लोगों को पसंद आया वो, अगर वो खुश है बस बहुत हो गया। ये मैं ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि तीन नेशनल अवार्ड मिले, तीन फिल्म फेयर मिले, खैर वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जिस तरह से दिए जाते हैं तो वैसे लगता है कि ये दिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, क्या होता है? तो वो जब संदेह निर्माण होता है आपके दिमाग में, जहन में, तो वो ना ही लो तो अच्छा है।
1: नाना साहब, क्या आज भी आप पेंटिंग किया करते हैं? बचपन में तो किया करते थे ये?
0: नहीं, बचपन में नहीं, मैं मतलब कॉलेज में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में था, फिर वहां से मैं पास होके कमर्शियल आर्ट की डिग्री लेने के बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी में दस्टूसा में, तो आजकल कभी सेट पे बहुत ही मतलब टाइम लग रहा है, लाइटिंग हो रही है तो स्केचिंग कर लेता हूँ।
1: कुछ और बातें करें आपसे, कुछ व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी हुई, तो ये बताइए कि नाना का पसंदीदा खाना क्या है?
0: दाल चावल।

0: नॉनवेज तो मुझे उतना रास नहीं आता, रोटी सब्जी तीखा हो तो जरा ज्यादा अच्छा है
1: जी,
0: बस मीठा नहीं खाता।
1: कभी खुद बनाने की कोशिश नहीं की?
0: खुद ही बनाता हूँ।
1: अच्छा।
0: ज्यादातर खुद ही बनाता हूँ, शायद उसी की वजह से तीखा बन जाता है।
1: अच्छा, राणा साहब सुना है कि आप क्रिएटिव राइटिंग में बहुत विश्वास रखते हैं।
0: क्रिएटिव राइटिंग मतलब यू बेटर डिस्क्राइब इट, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग?
1: मतलब आप लिखते हैं साहित्य से जुड़ी हुई कुछ चीजें, कहानियां कविताएं इस तरह की कुछ चीजें लिखते हैं, कहीं पढ़ा हमने।
0: इसको आप क्रिएटिव राइटिंग कहती हैं? ऐसे नहीं, बताइए इसको आप क्रिएटिव राइटिंग कहती हैं?
1: मतलब यूं हम जानना चाहते हैं कि लेखन से कुछ आपका जुड़ाव रहा।
0: हाँ, लेखन से, लेकिन उसको क्रिएटिव राइटिंग नहीं कहते। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है बताऊं आपको? आप अगर जानना चाहते हैं तो बताऊंगा।
1: जो हम मतलब जो महसूस करते हैं उसको लिखना?
0: नहीं, महसूस करते हैं उसको लेखन कहते हैं। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है मुझे भी नहीं मालूम, तो हम इसको भूल जाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो लेखन में तो मैं रुचि रखता हूँ, थोड़ी बहुत जो जहन में आता है वो लिख लेता हूँ।
1: किस तरह की चीजें लिखते हैं? जैसे
0: किस तरह की? मतलब आपने मुझे पूछा घर में कौन है, तो मैं कहता हूँ घर में है बस छह ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं, रात सावली एक सहेली, गोरा चिट्टा दिन है दोस्त, घर में है बस छह ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं, ऐसे टेढ़ा वाका कुछ लिख लेता हूँ। अब देख रही है, बोल रही है नहीं कुछ?
1: मैं सुन रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आगे कुछ आप सुनाएंगे।
0: मुझे लगा देख रही है, लेकिन आप सुन भी रही थी। नहीं,
1: मैं अभिभूत हूँ कि आप कुछ और सुनाने जा रहे हैं। अगर
0: नहीं,
1: क्योंकि लोगों को सुनना पसंद आएगा।
0: मुझे लगा कि आंखों में ऐसे था कि क्या यार ये पागल आदमी है, या मुझे सुनना पड़ता है ऐसे था, इसलिए मैंने चुप बैठा।
1: नहीं, मैं सुन रही थी कि लोग क्योंकि आपको सुनना पसंद करेंगे, इसलिए मैं सोच रही थी ज्यादा से ज्यादा आप सुनाए तो अच्छा लगेगा।
0: लेकिन क्या है, लोगों को हम दिखाई नहीं दे रहे
1: जी,
0: आपकी आंखें लोगों को दिखाई नहीं दे रही, आपकी आंखों में ये आदमी क्या बकवास कर रहा है ऐसे कुछ लिखा था वो मैंने पढ़ लिया। नहीं, सच बता रहा
1: हूं।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: अच्छा नाना साहब, डायरेक्टर पार्थो घोष ने विविध भारती के स्टूडियो में एक बार जिक्र किया था कि आपको पहाड़, जंगल और नदी बहुत पसंद है।
0: हाँ।
1: तो वो मतलब आप उनको कहीं ले गए थे फार्म हाउस में, तो वो क्या थी कहानी कुछ हम जानते
0: हैं? उनको फार्म हाउस पे लेके गया, काफी बारिश होने लगी, पानी से गुजर रहे थे हम नाव से, और इतनी ठंड थी, तो पार्थो घोष मतलब वहां जंगल उनके सर पे कम है, आपने देखा होगा उनके बाल झड़े हुए हैं, तो उनको वहां से ठंड शुरू होती थी और नाखून तक पैरों के, और वो इतने कांपने लगे, और वहां जाने के बाद वो हमने स्वेटर वगैरह तो थे नहीं, थोड़ा सा लिक्विड स्वेटर ले लिया हमने, और हमारी ठंड जो है उसको काबू में रखने की कोशिश की। और वो जो है वहां वो बहुत डर गए थे, हालांकि उनको वो आदत नहीं है ऐसे जंगली जीने की, और मेरा चेहरा और मेरा बर्ताव भी आदिवासी है तो क्या करें। लेकिन मैं सच कहता हूं कि जो सुकून आपको पहाड़ों में, या वो हर एक की अपनी चाह है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको भीड़ ना देखे तो वो घबरा जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी रोज छवि अखबार में अगर छप के नहीं आए तो उनको लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार हो गई, बेचारे कितने बड़े बड़े हमारे एक्टर हैं, उनको लगता है नहीं हर विज्ञापन में उनको होना चाहिए, हर फिल्म में उनको होना चाहिए, हर इंटरव्यू में उनको होना चाहिए, हर सामाजिक क्षेत्र में भी उनको होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। लेकिन वो कभी कभार ऐसी बात होती है कि इतना सब कुछ कमाने के बाद कभी विपत्ति आ जाती है, हमारे बंबई पर अभी आई हुई है, बारिश हो गई, उनकी अपनी हाथ अपने जेब में नहीं जाती, उनको अगर पैसे देने हैं तो कहेंगे हमारी शर्ट का नीलाम करो, इसका नीलाम करो, ये बेचो हमारा, हम जाके लोगों के पास पैसे मांगेंगे, लेकिन अपने जेब में हाथ नहीं डालते। तो ऐसे लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मतलब इतना प्यार करता हूँ, कभी ऐसे मिले ना तो मैं नहीं बोल सकता कि मैं उनके साथ कैसे बर्ताव करूंगा।
1: अच्छा, इन दिनों आपकी क्या व्यस्तता है, कि कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं?
0: फिल्में अभी तो फिलहाल तीन फिल्में पूरी हो गई, एक अपहरण है, एक दूसरी ब्लफ मास्टर है, और तीसरी टैक्सी नंबर 9211 है। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तीन फिल्में लगातार आएगी, जो जिंदगी में मेरे कभी नहीं हुआ था। 5 साल का काम मैंने 1 साल में कंप्लीट कर दिया है। आपका गांव कौन सा है?
1: इलाहाबाद।
0: इलाहाबाद, अरे आप अमित जी के गांव से है। अरे बाबा,
1: कैसे आपके जहन में अचानक ये सवाल कैसे आया?
0: नहीं, मैंने कहा आप इतनी

0: साफ सुथरी हिंदी बोल लेती है और मेरी हिंदी ऐसी मतलब टूटी फूटी है। आपको तो कोई चारा ही नहीं बोलने, मतलब आप बोली भी नहीं सकती कि नहीं आप बुरी बोल रहे। बाद में शायद जाते वक्त अपने कलीग से बोलेगी आप, अभी तो नहीं बोल सकती।
1: पर्दे पर आपको खूब देखा है, खूब सुना है और बहुत पसंद सब लोग करते हैं यहाँ तक।
0: मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सब करते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम।
1: मुझे भी बहुत पसंद है आपका,
0: आपसे मैंने बुलवा के रखा कि नहीं देखो।
1: अरे मुझे बहुत पसंद है आपकी एक्टिंग, बहुत ही पसंद है। लेकिन मुझे ऐसा

0: अच्छा चलिए नाना साहब, ये बताइए कि भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
1: भविष्य में मालूम नहीं है, मैं आज पे विश्वास करता हूँ। भविष्य क्या है मुझे मालूम नहीं है
0: जी।
1: कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है। अभी की सांस अभी लूंगा, बात की ले पाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो भविष्य पे मेरा विश्वास नहीं है।
0: कोई फिल्म बनाना चाहते हैं?
1: नहीं, बनाना चाहता हूँ, कोई योजना नहीं है, वो चाह है।
0: तो तबले की बात की है, और क्या क्या रुचियां हैं आपके एक्टिंग के अलावा?
1: तबला क्या हुआ, मैं जब मैं शुरू किया था सीखना, मैं एक दो तीन साल सीखा, उसके बाद वो हालात ऐसे थे मैं सीख नहीं पाया, क्योंकि फिर बाद में नौकरी करना शुरू किया मैंने बहुत कम उम्र में, फिर मैं कुछ कहीं और बजाना शुरू कर दिया लोगों के, तो फिर वो कंट्रोवर्सी में चला गया। तो ऐसे बुरी
0: अच्छा,
1: बुरी
0: चलते चलते नाना साहब बताना चाहिए।
1: मैं नहीं, बैठे बैठे चलते कहाँ चलने, बैठे बैठे बोलेंगे चलते चलते कहाँ।
0: अच्छा सुना है गणेशोत्सव बड़े शौक से आप मनाते हैं, क्या क्या तैयारी करते हैं?
1: तैयारियाँ मतलब हर साल, मेरे पिताजी जब थे वो करते थे, पिताजी के जाने के बाद मैंने माँ को कहा था कि मैं ये त्योहार बंद कर दूंगा, तो माँ ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो करो। तो मैंने कहा माँ अगर तू चाहती है अगर मैं ये करूँ तो तू जिंदा रहे। अब माँ की उम्र है 85 और पिछले 25 साल से पिताजी के गुजर जाने के बाद 25-26 साल से मैं वो कर रहा हूँ, मैं मेरे भाई सब मिलके। उस 10 दिन में कोई शूटिंग नहीं, कोई डबिंग नहीं, कुछ नहीं, 10 दिन मैं अपने घर में रहता हूँ।
0: कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: आप सुनाइए, अभी इतनी देर मेरे पसंद के गाने आप सुनवा रहे थे, आपके पसंद का कौन सा गाना है? कौन सा है बताइए।
0: बहुत सारे
1: नहीं, नहीं बहुत सारे नहीं, एक अभी एक ही आप बताइए।
0: लता जी का गाया हुआ
1: कौन सा? लता जी ने ही तो सारे गाने गाए हमारे जिंदगी में, हम सुनते आ रहे हैं।
0: तुम्हारे लिए का मुझे बेहद पसंद है।
1: तुम्हारे
0: तुम्हारे लिए?
1: हाँ कौन सा?
0: तुम्हें देखती हूँ तो।
1: अरे वाह,
0: आपको पसंद है?
1: बिल्कुल, लता जी का कौन सा गाना किसको पसंद नहीं है,
0: वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम
1: ये हमारे लिए, हम सभी जो है उनको जिंदगी में एक वरदान मिला है कि आपके आंखों को शायद हमारे यहाँ कुछ बुराइयां नजर आ रही है, लेकिन कान को एक सुकून मिलेगा जिंदगी भरे, ऊपर वाले ने हमको कहा, इसलिए लता जी को इस दुनिया में भेजा है। क्या है जो मेरी हिंदी है
0: जी,
1: वो उतनी साफ सुथरी नहीं, आप इलाहाबाद की है, आपकी हिंदी काफी, तो वो मुझे लफ्ज ढूंढने पड़ते हैं अगर मैं हिंदी
0: लेकिन
1: में बात
0: बहुत
1: करता
0: अच्छा लग रहा है।
1: मैं वो मतलब फेरी बाकी तो बोलता हूँ, अगर मेरी भाषा है जिसने मतलब जिस भाषा में आप सपने देखते हो वो आपकी मातृभाषा है, मराठी में सपने देखता हूँ, नहीं तो काय होता कि मराठी मध्ये बोलत असताना ते शब्द असे सहज येतात, आता तुला कळत नसेल मी काय म्हणतोय, कुठली गाणी नाना कुठलं गाणं तुला म्हणायचंय काय म्हणायचंय, तर मग एकला जरा न साजरा मुखडा चंद्रा वाणी फुल लाग, राजा मदन हसतोय कसा न जीव माझा फुल लाग, एकला जरा न साजरा मुखडा चंद्रवाणी फुल लाग, राजा मदन हसतोय कसा न जीव माझा फुल लाग, नको राणी नको लाजू लाज मदी नको भिजू, हित नको तित जाऊ आडूशाल उभं राहू का बघत्यात, एकला जरा न साजरा मुखडा चंद्रवाणी फुल
0: लाग।
1: आयला मराठी माणसांना कळायला पाहिजे का नाही, नानाचा मुलाखत म्हटल्यानंतर, नाही तर जोड्याना हानतील ना मला। राम राम,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने
1: अब एक बार हंस के दिखाइए। नहीं नहीं एक बार ऐसे नहीं, अब मुंह उधर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया नाना साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम में ममता सिंह के साथ बातचीत की सेल्यूलॉइड की दुनिया के जाने माने स्टार नाना पाटेकर ने। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया विनीता ढोलकिया ने, और विविध भारती के लिए इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी।
3: जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर को ये थी विनम्र श्रद्धांजलि।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा, लिखा जोखा, कल दिन भर के कार्यक्रमों का। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदन बार, 6:35 पर श्री रामचरितमानस का अनकल भाग 336। संगीत सरिता कार्यक्रम सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर होता है। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। कल 9वीं कड़ी होगी। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की है, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 समाचार प्रभात होगा। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 वंदे मातरम एक जय घोष। लिखक है मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कल होगी कड़ी 49। सुबह 8:30 पर सुनिएगा चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होता है। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार और गायक रविंद्र जैन पर। ये कार्यक्रम आप रात 9:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। रोज की तरह रंग तरंग कार्यक्रम होगा दिन में 11। दिन में 12 समाचार होंगे। 2:15 पर दोपहर समाचार, शाम 6 समाचार और उसके बाद रात 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण। दिन में 12:05 पर यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर, 9 सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे 2:30 पर होगा। हेलो सहेली कार्यक्रम होगा दिन में 3। गीतों भरी कहानी शाम 4, कहानी यादों की तपिश का दूसरा भाग। ममता सिंह की यह कहानी है, वही सुना रही हैं और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

छाया गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 5 बजे तराने नए पुराने कार्यक्रम 5:30 पर होगा। 6:35 पर संध्या रंजन, संगीत सरिता 6:45 पर, जैसा कि हमने आपको बताया श्रृंखला चल रही है शताब्दी की बातें, भक्ति रचनाएं 9वीं कड़ी होगी, कलाकार हैं पद्मश्री शेखर सेन। जय माला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे और 7:45 पर गुलदस्ता। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत नाटिका सुनिएगा आम्र मंजरी, राममूर्ति चतुर्वेदी ने लिखा, निर्देशक रामा बाबा।

8:15 पर चित्रलोक होगा, 9:00 आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा, 10:00 छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात, 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे थे लिखा जोखा, कल दिन भर के कार्यक्रमों का सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

पंडित भीमसेन जोशी का स्वर था, फिल्म का नाम था अनकही। संत तुलसीदास की रचना थी और जयदेव का संगीत। प्रभु कुमार गंधर्व का स्वर,

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। श्रोताओं, जिनके कंठ में संगीत है, शब्दों में साहित्य है, अभिनय में जीवन है और साधना में अपने देश की आत्मा बसती है, ऐसे कलावंत का सानिध्य पाना किसे नहीं अच्छा लगेगा। शेखर सेन हमारे विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है और तबले पर इनका साथ निभा रहे हैं आशीष विश्वास जी, जिनकी उंगलियों की थाप ऐसी है कि देखते ही बनती है। तो हम आशीष विश्वास जी का एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। आशीष जी नमस्कार। शेखर दादा एक बार फिर से स्वागत है आपका, नमस्कार।
2: नमस्कार और सभी संगीत सरिता के श्रोताओं को एक बार पुनः प्रणाम। आज की कड़ी में मैं चाह रहा हूँ आपको एक और भारतीय संगीत के एक महान विभूति से जी आपका दोबारा परिचय करवाऊं, और इनका नाम था पंकज कुमार मल्लिक या पंकज मलिक
1: जी जी,
2: जिन्होंने न केवल बांग्ला में और हिंदी में संगीत निर्देशन दिया और कई अमर गीतों की रचना की, बल्कि इन्होंने तमिल फिल्मों में भी संगीत
1: जी,
2: दिया
1: जी जी।
2: आप उस युग की सोचिए कि जिस समय 50 की शुरुआत में भारत में इस तरह का आदान प्रदान हो रहा था कि एक बंगाल के संगीतकार जाके तमिलनाडु में संगीत दे रहे थे
1: जी।
2: तो उनकी एक फिल्म है उनके संगीत निर्देशन में, 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था यात्रिक
1: जी,
2: इसका एक गाना था। मुझे ये रचना बहुत पसंद है, ये मेरे जन्म से 9 साल पहले की बंदिश है, लेकिन फिर भी कुछ रचनाएं होती हैं जो सुन सुन करके आपको एक अलग अनुभूति होती है
1: जी।
2: तो ये गाना था इस तरह का।

0: राग विहाग पर ये रचना आधारित है
1: जी,
0: लेकिन इसको फिल्म यात्रिक में गाया था। उस समय गायक थे बीरेन बल
1: जी,
0: बंगला में बीरेन बॉल उनको कहेंगे, तो बीरेन बल जी की आवाज में

0: शेखर दादा, राग विहाग का आपने जिक्र किया, तो राग विहाग के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे और कुछ गाकर बताएंगे?
1: राग विहाग हमारे उत्तर भारतीय संगीत का बड़ा ही प्रसिद्ध राग है, और अगर कोई गायक ये कहे कि मुझे विहाग नहीं मालूम
0: जी,
1: तो पक्का जाने कि उन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा,
0: नहीं सीखा।
1: तो ये उस तरह के रागों में से जो हमारे यहाँ कुछ राग बड़े कहे जाते हैं, जो जिनको आप 2 घंटे 3 घंटे गा सकते हैं, विहाग, यमन, दरबारी, मालकौंस, उस श्रेणी का ये राग है।

0: दादा, आपने राग विहाग के बारे में बड़ी ये जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, अब बताइए अब क्या सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
1: जैसे हमारी हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में राग विहाग बहुत महत्वपूर्ण राग है, वैसे ही एक राग बड़ा ही मधुर है और उसका नाम है राग श्री।
0: जी
1: हमारे यहाँ इस राग को बहुत कठिन राग भी माना गया है और संगीत में जो तंत्र साधना होती है या माँ की उपासना होती है, शक्ति की पूजा, उसमें जिन रागों में हम साधना करते हैं उसमें से एक श्री राग है।
0: जी
1: बड़ा सिद्ध राग है और जिन गायक की आवाज में आपको मैं ये रचना सुनाने जा रहा हूं उनका जन्म हुआ था 1921 में और उनका देहांत हो गया था दुर्भाग्य से 1955 में।
0: जी
1: तो सिर्फ 34 वर्ष वो जिए और ये थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के एक

0: एकमात्र सुपुत्र डीवी पलुस्कर जी के नाम से हम उनको जानते हैं, और बहुत छोटा सा जीवन होते हुए भी, जबकि वो जब बड़े हो रहे थे तब तक उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उन्होंने संगीत की शिक्षा पाई अपने पिताजी के ही एक शिष्य विनायक राव पटवर्धन जी से।
1: जी,
0: और फिर उन्होंने जितने भी हमारे पास आज रिकॉर्डिंग्स हैं पलुस्कर जी की, चाहे वो पायो जी मैंने हूं या ठुमकी चलत रामचंद्र हो या चलो मन गंगा जमुना तीर हो, जानकी नाथ सा, ये सब डीवी पलुस्कर जी की आवाज में है। पर मूलतः जो डीवी पलुस्कर जी थे वो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के गायक थे, और उनकी एक बंदिश बहुत ही मशहूर है राग श्री में, और वो मैं चाहता हूँ, राग श्री बड़ा सुंदर राग है, उसका छोटी सी झलक आपको सुना रहा हूँ।
1: जरूर सुनाएं।

0: मैं चाहूंगा कि डीवी
1: जी
0: पलुस्कर जी के स्वरों में आप सुने, अद्भुत अनुभूति आपको होगी और आपको लगेगा कि सचमुच में संगीत का जो आध्यात्मिक रंग होता है, जिसको हम नाद ब्रह्म कहते हैं, उसकी अनुभूति आप कर सकेंगे। हरि के चरण

0: और अब हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि इस अद्भुत रचना के बाद हमें अनुमति लेनी होगी अपने श्रोताओं से. लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार.
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और कल हम मिलेंगे अगली कड़ी में.
0: जी,
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं. आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी. आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन. तबला संगत आशीष विश्वास. तकनीकी सहायक HR पाटले. संपादन सहयोग झरना सोलंकी. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक. अब दीजिए अनुमति. नमस्कार.

0: कंचन, मनहर और आनंद की आवाजों में इंदीवर का लिखा ये गीत था। संगीत था कल्याण जी, आनंद जी का। फिल्म का नाम था कुर्बानी। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
5: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
4: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
5: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना है।
6: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
4: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

गुलशन बावरा का लिखा ये गाना था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था, मन्नाडे की आवाज और फिल्म का नाम था जंजीर, और ये आज के जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश थी। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग।

0: आप हैं विविध भारती के संग, इनसे मिलिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं भवदीव जयपुर वाले। नाम से ही जाहिर है कि संगीत के एक घराने से ताल्लुक रखते हैं। भवदीव जी आपको नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो शास्त्रीय संगीत का घराना आपके पीछे है, आप बचपन से ही उसी रंग में रंगे हुए हैं, तो आपने संगीत को किस रूप में लिया?
2: गायक तो मैं हूँ ही, क्योंकि मैं एक घरानेदार गायकी के परिवार से आ रहा हूँ, तो गायक तो हूँ ही, लेकिन साथ ही साथ मैं एज म्यूजिक अरेंजर भी पिछले 22 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो एज म्यूजिक अरेंजर भी लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
1: श्रोताओं हम आपको बता दें कि लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले का नाम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही एक मशहूर नाम है शास्त्रीय संगीत में। फिर गोविंद प्रसाद जयपुर वाले, वो पिताजी हैं आपके भवदीप जी,
2: हाँ जी,
1: और जिनके गाए बहुत अच्छे अच्छे भजन भी हैं हमारे पास, हम अपने श्रोताओं को सुनवाते रहते हैं और श्रोताओं को ये नाम याद भी होगा। वैसे तो परिवार का बहुत योगदान रहता है आपके व्यक्तित्व निर्माण में, पर क्योंकि आप संगीत में शुरू से ही, एक तो रगों में संगीत दौड़ रहा था और ऊपर से माहौल वैसा ही था, तो किस तरह से दादाजी ने आपको तालीम दी?
2: बहुत छोटा था मैं, 7-8 वर्ष का रहा हूंगा, तो उनका सिखाने का ढंग बड़ा विचित्र था। वैसे तानपुरा लेकर ऐसे यानी बैठते नहीं थे कि भाई आओ सीखो गाना, ऐसे नहीं। अब जैसे बैठे हैं घर में, पान लगा रहे हैं, उनको पान खाने का शौक था, तो पान लगाते थे, मैं खेलता रहता था, 6-7 साल का बच्चा खेलेगा, तो मुझे बुलाते थे अपने पास, भवदीप यहाँ आओ बैठो, और बस कुछ गाना शुरू करते थे, बोलते मेरे पीछे गाओ, तो मैं उनके पीछे गाता था, तो उस तरह से तालीम की शुरुआत हुई मेरी।
1: मतलब खेल खेल में आप गाते भी जाते थे। अच्छा, पिताजी ने?
2: पिताजी ने व्यवस्थित तरीके से मुझे सिखाया, जैसे तालीम होती है, क्योंकि दादाजी के देहांत के बाद में 1977 में 12 साल का था मैं तब, उसके बाद से फिर पिताजी ने मुझे अपने विंग्स में लिया और उन्होंने कहा कि बस बेटा ये काम धीरे धीरे, क्योंकि ये खानदानी काम है तो तुम्हें करना ही है, हम लोग और कुछ कर ही नहीं पाते, संगीत के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं।
1: हाँ, तो पिताजी ने किस तरह से आपको कहा कि तुम गायक बन जाओ, या आपने अपनी मर्जी से ये अरेंजर बनना सोचा?
2: अरेंजर तो मैं अपनी मर्जी से बना, पिताजी तो हमेशा ही चाहते थे कि मैं गायक ही बनूं, लेकिन मुझे क्योंकि बचपन में पिताजी के साथ में मैं रिकॉर्डिंग्स में जाया करता था, तो वहां पर जो अरेंजर्स होते थे उनके, अनिल मोइले जी, उत्तम जी, अमर हल्दीपुर जी, इनको देखता था, तो मैं बड़ा खुश होता था इनको देख करके, बड़ा अच्छा काम है, यानी बॉस वाला काम है,
1: किया इस काम में
2: बहुत प्रभावित किया, तो मैंने मन में विचार बना लिया था कि मैं आगे चलकर एक अरेंजर भी बनूंगा। और कुछ ऐसा मोड़ आया जीवन में कि 85 में मैंने पिताजी से कहा कि पापा मैं अरेंज करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है अरेंज करो, तो उनका पहला एल्बम मैंने कमला सिस्टा जी का एल्बम HMV के लिए किया था।
1: अच्छा,
2: गजल का एल्बम था, उम्मीद नाम था एल्बम का।
1: अच्छा, तो आपने गजलें गाना कब से शुरू किया?
2: मैंने गजल गाना शुरू किया 20 साल की उम्र में।
1: अच्छा,
2: तब तक मैं सिर्फ क्लासिकल ही गाता था।
1: अच्छा,
2: एक दौर था जब हम लोग काफी गजलें सुनते थे, जगजीत जी, गुलाम अली जी।
1: हाँ, एक दौर आया था जगजीत सिंह ने गजलों का एक शुरुआत की थी, जिसको आम लोग बहुत ही प्यार से, और एक क्रेज जैसा हो गया था गजलें सुनने का, तो उसी जमाने में आपने गाना शुरू किया गजल। तो शास्त्रीय संगीत के आप परफॉर्मेंस देते रहे?
2: हाँ, शास्त्रीय संगीत की परफॉर्मेंसेज पहले कम होती थी, क्योंकि पापा के साथ ही गाता था मैं इंडिविजुअली नहीं देता था परफॉर्मेंसेज, क्योंकि गजलों के प्रोग्राम ज्यादा होने लगे थे मेरे, तो गजल गायकी में मैं काफी विदेश भी गया।
1: तो अब अरेंजर आप हो गए हैं, गजलें पीछे छूट गई हैं, तो याद नहीं आती उस दौर की?
2: याद जरूर आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब गजल सुनने वाले लोग कम हो गए हैं।
1: हाँ, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ श्रोताओं की तरफ से कि क्यों गजल सुनने का जो शौक है वो लोगों में कम हो गया, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, गजल गायकों को या सुनने वालों को?
2: मुझे ऐसा लगता है कि गजल गायकों ने गजल को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, उसको गीतनुमा बना दिया, तो वो गीतनुमा बनने से गजलों में और फिल्मी गीतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा।
1: हाँ,
2: उस वजह से फिल्मी गीतों की जो पॉपुलैरिटी है वो हमेशा से ज्यादा रही है और हमेशा रहेगी, तो गजल और फिल्मी गीत में ज्यादा फर्क नहीं रहने की वजह से गजल कम हो गई।
1: हाँ, साइड में हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं अरे

0: की, तो एक म्यूजिक अरेंजर को क्या क्या करना पड़ता है?
1: म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो सिर्फ तर्ज बनाता है, गाने की तर्ज जो बनती है वो म्यूजिक डायरेक्टर बनाता है। उसको सजाने का जो काम है, उस तर्ज को सजाने का काम वो अरेंजर का होता है।
0: अच्छा, उसको पूरी छूट होती है?
1: बिल्कुल।
0: किस तरह बीच में, जैसे कोई भी गाना चल रहा है उसके बीच में इंटरल्यूड जो है, या किन साजों का प्रयोग होगा और उनके क्या वॉल्यूम रहेगी, और किस तरह से, मतलब कुल मिला के जो भी एक पूरा गीत बनकर सामने आता है उसमें पूरा अरेंजर का हाथ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सिर्फ धुन आपको मिल जाती है?
1: सिर्फ धुन जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर की होती है। धुन के अलावा कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो अरेंजमेंट में भी थोड़ा दखल रखते हैं, क्योंकि उनका लगता है कि उनको भी साथ में काम करना चाहिए, तो वो गाना अच्छा बन पड़ता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कंपोजर जो है वो अगर खुद ही अपना गाना अरेंज करे तो बेहतर होता है। जैसे हमारे यहाँ पर रहमान साहब हैं, रहमान खुद ही अरेंज करते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, तो उनका गाना अलग सुनाई देता है,
0: मतलब कंप्लीट होता है वो।
1: कंप्लीट होता है। तो इलैयाराजा साहब हैं या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, तो लक्ष्मीकांत जी धुन बनाते थे, प्यारेलाल जी अरेंज करते थे, तो वो एक गाने का एक अलग मूड बनता था,
0: मतलब तालमेल पूरा रहता था, तो जो चीज सामने निकल के आती थी उसका असर तो सब हम जानते ही हैं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, आप जब कोई धुन आपको मिलती है और आपको उसको सजाना है, संवारना है अपने अरेंजमेंट से, तो कुछ हारमोनियम पे इस वक्त बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को कुछ कि किस तरह सजाते संवारते हैं? कोई धुन खास आपको अभी याद आ रही हो?
1: जैसे आपने गजल सुनी होगी, पंकज भाई की एक बड़ी मशहूर गजल थी, स्टोलन मोमेंट्स नाम से एक एल्बम था उनका, उसमें उनकी गजल थी, और आहिस्ता कीजिए बातें, वो मैंने अरेंज की थी, तो उसमें एक पार्ट था जो महालक्ष्मी ने गाया था,
0: डाल दिया,
1: ये मेरा बनाया हुआ पार्ट।
0: हाँ, एक स्विंग का जैसा एहसास होता है ना।
1: बिल्कुल।
0: हाँ।
1: तो उस तरह से जब गाना मिलता है तो हम लोग यानी वो एक जो ख्याल का एक दौर जो शुरू होता है कि क्या हो सकता है इसमें।
0: अच्छा।
1: और कोशिश ये रहती है कि क्या नया आ सके, कोशिश ये होती है, क्योंकि देखिए 12 स्वर है और साज भी वही है, वही पियानो है, वही गिटार है, वही सारंगी है, वही तबला है, वही संतूर है, तो उसमें तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आप स्वरों के माध्यम से यानी तर्ज के मूड के हिसाब से आप क्या नया ला सकते हैं उसमें, वो एक्सपेरिमेंट जो है वो
0: करना। नयापन हमेशा सबको आकर्षित करता
1: है। बिल्कुल, ये कमाल है कि 12 स्वर है, सारे विश्व का संगीत उसी में है और रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है।
0: अच्छा, तो आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है?
1: बिल्कुल।
0: कि क्या कुछ नया, क्या
1: नहीं, तर्ज मिलने के बाद,
0: तर्ज मिलने के बाद, वही मैं कह
1: रही हूँ।
0: तो एक तर्ज को पूरा सजाने संवारने में कितना वक्त लगता है?
1: एक दौर था जब हम लोग एक दिन में 8 गाने भी रिकॉर्ड करते थे।
0: अच्छा।
1: मगर आज एक गाने को 8 दिन लगते हैं क्योंकि मल्टी ट्रैक का जमाना है।
0: हाँ।
1: तो हर चीज की डबिंग होती है, पहले तो सब साथ में होता था।
0: जी जी।
1: अब ऐसा नहीं है, अब एक एक इंस्ट्रूमेंट आपको डब करना पड़ता है, तो और मुश्किल हो गया काम,
0: मुश्किल हो गया, वक्त ज्यादा लगता है। कहते ऐसा है कि जल्दी हो जाता है काम, पर
1: नहीं, मुझे नहीं लगता अब जल्दी होता है, पहले जल्दी होता था।
0: जी हाँ, सब साथ में थे और उसका असर भी एक पूरा पूरा असर साथ में आता।
1: हाँ, और सुरीलापन भी ज्यादा था, इसलिए आज भी वही गाने हम लोग सुनते हैं जो बहुत सुरीले थे, जो पुराने गाने हैं।
0: हाँ।
1: आज के गाने बिखरे बिखरे से इसलिए लगते हैं क्योंकि सब अलग अलग बजाते हैं।
0: हाँ।
1: तो बिखरा बिखरा ही लगेगा। हाँ।
0: आपने सिर्फ शुरू से जैसे क्लासिकल म्यूजिक सीखा, फिर आपने गजलें गाना शुरू किया, उसके अलावा किसी साज पर भी आपने अपना हाथ आजमाया?
1: मैं जब 12-13 साल का था
0: जी,
1: तब जैसे लड़कों की आवाज फूटती है,
0: हाँ, चेंज होती
1: चेंज
0: है,
1: होती है आवाज, तो वो दौर जब मेरी जिंदगी में आया तो क्योंकि पढ़ाई पे भी जोर था, पापा हमेशा कहते थे कि भाई जो कमी हम में रह गई है वो तुम में नहीं रहनी चाहिए, गाना तो तुम्हें आ जाएगा, गाना खून में है, कोई साज सीख लो। सबसे आसान उस वक्त जो लगा होता स्पेनिश गिटार।
0: अच्छा।
1: तो 13 साल की उम्र में स्पेनिश गिटार सीखना शुरू किया,
0: तो पाश्चात्य संगीत का भी थोड़ा ज्ञान हुआ होगा।
1: बिल्कुल, उसी वजह से मैं अरेंजर बन पाया, क्योंकि हार्मनीज का नॉलेज और वेस्टर्न म्यूजिक लिखने का जो है वो सब वहीं से आया,
0: जो नोटेशन वहां का होता।
1: बिल्कुल
0: है। तो पिताजी ने क्या चाहा था आपको, कि वो क्या बनाना चाहते?
1: सबसे पहले तो एक बेहतर इंसान बनाना चाहते, मुझे वो चाहते थे कि संगीत में ही कुछ करूं मैं।
0: अब बातें लग रहा है मुझे ज्यादा हो जा रही हैं और सामने हारमोनियम है और कुछ गाना कोई याद आ रहा हो इस सिलसिले में आपको, या फिर कोई खास पसंदीदा आपकी गजल हो उसकी दो लाइनें हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: मैं एक बंदिश सुनाना चाहूंगा।

0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, और बहुत आनंद आया। ये किसकी बंदिश थी?
1: ये जिस घराने से मैं बिलोंग करता हूँ, कुंवर श्याम गोस्वामी घराने से, ये कुंवर श्याम जी की रचना है।
0: बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। मुझे इसको सुनकर ऐसा लगा कि जो आप अरेंज करते हैं, अरेंजर के बतौर जो काम करते हैं, उसमें आपका जो शास्त्रीय संगीत है, उससे बहुत सहयोग, बहुत सहायता मिलती होगी आपको। और जो आपने वेस्टर्न म्यूजिक भी जो थोड़ा सीखा, उससे आपका जो कुल बन के एक रचना सामने आती होगी, वो बहुत बढ़िया फ्यूजन भी कह सकते हैं उसको, एक तरह का।
1: हाँ, फ्यूजन भी कह सकते हैं। दरअसल मुझे वही लोग बुलाते हैं अरेंजमेंट के लिए जिनको लगता है कि उनको अपने गाने में थोड़ा क्लासिकल टच चाहिए या थोड़ा सा इंडियननेस, वो लोग ही मुझे बुलाते हैं। जैसे जो गाने मैंने विशाल भारद्वाज जी के लिए किए हैं या साजिद वाजिद के लिए किए हैं, तो वो वही गाने हैं जिनमें थोड़ा सा इंडियननेस है।
0: अच्छा, तो फिल्मों में भी आप अरेंज करते
1: बहुत
0: हैं?
1: बहुत ज़्यादा, काफ़ी फिल्मों में अरेंजमेंट का काम
0: कौन
1: किया
0: सी
1: है।
0: आपकी सबसे पसंदीदा अरेंजमेंट है, वो कोई गाना हमें याद दिलाइए।
1: जिस गाने से आनंदराज आनंद बने,
0: जी
1: छोटा बच्चा जान के, मुझे वो मेरा
0: अच्छा,
1: अरेंज किया हुआ था 1994
0: अरे इतनी
1: में।
0: अच्छी बात आपने इतनी देर से हमें बताई नहीं, हमारे श्रोताओं को, उनको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और कौन कौन से गाने हैं, कुछ बताइए।
1: नॉन फिल्म म्यूजिक में याद करें तो शुभा मुद्गल जी का बड़ा प्रसिद्ध गाना ढोलना, रंगीनो मारो ढोलना,
0: अच्छा,
1: मेरा किया हुआ
0: क्या
1: है।
0: बात है, मतलब आप
1: फिर
0: पर्दे के पीछे के एक चमकदार कलाकार
1: ऐसा कह
0: हैं।
1: सकते हैं आप। अमजद अली खान साहब का एल्बम वादा,
0: अच्छा,
1: उसमें रूप भाई का गाया हुआ ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था,
0: जी
1: वो
0: हाँ
1: भी मेरा
0: जी,
1: किया हुआ था, पूरा एल्बम मेरा किया हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो काफी काम किया, काफी लोगों के साथ काम किया।
0: तो आगे क्या इरादा है, कि मतलब गायन को आप फिर से आप अपने प्रोफेशन में लाएंगे या अरेंज ही करते रहेंगे म्यूजिक?
1: नहीं, आगे तो गाने पर ही जोर है
0: जी
1: और ईश्वर की कृपा से मेरा बेटा भी अब गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है,
0: जी हाँ
1: और उसको सिर्फ गायक बनाना है, ऐसी मेरी ख्वाहिश है।
0: हाँ तो भवदीप जी, आप बता रहे थे कि आप फिर से गायन को ही अपना प्रोफेशन बनाने की सोच रहे हैं।
1: हाँ, प्रोफेशन तो गाना हमेशा से रहा है,
0: रहा है,
1: लेकिन बीच में थोड़ा सा वो
0: डाइवर्ट हो
1: डाइवर्ट हो गया
0: गया।
1: अरेंजर के तौर पर,
0: हाँ
1: लेकिन गाना मेरा जारी है, यानी मैंने गाना छोड़ा नहीं।
0: जी,
1: और काफ़ी बच्चों को मैं सिखा भी रहा हूँ, तालीम दे रहा हूँ, और अब ईश्वर की कृपा से मेरा बेटा
0: जी
1: सुदीप बहुत अच्छा गा रहा है, कई फिल्मों में भी गा रहा है और क्लासिकल भी बैठकर गाता है।
0: दोनों पिता पुत्र साथ में गाएंगे?
1: पिता पुत्र साथ में बैठकर गाएंगे।
0: अरे वाह, क्या ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा
1: हाँ,
0: उदाहरण
1: बिल्कुल
0: होगा, और लोग इसको बहुत चाव से
1: बिल्कुल,
0: सुनेंगे। और आपके
1: क्योंकि
0: लिए सभी शुभकामनाएं हमारी तरफ से।
1: धन्यवाद।
0: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई गायक भवदीप जयपुर वाले से। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब इजाजत दीजिए निम्मी मिश्रा को, नमस्कार।
2: इनसे मिलिए।

हवा महल में आइए आज सुनते हैं चंद्रकिरण सोनरेक्सा की लिखी नाटिका हम किसी से कम नहीं, निर्देशिका चंद्रप्रभा भटनागर।

0: बहू, अरे ओ बहू, सुनती हो
1: हाय बाजी।
0: क्या हो रहा है? हे भगवान, जब से बिस्तर से लगी हूँ घर का सारा इंतजाम तिनकों की तरह बिखर गया है।
1: क्या हुआ माँ जी? झाड़ू के तिनके शामू ने कहीं रखे होंगे।
0: बहू, पहले ये बता कि प्लास्टर मेरी टांग का हुआ है या नाक का?
1: माँ जी, कहीं आपकी नाक जुकाम की वजह से बंद तो नहीं?
0: कोई जुकाम बुकाम नहीं हुआ है, बिल्कुल खुली है।
1: तो
0: क्या जुकाम तुझे हुआ है?
1: लेकिन
0: लेकिन क्या तुम्हारा सर दाल जलने की बदबू तुम्हें नहीं मिल रही है?
1: जलने की तो नहीं, गलने की जरूर मिल रही है।
0: तू तो ठहरी मेम साहब। ओहो, टांग ठीक होती तो जाकर लगाती एक लपाड़ा उस रसोईये के बच्चे को। लगता है सारे घर की नाक ही लापता हो गई है।
1: मगर माँ जी, आज तो
0: हाँ, आज तो इस रसोईये ने भी नाक में कार्क लगा रखी है। ओहो, अब भी आ रही है बदबू।
1: मैं ये कह रही हूँ मां जी कि आज तो वो खुद ही खाना बना रहे हैं।
0: क्या मतलब?
1: मतलब
0: वो क्या?
1: यानी वो।
0: अच्छा, अब समझी। मेम साहब ने पकड़ा दी करचुल मेरे बेटे को, बन गया रसोईया। हाय हाय हाय, मेरी टांग।
1: ये बात नहीं है माँ जी, कल वो जो कुकर लाए थे ना, आज उसी का उद्घाटन है।
0: उद्घाटन? अरे एक बार उसके पिताजी ने भी अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन करवाया था।
1: फिर
0: क्या, फैक्ट्री में ताला लग गया?
1: मगर
0: आज मेरे बेटे के दिमाग में ताला लग गया।
1: क्या कह रही हैं माँ जी?
0: ठीक है, जा वो कोकर जरा भेज दे, देखूं तो मैं भी।
1: अभी भिजवाती हूँ।

0: जाए,
1: गल जाए नहीं जल जाए।
0: नहीं नहीं कहीं दाल ना गले।
1: शामू के बच्चे
0: हा?
1: ये क्या है?
0: माँ जी ये लीजिए, फौरन से पेशतर देख लीजिए, वरना थोड़ी देर में मीनू डब्बू आलोक सभी आने वाले। आज रात खाने पर बहुत धूम धमाका है।
1: ये डिब्बा कैसा है?
0: ये डिब्बा अरे आप ही ने तो बहू जी से मंगवाया था, गरम गरम उठा के ले आया हूँ।
1: मैं तो भूल ही गई थी कि क्या मांगा था।
0: आपने कोकर मांगा था।
1: क्या?
0: हाँ कोकर, खाना बनाने की मशीन।
1: मैं समझ गई, ये सब तेरी साजिश है। काम चोर कहीं का, जब तू खाना बनाने लिए है तो फिर इस मशीन की क्या जरूरत?
0: अरे मिनटों में बनता है, इससे
1: बनता नहीं जलता है, इससे दाल जलने की बू आ रही है।
0: जलने की नहीं गलने की आ रही होगी। अरे अभी तो पूरी सी आंच भी नहीं पड़ी है।
1: ठीक है ठीक है, खोल कर दिखा।
0: खोलने से सारी गैस निकल जाएगी, शुं, शुं, और फिर खाना अधूरा रह जाएगा। बाबूजी को बहुत जल्दी है।
1: न जाने मनोज को क्या सूझी कि ये मशीन उठा कर ले आया है। बहु पलंग तोड़ती ही थी, अब ये रसोईया भी बायोस्कोप देखेगा।
0: हाँ, बड़ा मजा आएगा माँ जी, एक बार सब कुछ बंद करूंगा इसमें और फिर 10 मिनट में खाना तैयार। कहीं दाल।
1: मगर ये अंदर है क्या?
2: बिल्कुल आपके मकान की तरह 3 मंजिला है, यानी फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी और थर्ड स्टोरी।
0: और ये जो ऊपर देख रही है ना माँ जी, ये छत है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टॉप फ्लोर।
2: तू चुप रह शामू के बच्चे।

0: जी एक्सप्लेन करने दे।
1: हाँ? आप एक्सप्लेन कीजिए, मैं प्लेन करता हूँ।
0: क्या
1: लोती?
2: क्या कह रहा था बेटे?
0: हाँ तो माँ, ये 3 मंजिला विदाउट विंडो यानी बिना खिड़की की इमारत है।
1: अब बिल्कुल पट्टे के गोल घर की तरह, जिसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की है ही नहीं।
2: नहीं, तुम्हारे गोल माथे की तरह, जिसमें सिर्फ मुंह ही मुंह है, बंद करेगा कि नहीं?
1: लेकिन माँ जी, कान भी तो है, इन्हें भी।
0: ओ यू शट अप। हाँ तो माँ, इस 3 मंजिला गोल हांडी में मैंने कुछ इस तरह से चीजें सजाई हैं।
2: किस तरह?
0: पहली स्टोरी पर
1: मटर पुलाव,
0: करेक्ट। दूसरी स्टोरी पर आलू दम, और तीसरी मंजिल पर
1: मजेदार लच्छेदार तरहदार दाल बघाड़ा।
2: दाल बघाड़ा? भला ये मुई कौन सी दाल हुई?
1: माँ जी, आपने दाल पिटारा का नाम सुना है?
2: दाल पिटारा?
1: उसी का छोटा भाई दाल बघाड़ा। अय है माँ जी, नाम सुनते ही मुंह में पक्का 1 लीटर पानी आ जाता है।
2: चुप रह कमबख्त, तेरा मुंह है कि ट्यूबवेल?
0: माँ, ये सब इस फार्मूले का जादू है।
2: किस फार्मूले का?
0: इसी फार्मूले का जो मैंने दाल बघाड़ा बनाने के लिए इजाद किया है।
2: मैं भी तो सुनूं।
1: अरे माँ जी, क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, कुकिंग फार्मूला।
3: अच्छा, तो आपने कौन सा फार्मूला चुराया है?
0: देखो सविता।
1: क्या फार्मूला है, दाल खाएंगी तो उंगलियां काट लेंगी।
2: अरे जल्द बता वरना नाक काट लूंगी।
1: ऐसा ना कीजिएगा माँ जी, अपने खानदान की इकलौती नाक है, मैंने इसका बीमा करा रखा है।
2: बीमा? नाक का बीमा?
1: अरे नाक का बीमा, कान का बीमा।
2: बस बस बस बस, दिमाग मत खा।
1: बस, दिमाग का ही बीमा नहीं होता माँ जी।
2: वो क्यों?
1: वो इसलिए कि रसोइये के पास दिमाग होता ही नहीं है।
2: अच्छा?
1: हाँ, क्योंकि उसका दिमाग तो मालकिन चाट लेती है।
2: क्या बकता है, सर तोड़ दूंगी, चल निकल यहाँ से।
0: हाँ चल, जल्दी कर वरना
1: कहीं दौल ना कर जाओ।
0: अबे ओ ध्रुपद की औलाद, कुकर जल्दी चढ़ा चूल्हे पर, और हाँ दरवाजे पर नजर रखना, कोई नारी ना अंदर आने पाए, वरना दाल पकाऊंगा मैं और डाइनिंग टेबल पर सारा क्रेडिट ले लेगी वो।
1: पर इसमें हर्ज क्या है?
0: अरे तू नहीं समझेगा, मैं बावर्ची खाने को औरतों की मोनोपोली से आजाद कराना चाहता हूँ, इसीलिए तो तरह तरह के फार्मूले इजाद कर रहा हूँ। बस देखना आज का फार्मूला, इनकलाब आ जाएगा।
1: कहाँ?
0: बावर्ची खाने की तारीख में।
1: गुड, यही ठीक होगा। अब देखिए ना, मैं रसोइया हूँ मगर फिर भी बीवी जी सर पर मुसल्लत रहती है।
0: तैयार हो गई,
1: तैयार हो गई
0: हमारी दाल।
1: दाल बघाड़ा,
0: दाल बघाड़ा
1: जिंदाबाद।
0: दाल बघाड़ा
1: जिंदाबाद।
0: अरे दाल बघाड़ा
1: जिंदाबाद।
0: दाल बघाड़ा
1: जिंदाबाद।
0: दाल बघाड़ा
1: जिंदाबाद।
0: दाल बघाड़ा
1: जिंदाबाद।
0: दाल बघाड़ा
1: जिंदाबाद।
0: दाल बघाड़ा।
2: कितनी देर हो गई बहू? ओ बहू,
3: आपने बुलाया मां जी?
2: क्या आज मनोज सिर्फ दोस्तों को ही खिलाएगा? अगर उन्होंने खा लिया हो तो।
3: शामू, ओ शामू।
1: कहीं दाल न गल जाए। लीजिए माँ जी, आपका खाना पहले।
2: लेकिन ये क्या, ये तो मटर पुलाव की जगह आलू पुलाव मालूम पड़ता है।
1: माँ जी, फॉर्मूला तो सब ठीक ही चल रहा था, मगर गलती से आलू को 3री स्टोरी की जगह बाबूजी ने 1ली स्टोरी में डाल दिया।
3: वो क्यों?
1: क्योंकि उस वक्त सुनील गावस्कर ने 1ला छक्का मारा था।
2: कमाल है।
1: और दूसरा कमाल ये रहा माँ जी, कपिल के चौके पर मटर 1ली स्टोरी से 2री स्टोरी पर आ गया,
3: और फिर तैयार हो गया मटर कलिया।
1: दुरुस्त, लीजिए हाजिर है मटर कलिया। अब जाता हूँ डाइनिंग हॉल में दाल बघाड़ा लगाने।
3: अरे उनके दोस्तों से बचे तो इधर भी।

0: खुशबू तो अच्छी आ रही है।
1: अमां ये सब मनोज का कमाल है, क्या दिमाग पाया है शहंशाह मतबख्त,
0: बावर्ची खाने की दुनिया का बेताज बादशाह
2: मनोज दी ग्रेट।
3: हाजिर, जरा हाथ बटाइए, ये रहा चमचा।
1: चमचा
0: मजा आ जाएगा। अरे भाई जल्दी खाना लगाओ।
4: लग रहा है, लग रहा है। ये लो, ये है दाल भगाड़ा। अच्छा कैसा है ये नाम?
0: बिल्कुल चिंगाड़ा के वजन पर है।
4: यार अगर ये दाल हिट हो गई ना और तुम सब लोगों ने इसे पास कर दिया तो फिर यही होगा इसका ट्रेड नेम,
3: दाल भगाड़ा। अब आप लोग अपने अपने चमचे संभालिए और शुरू हो जाए।
0: मनोज ये कौन सी दाल बनाई है यार?
4: दौरे हाजिर की सबसे हिट दाल, यानी
3: दाल भगाड़ा। अरे बाबूजी ने फॉर्मूले के मुताबिक इस दाल में क्या क्या कुछ नहीं दिया।
1: क्या क्या दिया?
3: धनिया प्याज नमक, फिर मिलाया अदरक।
1: वाह
3: वाह। अरे दाल चीनी लौंग और एक फिल्मी सॉन्ग।
0: वाह वाह, क्या फार्मूला है,
1: बिल्कुल बॉक्स ऑफिस है यार।
3: मिर्च सफेद स्याह और जरा सी वाह।
0: हाय हाय, क्या मिलावट।
3: फिर याद जो आई नानी तो भर दिया इसमें पानी।
0: अबे पानी तो बहुत भर दिया मगर
3: मगर दाल में रह गई एक कसर।
0: वो क्या?
3: किसी से कहिएगा नहीं, इसमें दाल ही डालना भूल गए।
0: क्या?

हम किसी से कम नहीं। चंद्रकिरण सोनरेक्सा की लिखी ये नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशिका थी चंद्रप्रभा भटनागर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

चित्रलोक कार्यक्रम का पहला गाना श्रेया घोषाल की आवाज में था। जिस्म फिल्म का ये गीत आपने सुना। श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाजें। स्वानंद किरकिरी के बोल फिल्म का नाम बर्फी।

0: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं
2: करना। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
0: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

0: प्योर बबली फिल्म का ये गीत आप सुना सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, संगीत शंकर एहसान और लॉय का था। इसी के साथ खत्म होता है आज का चित्रलोक कार्यक्रम।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं प्रतीक्षा समाचारों की।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा

0: की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to 10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: GST Council today has recommended.
2: GST परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: Pending notices below the said threshold.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं GSMA और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
5: वर्ल्ड बैंक के

0: साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
5: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: नारी शक्ति

0: वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 रुपए पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुर्गन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

लता मंगेशकर की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गाना आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत आर डी बर्मन का था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
4: हाँ जी वादा।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे है, हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ।

राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है, और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना सुनते हैं।

जयश्री वी शांताराम की पत्नी थी, जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम हैं। राजा राम वानकुंद्रे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म थी।

0: सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपना गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।
1: तुम

0: सांग दो।
1: सन 1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में राशि ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र।

सन 1965 में आई फिल्म दो दिल इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर।

0: बात 1966 की है, फिल्म आई सगाई। ये एसडी नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी।
1: खफा ना होना अगर मैं पूछूं।

0: तुमने खफा ना होना अगर मैं पूछूं।
1: मोहब्बत जिंदगी है, इस फिल्म में राजश्री के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेंद्र वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राजश्री ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत एसएच बिहारी के थे और संगीतकार थे ओपी नैयर।

सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे। संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कलाकार थे।

0: अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहागरात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।
1: मोहे लगी रे।

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे जीपी सिप्पी।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राष्ट्रीय की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई हैं।

0: आज हमने अभिनेत्री राष्ट्रीय के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत लफ्जों में बयान नहीं की जाती, कभी खुशी कभी दर्द दिल में छुपी होती है। कायनात में ये दो दिलों का सफर होता है, कोई कहता है तो कोई सुनता है। मुलाकात की एक ऐसी ही हसीन शाम को हमने भी किया उनके नाम। तरंग गुलों के निखर गए, नसीमे बहार भी उनकी खुशबू से मुअत्तर हो चली। नज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चांद छुप गया, हिज्र की रात ढल गई।
1: जब मोहब्बत जवान हो

जो मोहब्बत उनसे की है ख्याल उनका ही रहता है, हर रात तसव्वुर में दीदार उनका किया करते हैं हम। एक रोज वो हसी शाम आ ही गई, खामोशियां अफसाने सुनाने लगी और दीदार हुस्न से इश्क का होता चला गया। ये नशा भी क्या है कहते हैं जिसे मोहब्बत, जब देखिए एक नींद सी आंखों में भरी है।

क्या कहें, दिल की धड़कनों पे एतबार आता नहीं, क्यों बेताबियों को करार आता नहीं, ये कौन खामोशियों में सदाएं दे रहा है, कोई रह रह के पुकारता हो जैसे, वक्त थम सा जाता है, सांसें रुक जाती हैं, धड़कनों में एक अजीब सी रवानी है।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। राज़ दिल कभी कभी अफसानों में बयान नहीं होता, कायनात भी ऐसी पाक मोहब्बत का एहतराम करती है। यादें मोहब्बत की होती हैं बड़ी शादाब, गुलिस्तां की तरह अफसानों में भी दोहराई जाती हैं। दो दिल जब धड़कते हैं एक दूसरे को सदाएं देते हैं मोहब्बत का नाम लेकर। गुम नींद की आगोश में होने नहीं देता, रातों को तसव्वुर तेरा सोने नहीं देता।

बेकरार वक्त है, संभाले न संभलता है, तो हमारे दिल को तड़पना है हर बहाने से। फिर एक बार देखा है हमने वो नाजनी चेहरा, वो बेख्याली का आलम, दिल के जज्बातों को निगाहों से बयां करने का वो पाक अंदाज और अदाओं में वो शोखी। दो घड़ी ठहरो कि दीदार अभी बाकी है, हुस्न इश्क की ये मुलाकात अभी बाकी है।

0: है हो मुझे देख कर आपका मुस्कुरा।
1: बातों बातों में रात ढलने को है, कुछ देर ही हुए उनसे मुलाकात हुई, वक्त जरा और थम जाए, निगाहों को यकीन तो आ जाए, हवाओं में ये एहसास घुलने तो दीजिए, नजरों से नजरों की मुलाकात होने तो दीजिए, कि हसरतों के तूफान दिल में अभी बाकी हैं। तो आज की रात यूं हो कि ठहर जाए, भीगे पैरहन की ये संदली खुशबू बिखर जाए, बूंदों के ये मोती बरस जाएं, हसरतें दिल की सांसों में सिमट जाएं।

नया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने

चारनुस काया बिचारे शर्माए हमारा भी दिल नाम चलने लगे जो हार

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: विविध भारती से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओं, आज हमारे बीच फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे। उन्हें याद करते हुए उन्हीं की यादगार फिल्म गुलाम ए मुस्तफा से आपको ये कव्वाली सुनवाते हैं।

आनंद बख्शी की लिखी ये कवाली आप सुन रहे थे गुलाम मुस्तफा फिल्म से, इकबाल साबरी और अफजल साबरी के साथ साथियों की आवाजें थी।

0: पंकज उदास को अभी आपने सुना, तर्ज थी पंकज उदास की।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: आई लव फाल्गुनी इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे। फाल्गुनी पाठक की आवाज थी, महबूब के बोल ललित का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग।

शमीम जयपुरी की ये रचना आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज में। ये थी पूर्वी दादरा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम रंग तरंग।

0: फिल्म निकाह की यह गजल आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में, हसन कमाल के बोल थे, रवि का संगीत था।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर

0: राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

अमजद नदीम की तर्ज थी, शब्बीर अहमद का लिखा यह गीत आपने सुना, देखा भारद्वाज की आवाज में, फिल्म थी जिंदगी 50-50।

फिल्म लम्हे में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। श्रोताओ, रंग तरंग ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। रंग

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें याद करते हुए आपको सुनवाते हैं उन पर ही फिल्माया गया ये गीत।

0: फिल्म वनवास से ये रामधुन आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों की आवाजों में, विजय प्रकाश और महालक्ष्मी अय्यर की भी साथ में आवाजें आपने सुनी। सईद कादरी के बोल थे, मिथुन की तर्ज थी। श्रोताओ, भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे। अपनी सहज और बेबाक अदायगी से उन्होंने हम सभी का दिल जीता। हिन्दी और मराठी सिनेमा के लोकप्रिय कलाकार रहे नाना पाटेकर के लिए जाने माने फिल्म निर्देशक पार्थो घोष, जिन्होंने फिल्म 100 डेज, अग्निसाक्षी, तीसरा कौन, गुलाम मुस्तफा जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं नाना पाटेकर के लिए।
1: नाना पाटेकर साथ कैसा आपका संबंध रहा?
2: नाना को साथ हमारे बहुत ही अपने तरीके से एक दोस्ती हो गई।
1: नहीं, कहते हैं कि उनको समझना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है।
2: नहीं, वो क्या है, वो एक बार उसको जब दोस्ती हो जाते फिर उसको साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। फिर वो कोई चीज में कुछ बात ही नहीं करता, उसको एक बार विश्वास हो जाते हैं।
1: हाँ।
2: जो सामने वाले वो अपने काम जानते हैं।
1: हाँ।
2: तो फिर वो कभी भी डिस्टर्ब करते नहीं, और उसको साथ ऐसे दोस्ती हो गया था, मतलब वो सारा दिन में तो 10 बार फोन, और खाना कुछ बना, खुद का खाना बनाने का
1: अच्छा,
2: बहुत शौकीन
1: अच्छा।
2: था, मैं खाना खाने का शौकीन था।
1: हाँ।
2: तो खाना बनाए तो पार्थो तू आ जा, तू कहाँ बैठा है, क्यों नहीं आ रहा है, तेरे लिए मैं ये बना रहा हूँ, और उसको मुझे खिला के उसका बहुत खुशी होता।
1: अच्छा, संतुष्टि मिलती
2: है। बोलते तू खाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से खाता है। वो खाने अच्छे बनाते हैं यार, वो बहुत मेहनत करके बनाता था।
1: अच्छा
2: है, बहुत दिल से, मतलब
1: जितनी मेहनत वो फिल्मों में करते हैं,
2: बहुत मेहनत करते हैं।
1: अच्छा।
2: वो मतलब सचमुच वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो है।
1: हाँ।
2: ये तो उसने दिखाई दिया,
1: बिल्कुल थिएटर से आए हैं,
2: थिएटर से
1: मेहनत की,
2: और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी। उसका जिंदगी में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
1: अच्छा।
2: कुछ नहीं चाहिए उसको, अगर बोलो तो महीना दो महीनों घर उसका अपना वो छोटे से फ्लैट के अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। कपड़े का कोई शौक नहीं, कोई खाने का शौक नहीं, ना कहीं जाने का शौक है, ना होटल में जाने का शौक है, ना बाहर घूमने का शौक है।
1: नाना के साथ कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद रहेगी, याद रहे सब कुछ?
2: नाना
1: छुट्टी के दौरान
2: मेरे जिंदगी का बहुत सारे घटनाएं हैं।
1: हाँ।
2: तो पर एक मत मजेदार घटना है जो मैं कभी कभी मैं याद करता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। उसमें एक चीज पता चलता है जो आदमी कितने अलग है।
1: अच्छा अच्छा।
2: उस घटना से, वो घटना ये था जो मुझे एक दिन बोला नाना ने, तो चल मैंने एक जगह देखा है, फार्म हाउस बनाएंगे।
1: हाँ।
2: है पुणे का पास है, चल तुझे लेके चलते हैं, देखते हैं, देख के आते हैं।
1: हाँ।
2: और मैं बोला अच्छा, बोले तुझे तो कमाल की लगेगा, मुझे मालूम है। उसको लगता, उसको मालूम था कि मैं कविता भी तरह लिखता।
1: हाँ।
2: और मेरी नेचर उस तरह है।
1: हाँ।
2: नेचर। तो हम लोग साथ में पुणे गए, तो वहां पर बहुत बड़ा नदी था, डैम था। तो मैं बोला यहाँ पर कहीं जमीन ले रहे क्या? जगह तो अच्छा लग रहा है। बोले नहीं रे, यहाँ नहीं है, अभी और आगे जाना है। बोला आगे कैसे?

0: जाना है, अभी तो खत्म हो गया, मतलब जागा हुआ एंड हो गया।
1: अच्छा अच्छा
0: तो बोले नहीं अभी हम लोग बोट है, अभी हाँ। बोट देख नीचे भाई बना है, बोट तो है, बोले बोट से हम क्रॉस करेंगे
1: हाँ।
0: वहां पर हमारे एक दोस्त ऑलरेडी वो पहाड़ पे बना है
1: हाँ।
0: तो बोला अच्छा तू वो लेना चाहता है, बोला नहीं चलना तू अभी मुझे लेके बोट पे हम लोग पूरा नदी क्रॉस किया, काफी बड़ा नदी था, क्रॉस करके हम लोग आए एक पहाड़ के ऊपर, ये उसका दोस्त ने बहुत अच्छे जगह बनाए। तो अच्छा और बरसात का टाइम, जस्ट गर्मी खत्म हुआ,
1: खत्म हुआ
0: मुंबई का
1: हाँ।
0: पहला बरसात जैसे हुआ उस समय पता नहीं बारिश से बहुत लगा हुआ है।
1: अच्छा अच्छा
0: मतलब बरसात होगा तो मैं भीगूंगा जरूर।
1: क्या बात,
0: अपने छत पे हो
1: हाँ।
0: या रास्ते पे हो
1: हाँ।
0: या कहीं भी हो
1: हाँ।
0: मुझे भीगना है
1: अच्छा।
0: मुझे छतरी नहीं चाहिए
1: हाँ।
0: तो मुझे बहुत भीगने का शौक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बाहर आ गए, भीगा पानी में एकदम, पर घनघोर बरसात
1: हाँ।
0: तो भाई बोला अभी क्या करें, बोला अभी चलेंगे ना जगह देखने, बोला अभी जगह देखने कहाँ जाएंगे अभी
1: हाँ।
0: बोला अभी तुझे बारिश में तो प्रॉब्लम, बोला मुझे एंजॉय हो रहा है यार, क्या खूबसूरत बारिश था, मजा आ गया। फिर हमने फिर बोट पे चढ़ा,
1: फिर बोट पे
0: स्पीड बोट और दोस्त का
1: अच्छा।
0: तो फिर स्पीड बोट अभी नदी का उल्टा तरफ, नदी का तरफ मतलब जहां से नदी शुरू हुआ उस तरफ,
1: उस तरफ चल दिया।
0: चारों तरफ से पहाड़
1: हाँ।
0: और नदी और बारिश
1: हाँ।
0: और कुछ नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है
1: हाँ।
0: तो मैं बोला कितने दूर जाना है, बोले 10 किलोमीटर, बोले नदी में 10 किलोमीटर जाना है
1: हाँ।
0: उसका बाद तेरा वो जगह आएगा जहाँ फार्म हाउस बनाएगा। अल्टीमेटली 10 किलोमीटर अंदर चल गए नदी में
1: हाँ।
0: और दोनों बाजू कुछ नहीं, मतलब एक आदमी नहीं, एक घर नहीं, कुछ नहीं। सडनली एक जगह पे को बोले बोट रुका
1: दिया हाँ।
0: और बोले ये जो पहाड़ है नाना
1: हाँ।
0: ये तेरे, इसके लिए मैं बोल रहा था तुझे, तुझे पसंद है
1: अच्छा।
0: मैं बोला नाना ये क्या, ये तो पहाड़ है, यहाँ पर तुझे एक आदमी आएगा क्या,
1: फार्म हाउस कैसे बनाएगा,
0: ये बनाएगा फिर बनाएगा तो चल कुछ भी करके तू बनाएगा, पर यहाँ तो आदमी क्या कोई, मतलब मुझे बर्ड्स भी नजर नहीं आ रहे, कोई आएगा क्या, रहेगा कैसे तू
1: हाँ।
0: बोलता है परसों मतलब मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ
1: हाँ।
0: मुझे डिस्टर्ब चाहिए ही नहीं, बोले डिस्टर्ब नहीं चाहिए बात अलग है
1: हाँ।
0: कम से कम दुनिया से लिंक तो होना चाहिए
1: हाँ।
0: ये तो दुनिया का बाहर का जगह, मैं तो ये तेरे साथ नहीं हूँ भाई, ये जगह तुझे मैं नहीं बोलूंगा तुझे ये जगह। तो ये है नाना का कहना।
2: श्रोताओं, जाने माने निदेशक पार्थ घोष नाना पाटेकर के बारे में अपनी बातें कह रहे थे। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनवाई। बस एक गीत आपको सुनवाएंगे और उसके बाद सुनवाएंगे पद्म भूषण सई परांजपे, यानी निर्देशिका सई परांजपे अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में अपनी बातें कह रही हैं। ये थोड़ी देर में बस आपको सुनवाते हैं।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म थी पत्थर के सनम। श्रोताओ, नाना पाटेकर को लेकर जानी मानी फिल्म निर्देशिका पद्म भूषण सई पटांचपे, जिन्होंने चश्मे बद्दूर और स्पर्श जैसी फिल्मों को बनाया है, आप जानते ही हैं क्या कह रही हैं नाना पाटेकर के लिए। आइए सुनते हैं।
1: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे
2: जी।
1: और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है
2: जी, जी।
1: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड सई आई वांट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर। एंड नाना इट वॉज सच ए स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें। लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली, सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
2: जी,
1: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
2: जुनून,
1: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि वो ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
2: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
1: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना लो, करना रपन। हाँ, मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म के शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहस

0: बहस बाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई।
1: ये थी जानी मानी फिल्म निर्देशिका पद्म भूषण सही परांजपे जो बातें कर रही थी नाना पाटेकर के लिए। आपको ये रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने सुनवाई विविध भारती के संग्रहालय से जिसमें ये दोनों ही रिकॉर्डिंग आपने सुनी। फिल्म निर्देशक पार्थ घोष और पद्म भूषण सही परांजपे की बातें थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म महबूबा का दो गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: संतोष आनंद की रचना आपने सुनी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये गीत था प्यासा सावन फिल्म से।
1: हे बुआ तेरी तस्वीर।

0: इश्क पर जोर नहीं, इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिल्म लावारिस का ये गीत था, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया, अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

चित चोर फिल्म का गीत आपने सुना येसुदास की आवाज में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आदमी का नगमा, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

लता मंगेशकर का गाया आदमी फिल्म का गीत आपने सुना, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। यादों की महफिल ये प्रोग्राम श्रोताओं यहीं संपन्न हुआ। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती की सुर लहरियों पर श्रोताओं आपके रेडियो सेट पर आ चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर और हमारे बहुत सारे श्रोता भी फेसबुक के जरिए इस कार्यक्रम में अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज भी रहे हैं। नए श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे। नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए आप अपने उद्गार सुरीला सफर कार्यक्रम में भेज सकते हैं। नाना पाटेकर के लिए भेजे गए आपके कमेंट्स हम शामिल करेंगे कार्यक्रम में। शेष कार्यक्रम हमारा जो आज का है वो फेसबुक की पोस्ट पर जो इबारत है उसके अनुसार ही होगा। तो ये जो इबारत है वो भी आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं जो हमने आज फेसबुक पे पोस्ट की है। हवाओं में हल्की सी सहरन, फिजाओं में रुमानियत, ये कहती है गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है। सुबह की ओस से रोशन फूलों के चेहरे और रात की नम चांदनी को कहीं नजर न लग जाए। गुलाबी ठंड में लिपटे मोहब्बत के जादुई नजरानों ने सुर्ख वादियों से पर्दा हटाया है। पहाड़ों की सुबह और अनुरागी शाम अब देखते ही बनती है। राजस्थान के गुलाबी रंगों में खिलती

चांदनी रात तो कहीं कश्मीर में हरूद का मौसम सुर्ख लाल रंग के गलीचे की रौनक जैसे सपनों की रानी ने ओढ़ी हो लाल रंग की चुनर। आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में श्रोताओं, ये पहला गीत सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर की याद को हम समर्पित कर रहे हैं।

हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर को याद किया है। आप अपनी बातें, अपने उद्गार लिख सकते हैं श्रोताओं। आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे जरूर। और अंकुश फिल्म का ये गीत हमने श्रद्धांजलि स्वरूप सुनवाया अशोक खोसला, मुरलीधर, घनश्याम वासवानी और शेखर की आवाजें थी। अभिलाष का लिखा यह गीत था, कुलदीप सिंह की तर्ज थी। और हमारा आज का जो शेष कार्यक्रम है, फेसबुक पर जो दी गई इबारत है उसी के अनुसार है। तो हमारी एक श्रोता ने लिखा है, गुलाबी ठंड इसलिए खास है क्योंकि इसमें मौसम केवल बदला नहीं करता, मन भी बदलने लगता है। ठंडी हवाएं भीतर की उदासी को सहलाती हैं, धूप स्मृतियों को गर्माहट देती है, धरती ने लाल चुनरी ओढ़ी है, आसमान ने प्रेम का संदेश संभाल रखा है और पूरी प्रकृति किसी अनकही मोहब्बत की खूबसूरत गवाह बनकर हमारे सामने खड़ी है। ये हमारी एक श्रोता लिखती है। वैसे हरुद नाम का एक शब्द हमने अपनी भारत में इस्तेमाल किया है श्रोताओं, ये शब्द किस बाबत हमने लिखा है, अगर ये आप बताएं तो क्या ही अच्छा है। वैसे ये शब्द कश्मीर की वादियों से वाबस्ता है, ये आपको बताना है। और आपके शहर में मौसम कैसा है अब ये आप बताइए हमें। एक हमारी और श्रोता लिखती है, ठंड की चादर धीरे धीरे दस्तक दे रही है, खुशनुमा वातावरण चारों ओर फैल रहा है, सुबह फूलों में ओस की बूंदे, फिजाओं की रुमानियत, गुलाबी ठंड रात में नहाई चांदनी सुरख वादियों में मोहब्बत का नजराना देखते ही बनती है, हमें प्रकृति के और करीब ले जाते हैं। और गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है, अश्विन महीना आ रहा है, बल्कि आ चुका है श्रोताओं, और गुलाबी ठंड की पहली तरल मखमली आहट सुनाई दे रही है, सुबह की ताजी हवा में अब एक हल्की सेहरन है, उषा काल में सूरज की गुनगुनी धूप, घास की पत्तियों पर मोती जैसी चमकती ओस की नन्ही बूंदे मन को मोहित कर रही है। यही हल्की ठंड अपने साथ नवरात्रि, दशहरा और काजोरी पूर्णिमा और दीपावली, इन मनभावन त्योहारों की खुशबू और गर्माहट को लेकर आ रही है। जी हाँ, इंतजार ही तो रहता है और इंतजार जब मुकम्मल हो जाए तो क्या ही बात है। वैसे गुलाबी शब्द से जो गीत आपको याद आ रहे हैं वो आप हमें लिख सकते हैं और अपने शहर का मौसम जरूर बताइए।

श्रोत इस गीत के गीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। वैसे इस फिल्म को अगर आपने देखा है तो इसमें बहुत ही अलग और कम चर्चित एक कलाकार थे, तो उनके बारे में भी अगर यानी उनका नाम अगर आप लिखें तो क्या ही बात है। आबरू फिल्म का गीत हमने आपको सुनाया, सोनिक ओमी की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखा है कि हमारे सिने जगत को नाना पाटेकर जैसे कलाकार के जाने से बहुत क्षति हुई है, हमने एक शानदार कलाकार खो दिया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर जी का देश प्रेम फिल्मों में झलकता है, देश से बहुत प्यार था, उन्हें सामाजिक मुद्दों को बार बार फिल्मों के जरिए उठाते थे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि नाना पाटेकर की हर फिल्म मैंने देखी है, उनके अभिनय की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं। आज मुझे फिल्म प्रहार का सीटी वाला सीन याद आ रहा है, सीटी बजवाकर उन्होंने उस फिर एक मतलब इन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी है फिल्म की। एक श्रोता हमारे आज की जो इबारत है, टेक्स्ट है, उस पर लिखते हैं कि हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, इस गीत को इन्होंने याद किया है। ठंडी हवाएं लहरा के आए, गुलाबी आंखें जो तेरी देखें। जी हाँ, गुलाबी शब्द तो ऐसा है श्रोताओं, इससे बड़े सारे सवाल हैं जो आज आपको बताने हैं। मसलन एक बड़ी प्यारी सी एक मछली है, उसका क्या नाम है जो गुलाबी होती है और कहें तो भारतवर्ष में पाई नहीं जाती, लेकिन आप बता सकते हैं तो बताएं जरूर कि उस मछली का क्या नाम है। और राजस्थान के खास शहरों को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। और अपने शहर का मौसम तो आप बता ही रहे हैं, गुलाबी ठंड क्या आपने राजस्थान में कभी महसूस की है, या इस समय कभी आप राजस्थान गए हो तो वो भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी धूप है लेकिन शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है। जी हाँ, शाम भी बहुत ही सुहावनी होती है आजकल। ये फिल्म आपको पहचाननी है।

इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था श्रोताओं आबरू फिल्म का, वो दीपक कुमार पर फिल्माया गया गीत था और जीएल रावल के बोल थे, सोनी कोमी का संगीत था। वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत आपने सुना, भरत व्यास की रचना है संत त्रिपाठी की तर्ज, और एक श्रोता के उद्गार हैं कि नाना पाटेकर जैसे कलाकार सदियों में आते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि इन्होंने दी है। और एक और श्रोता ने लिखते हैं कि सुबह सुबह की हल्की ठंडक, फिजाओं में रोमानियत और रंग बिरंगे फूलों पर ओस की बूंदें शरीर और दिमाग दोनों को तरोताजा कर देती हैं। इस मौसम में न बहुत ज्यादा गर्मी और न कांपने वाली सर्दी होती है। कांपने वाली सर्दी मन एक अजीब सी शांति और अपनों के बीच आने का एहसास जगाता है। फूलों पर गिरी ओस की बूंदे मानो प्रकृति ने मोतियों के हार से सजाया हो, इसलिए यह नजारा आंखों और दिल दोनों को सुकून देता है। लेकिन राजस्थान में कुछ अलग सा सुकून होता है श्रोताओं, वहां के बारे में आप जरूर लिखिए कि वहां की रातें अगर आपने देखी हैं इस गुलाबी ठंड की, वैसे ये तो पूरा शहर पूरा स्टेट ही कहें तो गुलाबी गुलाबी सा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय फिल्मों में नाना पाटेकर जी का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और उनकी फिल्मों के बारे में लिखा है क्रांतिवीर, तिरंगा, परिंदा, शक्ति, अग्नि साक्षी जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार से जान डाल दी। नाना जी की निर्देशित फिल्म प्रहार मुझे उनकी सबसे प्यारी फिल्म लगती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें सबसे अलग करती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हारूद के बारे में कि जिसका कश्मीरी भाषा में अर्थ पतझड़ का मौसम होता है, यह समय खूबसूरत मौसम सितंबर के अंत तक से लेकर नवंबर के मध्य तक रहता है। जी हाँ, और जो अक्टूबर का महीना है श्रोताओं, ये खास कश्मीर जाने के लिए ये मौसम जो होता है, ये समय जो होता है बड़ा ही मुफीद होता है। इस समय अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि चिनार के पत्ते किस तरह से रंग बदलते हैं, और इसी को लेकर हमने इबारत की जो अंतिम लाइन थी वो लिखी थी, क्योंकि लाल सुर्ख रंग सी चादर कहें या ओढ़नी सी कहें कश्मीर में बिछी हुई नजर आती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कश्मीर में हारूद का अर्थ पतझड़ का मौसम होता है, और कश्मीरी संस्कृति, जीवन शैली और आर्थिकी में इस मौसम का एक बेहद खास स्थान है। इसके साथ ही कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी हारूद नाम की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि कल शाम की बारिश है और भोर की बारिश ने हमारे शहर को बेहद खुशनुमा बना दिया है, हवाओं में ठंडक आ गई है और अभी धूप का टुकड़ा हमारे छत और बालकनी पर भी आकर सिमट

कह जैसे कह रहा है, कह रहा हूँ ठंड आया है, मैं तो भी साथ में हूँ। जी हाँ, जहाँ ठंड देर से पड़ी है श्रोताओ, वहाँ पर तो ये बारिश जो होती है वो बेमौसम आती है, जिससे कि ये ठंडक को ला सके। फिलहाल गुलाबी ठंड है।

कश्मीर की अगर बात करें तो श्रोताओं, तारीफ कितनी भी करें, शब्द इस प्रदेश के लिए कम ही पड़ जाते हैं। आप सुन रहे थे एसएच बिहारी की रचना, संगीतकार आप अगर बता दें तो क्या बात है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी डॉल्फिन अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है और इसके बारे में पूछा क्या सही है, इसको जानने का इंतजार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर साहब चले गए और उन्हें हम याद करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि अपनी दमदार आवाज और अभिनय से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर जी को हम उनके श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की ये इबारत केवल मौसम के बदलाव का वर्णन नहीं करती बल्कि प्रकृति के मानवीय भावनाओं के बीच गहरे रिश्ते का एक सुकुमल दस्तावेज है। गुलाबी ठंड की आहट को हवाओं की सेहरन और फिजाओं की रोमानियत के साथ पिरोना बेहद असरदार है। ये ठंड सिर्फ तापमान का गिरना नहीं बल्कि भावनाओं के जागने का प्रतीक बन जाती है। ये तो बताइए श्रोताओं कि गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, यानी आपको सवाल याद रखने हैं। पहला सवाल, गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, और दूसरा सवाल एक और है कि गुलाबी रंग का इस्तेमाल खूब हमारे किस त्योहार में किया जाता है, और एक जगह की तो पगड़ी भी गुलाबी है। तो आप बताएं, ये सारे सवाल आपके लिए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो इस समय शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है लेकिन दिन में अच्छी धूप है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल

चुका है। ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है। फिजाओं में रंग से घुलने को आ गई। वो सुहाना मौसम, सुबह की धूप और घास पर उसकी बूंदे मोती बिखरने लगे। ऐसे में विविध भारती का साथ वाह क्या बात है। जी हाँ, विविध भारती है हमेशा से आपकी साथी। तो ये गीत आप सुनिए और जो हमने सवाल आपसे पूछा वो भी बताइए। इस गीत में जो कलाकार नजर आ

बताइए। इस गीत में जो कलाकार नजर आ रहे हैं श्रोताओं, उनको अगर आप बता सकें उनके बारे में तो क्या ही बात है।

0: संभालो मुझको मेरे यार, संभलना मुश्किल हो गया।
1: नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया द ट्रेन फिल्म का गीत आपने सुना और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने तमाम अपनी बातें हमसे साझा की हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी सुबह सुबह गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, रात से ही ओस गिरना शुरू हो जाती है, सुबह तो ठंड लगती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि इस समय कश्मीर में फसलों और खासकर केसर की कटाई का मौसम ये माना जाता है, जिसे स्थानीय लोग उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और एक हमारे श्रोता नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखते हैं कि इनकी फिल्म नट सम्राट देखी है, क्या भूमिका थी उस फिल्म में इनकी, और अभी तक वो आखिरी दृश्य याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें बहुत पसंद है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर जी को याद किया है। वहीं हमारी एक श्रोता लिखती हैं कुछ गीतों के बारे में, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, कहां सिलाई हो जाने मन के ताबी चेहरा, और तमाम गीतों को इन्होंने याद किया है, लिखा है इसके बारे में। एक और श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम की गुलाबी ठंड, वादियों की हवाएं और चांदनी रातें अक्सर दिल में किसी खास यादों का चिराग जला जाती हैं। इस खूबसूरत माहौल में किसी को याद करना और खो जाना स्वाभाविक। हवाओं में घुली है ये गुलाबी सी ठंड, चांदनी रात में बहकी है ये वादियां मलंग, ऐसे में दिल को कोई याद ना आए तो कैसे हो सकता है। और भी कुछ लाइनें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैं छत पर जाती हूं तो एक दो दिन से हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, इसका मतलब है मौसम करवटें ले रहा है और जो त्योहार हैं वो भी आने वाले हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।

और जी हाँ, नाना पाटेकर की यादें तो कुछ ऐसी ही हैं। श्रोताओं, आज की इबारत जो गुलाबी ठंड को लिए हुए है, इसी बाबत हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो जो जयपुर है वो तो पिंक सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से एक कार्यक्रम आता है रात 8 बजे, इस इमारत की गुलाबी रंग को लिए क्या खासियत है ये आप हमें बताएं, और हम किस इमारत की बात कर रहे हैं।

राजश्री और शमी कपूर पर फिल्माया गया फिल्म जानवर का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, अब कुछ सवाल जो हमने आपसे पूछे थे कि गुलाबी रंग किन रंगों को मिलाकर बनता है, ये आपने अभी तक नहीं भेजा है, तो आप इसे जरूर भेजें। और एक तितली होती है श्रोताओं जिसके गुलाबी पंख होते हैं, ये कौन सी तितली है? मतलब दो तीन सवाल की बौछार आप पर कर दी जाए मुझे ऐसा लगता है। और गुलाबी जो चूड़ियां हैं उनका बाजार भारत में कहाँ है? एक और आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि एक सुंदर सा गुलाबी फूलों का पेड़ होता है, इस पेड़ को यानी इस फूल को क्या कहते हैं? तो अब बढ़ते हैं उन श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ जिन्होंने अपने कमेंट्स भेजे हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि हर बदलता मौसम अपने साथ एक नई आभा लेकर आता है और प्रत्येक जाने वाला मौसम अपनी नियति जानता है। जाने वाला मौसम विदा लेते समय कुछ मुरझाया सा, कुछ अलसाया सा लगता है, इसलिए गुलाबी ठंड लिए इस मौसम में मन में अलग ही उत्साह का सुरूर रहता है। बदलते मौसम के मन पर कोई व्याख्या नहीं लिखी जा सकती, जो सामने है उसका स्वागत करके ही जीवन को चलाने का हुनर सीखना होगा। गुलाबी ठंड अपने साथ ढेर सारे उत्सव लेकर भी आती है और ये सच है कि ये प्रकृति ईश्वर की सुंदरता का वहन करती है। हर बदलता मौसम इसकी पहचान है। तो ठंड जो है उसकी तो शुरुआती दौर है और आपने इसकी बहुत सारी तैयारियां भी की होंगी, तो क्या खास आप ध्यान दे रहे हैं ये भी आप हमसे बता सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं, ठंड, रोशन, नजर, पर्दा, गुलाबी, कश्मीर और सपनों जैसे ये शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं चला मौसम में कब गुलाबी

सर्दी ने अपना शबाब घोल दिया। सुबह योगा में जाती हूँ तो पार्क में हरी घास पे छोटी छोटी शबनम की बूंदें किसी चमकीले मोती सी लगती हैं। हल्की सी सिहरन उड़ते हुए पंछी, नीला आकाश, सब कुछ जैसे मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो क्या इन ओस की बूंदों को कभी आपने छुआ है तो आप जरूर बताएं। वैसे हमारे आज के जो गीत हैं श्रोता, उनमें भी आपने देखा होगा कि गुलाबी रंग छाया हुआ है, जैसे इस गीत में।

देव मुखर्जी और तनुजा पर फिल्माया गया एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने इस गीत की बातें भी बिल्कुल ठीक लिखी हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप जयपुर की जिस इमारत की बात कर रही हैं जो विविध भारती पर रात 8 बजे कार्यक्रम प्रसारित होता है उसका नाम हवा महल है। जी हाँ, और ये इमारत जो है वो गुलाबी पत्थरों की सुंदर सी जो एक तामीर है देखते ही बनती है।

एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है और फिजाओं में कुछ रंग का एहसास होता है, घास पर भी ओस की बूंदे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी रंग लाल और सफेद रंग को आपस में मिलाने से बनता है, क्या ही बात है। एक और श्रोता लिखती है कि बेमिसाल अभिनेता नाना पाटेकर का जाना आंखों को नम कर गया है, ईश्वर महान अभिनेता को अपनी शरण में ले, दिल से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ, विनम्र नमन। एक और श्रोता लिखते हैं कि इसी रंग के बारे में, गुलाबी रंग के बारे में, लेकिन तितली का जो पंख पिंक होता है यानी गुलाबी होता है उस बारे में आपने लिखा नहीं, और हमने आपसे पूछा था कि गुलाबी चूड़ियों का सबसे बड़ा बाजार भारत में कहाँ है, वो भी आप जरूर बताएं अगर आप बता सकते हैं तो। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ कोलकाता में आषाढ़ महीने से बारिश लगी हुई है जो अभी अश्विन मास तक भी हो रही है, कल भी बरसात हुई थोड़ी, अभी थोड़ी थोड़ी गुलाबी ठंडी सी हवा शुरू हो गई है, हवा में पूजा का पूरा असर, जगह जगह पंडाल बनने की तैयारी हो रही है, कुल मिलाकर बहुत ही खुशनुमा वातावरण है हमारे कोलकाता में। जी हाँ, और इस समय लोग जो है ना बड़ी अलग अलग जगहों पर सैर के लिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये मौसम बड़ा ही खुशगवार होता है। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है तो वो कौन सा शहर है जहां आप जाना चाहते हैं या जहां जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी जो है वो ठंड शुरू हो गई है, और इस तरह से कई हमारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो तेज धूप निकली है लेकिन रात को ठंड हो जाती है। कलाकार और फिल्म आपको पहचाननी है।

बड़ा ही खूबसूरत था लंदन पैलेस का ये सीन। श्रोताओं, नाइट इन लंदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में माला सिन्हा और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था। आनंद बख्शी की

साथी एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि अर्ली मॉर्निंग जब गार्डन में पैरों पर छोटी छोटी बूंद बिखरी रहती है, यानी ओस की बूंदों की ये बात कर रही हैं, तो उनको छूकर आंखों से लगाने में बहुत सुखद एहसास होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ओस की बूंदें जो हैं उन पर चलते हैं या फिर उन्हें आंखों में लगाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे ठंडियों की सुबह सवेरे 5 बजे जो गुलाबी ठंड पड़ती है मेरे मन को बहुत लुभाती है, मुझे बहुत पसंद है ये मौसम। सुबह सुबह ठंड में टहलने का बहुत पसंद है जब हल्की हल्की ठंड होती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं हाल ही में राजस्थान के एक साल में पयाना, बंसी, पहाड़पुर, हिंटोन सिटी रहकर मंदिर के लिए पिंक पत्थरों को नक्काशी बनवा कर ही आया हूं, तो शायद इन्होंने इस पर काम भी किया हुआ है, तो उस बारे में ये लिखते हैं। जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं श्रोताओं जो राजस्थान की वादियों में रहते हैं और जो गुलाबी बलुआ पत्थर होते हैं उनके काम यानी ऐतिहासिक इमारतें, खूबसूरत जगहों का निर्माण करते हैं आज भी, तो ऐसे हमारे कोई श्रोता हैं तो अपनी बातें वो भी लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गुलाबी और पीला रंग अक्सर पूजा पाठ और शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हमने गुलाबी रंग की बात करी थी श्रोताओं, होली में बड़ा इस्तेमाल होता है ये रंग, इसका जवाब ये था। और होली में तो बहुत सारे रंग इस्तेमाल होते हैं लेकिन गुलाबी रंग खास नजर आता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जी हाँ, मैंने राजस्थान की गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड में बहुत भ्रमण किया है। राजस्थान का ही वाशिंदा हूँ, बेशक दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ के गुलाबी किले भी देखने लायक, विशेषकर अक्टूबर से फरवरी तक। और अब आपको ये कलाकार पहचानने हैं।

एक पक्षी है श्रोताओ जो गुलाबी रंग के लिए मशहूर है, फ्लेमिंगो इसका नाम है। और हमने आपसे पूछा था कि जो राजस्थान है उसमें गुलाबी जो इमारतें हैं उनकी खासियत क्या है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि गुलाबी रंग के पत्थर से ये बनी होती हैं। और एक सवाल हमने आपसे अभी भी पूछा है जो आपको बताना है, और एक पेड़ है जिसमें गुलाब

गुलाबी रंग के फूल जो है वो खूबसूरती से खिले होते हैं, चेरी ब्लॉसम ये है। और अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि अब जो ठंड का मौसम है इसमें बड़ा ही प्यारा सा एक अलग शबाब लिए हुए अमरूद आता है, जो गुलाबी रंग की भी अहमियत को लिए हुए होता है, और ये कहाँ का है, किस बाग का है, अगर आप जानते हैं तो जरूर बताएं।

0: माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई
1: एक फूल दो माली। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे साधना और संजय खान पर फिल्माया गया। इसके पहले शिकारी का गीत हमने आपको सुनवाया, अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया वो गीत था। श्रोताओं, एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि बेईमान ही होता है, मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका इंतजार भी बना रहता है। हमको प्रकृति को प्यार करने वाले को मौसम का रूठना फिर वापस आना ये भी जीवन की एक प्रक्रिया होती है। अब आप एक सवाल और बता दें। एक तो हमने आपसे एक फल का सवाल पूछा है कि हरे और गुलाबी रंग का ये जो फल होता है यानी अमरूद भी शायद हमने आपको बताया है, ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। और एक गुलाबी रंग की झील है, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो जरूर लिखें। ये कौन से शहर की शूटिंग है श्रोताओं?

आराधना फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। जिस झील को हमने पूछा है श्रोताओं, ये लेक हिलर झील है ऑस्ट्रेलिया की, जो गुलाबी रंग की है, और ये अमरूद प्रयागराज यानी इलाहाबाद के खुसरो पार्क में पाया जाता है।

फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही श्रोताओं सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: अगर अचानक आपसे कोई पूछे कि आपको कोई कविता याद है, कोई गीत याद है, कोई लोरी याद है, तो आप क्या जवाब देंगे?
2: मुझे तो लोरी याद आ जाएगी। हाँ। क्योंकि जो बचपन में सुनी हुई होती है ना लोरिया, वो दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है कि झट से मुंह में वो लोरी ही आ जाएगी।
1: बिल्कुल। लेकिन आजकल जैसे विलुप्त हो रही है लोरिया।
2: हाँ।
1: अभी मैंने कई माओं को ऐसे सुना है कि क्या करें, बच्चा सोता नहीं है, हम क्या करें, कहानी हमें आती नहीं है, कहाँ से लाएं कहानी। तो उन्हें बताना पड़ता है कि आप कहानी खुद बुनिए। किताब जब मांगते हैं लोग, माएं मांगती हैं कि हमें कोई किताब दे दो, उसमें से पढ़ के सुना दे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कहानी खुद बुनिए, धीरे धीरे बच्चा भी सीखेगा। इसी तरह से लोरी आप गा के सुनाइए उनको, तो अपने आप गाने का, संगीत का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, बच्चे के मन पर, अंतर मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो विलुप्त हो रही है लोरियां, हमें लगता है कि वो पारंपरिक गीत, वो लोरियां वापस ले आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ गूगल में न ढूंढे, उसे बाकायदा गाए, गुनगुनाए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाए।
2: ये हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आजकल मम्मियों को टाइम ही नहीं होता है, तो कहाँ से लोरी गाएंगी। तो वो ऐसे करती है कि मोबाइल पकड़ा देती है बच्चों के सामने और उसमें कोई भी फिल्मी गीत या कोई भी गाना चला देती है, तो बच्चे उसी से आकर्षित हो जाते हैं। पर जो खुद गा के हम जो सुलाते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनत्व का भाव बच्चे के प्रति आ जाता है। और दूसरा, जो हम हमेशा क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, तो माँ और बच्चे के बीच का जो नाता है वो और भी गहरा होता है।
1: और जब बड़े होते हैं बच्चे, तो जो माँ की थपकी है, माँ के आंचल पर लेट कर लोरी सुनने का आनंद, वो याद रहता है। चित्र, मोबाइल और ये सब

0: भूल जाते हैं,
1: नहीं याद रहता है
0: जी।
1: और ऐसे ही हम सबका एक नजरिया होता है कोई चीज देखने का, और आंखें कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है
0: जी।
1: तो अगर किसी के पास आंखें नहीं है तो सोचिए कि दुनिया कितनी फीकी है
0: जी
1: लोगों के पास। तो आज दरअसल हम बात करें विश्व दृष्टि दिवस की
0: जी,
1: तो किस तरह से अपनी आंखों की देखभाल करें, किस तरह से हिफाजत करें और दूसरों को अपनी आंखों से रोशनी कैसे दे सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करें।
0: नेत्रदान जी, और साथ ही आज वायुसेना दिवस भी है, उस बारे में भी हम जानकारी देंगे। और एक खास मुद्दा है ममता जी, मुझे कुछ कहना है, इसके अंतर्गत बेटे बेटी में भेदभाव जो आजकल थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, पर अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर घर में ही बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है कि बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है जबकि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। खाने पीने के मामले में भी बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है।
1: तो इसमें खास तौर से सखियां अपने अनुभव जरूर साझा करें कि उनके घर में क्या हुआ है, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वो किस तरह से ये मैनेज करती हैं, वो लिखें। और इसके अलावा
0: कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम छुटनी महतो के बारे में जानकारी देंगे।
1: और सोनाली जी, आज एक दुखद खबर मिली है, बहुत बड़ी दुखद
0: जी।
1: वो जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में कि वो इस दुनिया से, आज उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। और उनके संवाद में कितनी गहराई थी, अभिनय में उनकी ऐसी ताकत थी कि सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचती थी। और आपको याद होगा कि बहुत सारी उनकी फिल्मों के संवाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराते रहे हैं। और ये कहा जाता है बड़े दबंग व्यक्तित्व वाले रहे और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी उनकी रही। तो वो जो क्या कहा जाता है कि अपनी बातों में आग उगलते थे कई बार, और वो आग बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई के रूप में सामने आता था। तो आज वो नहीं है भले ही, लेकिन हम सबके दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे
0: जी। और उनके निभाए किरदार और उनकी बुलंद आवाज हमेशा दर्शकों के स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगी ममता जी। हम यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार मित्रों और उनके करोड़ों प्रशंसकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे।
1: सुनते हैं नाना पाटेकर की फिल्म का ये गाना।

0: ये हमने नाना पाटेकर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये गाना सुनवाया इस प्रोग्राम में, और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि एक और प्रोग्राम हम प्रसारित करने वाले हैं शाम को 5:30 पर, नाना पाटेकर से बातचीत, जो हमारे विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित है और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के किस्से हैं उसमें, उनकी फिल्मों के किस्से हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि नाना पाटेकर से कई बार मुलाकात का मौका मिला, और ये बातचीत जब हमने रिकॉर्ड की थी कई साल पहले तो हम उनके निवास पर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, उनके स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान नजर आए थे, और इतनी सहजता से इतनी विनम्रता से वो बातचीत की है कि मैं क्या कहूं, इस वक्त बातें करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने है, और इसके अलावा कई बार मुलाकात हुई। तो आज 5:30 पर हमारे श्रोता वो प्रोग्राम सुन सकते हैं जो उन्हें उनके नाम पर हम प्रसारित कर रहे हैं
1: जी।
0: और
1: आज वायुसेना दिवस भी है। तो वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना के स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, और भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में वायुसेना के वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है।
0: और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि वे देश की सुरक्षा संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं।
1: और ये दिन देशवासियों को उन वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर परेड, एयर शो, विमान प्रदर्शन और हवाई करतब आयोजित किए जाते हैं।
0: वायुसेना केवल साहस और रोमांच का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और देशभक्ति का संगम भी माना जाता है। वायु योद्धाओं का जीवन युवाओं को यह संदेश देता है कि ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत जरूरी है, और साथ में आत्मविश्वास और अनुशासन बहुत ही जरूरी है।
1: साथ ही ममता जी, आज एक और खास दिन है, विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है, और 2026 में यह दिवस 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को आंखों की देखभाल, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार के प्रति जागरूक करना है।
0: क्योंकि आंखें हमारी

0: शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दुनिया को देखना, पढ़ना, लिखना, काम करना, सीखना सब कुछ आंखों से ही तो होता है। लेकिन आंखों की जब अनदेखी करते हैं तो फिर आंखें आपको परेशान कर सकती हैं। बढ़ता स्क्रीन टाइम और डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां भी आंखों को प्रभावित करती हैं। पोषण की कमी और नियमित आंखों की जांच न करवाने से भी दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
1: और ये दिन हमें याद दिलाता है ममता जी की दृष्टि की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से कई दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है कि जैसे समय समय पर आंखों की चेकअप करवाना चाहिए। साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम देना चाहिए
0: और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। ये जो बात आपने कही ना कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल, इससे तो कोई बच नहीं पाता है। और लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने लोग काम करते हैं, कुछ तो मजबूरियां भी होती हैं। लोगों की जॉब है ऐसी कि आपको लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। लेकिन उसका उपाय है, डॉक्टर्स उपाय बताते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए, पलकों पर हाथ रख के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, और या फिर पानी से थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को धोते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें, नुस्खे हैं जिससे आप आंखों को आराम दे सकते हैं। और धूप में जब जाएं तो जो काला चश्मा होता है वो लगाएं, उससे भी आंखों को सुरक्षा मिल जाती है। और आंखों में कोई समस्या हो तो बिना सलाह के दवा या आई ड्रॉप कतई न लें।
1: नहीं तो ऐसा होता ना कि घर में एक कॉमन रखा हुआ होता है सभी के फ्रिज में, और बस लोग लेते हैं, डाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सबकी आंखों के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स होते हैं, तो आप चिकित्सक से परामर्श लेके ही कोई दवाई आंख में डालें। और सबसे जरूरी बात है ममता जी, हरी सब्जियां, फल, दालें और पोषक आहार को अपने भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। और जिनको डायबिटीज वगैरह है, जैसे उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें नियमित आंखों की देखभाल, ये जांच करवानी चाहिए। और ये कहते हैं ना कि आंखों की रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के रंगों को महसूस करने का जरिया है। तो अपनी सेहत के साथ अपनी आंखों को भी प्राथमिकता देना चाहिए और दूसरों को भी दृष्टि की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। और मरणोपरांत आप आई डोनेट कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहा जाता है ना किसी के दिल में उतरना है तो आंखों के जरिए। आप आंखों से आंखों में बातें होती हैं, और तमाम गीतकार शायर ने आंखों पर शायरी की है, गीत लिखे हैं। एक गीत ये जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने, और लता मंगेशकर की आवाज फिल्म चिराग। सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि ममता जी की नाना से सुनी मुलाकात हमें बहुत भाई थी।
1: क्या बात है, शुक्रिया। तो फिर जिन्होंने नहीं सुनी है ये बातचीत, आज शाम को 5:30 पर सुन सकते हैं। और अब देखिए ना, बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही जो हम शामिल करेंगे। और मेरे मोबाइल में मैं देख रही हूं कि बहुत सारे श्रोता नाना पाटेकर को लिख रहे हैं विनम्र नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। दरअसल वो ऐसे अभिनेता थे कि वो गए तो नहीं है, हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। जब जब उनकी फिल्में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जिंदा इंसान हमारे सामने है।
0: जी।
1: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समाज सुधारक की जिनका नाम छुटनी महतो है और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को हम दे रहे हैं। छुटनी महतो झारखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जीवन अंधविश्वास और जो डायन, भूत, पिशाच जैसी कुरीतियां हैं ना, जिस तरह की बातें होती, इनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और बाकायदा मोर्चा निकाला। इसको, इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मुहिम चलाई।
0: जी। और ममता जी, कभी वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। छुटनी महतो ने बाद में अपने जीवन में उन महिलाओं की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता था।
1: और सोनाली जी, यहाँ एक बात और बताना है, जैसे कि बहुत सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी में है, कोई मानसिक बीमारी है, तो लोग टोना टोटका करवाते हैं, कहते हैं अगर इसके ऊपर किसी का आया पड़ गया है। और बहुत सारे आप मंदिरों मस्जिदों में भी जाकर देखते हैं कि जहां पर इस तरह के भूत पिशाच से दूर भगाने की मुहिम
0: उतारा जाता है। जी।
1: तो दरअसल समस्या क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस अपना, कि अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण किया जाए, न कि भूत पिशाच के जरिए।
0: अंधविश्वास को दूर भगाना है। और छुटनी महतो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोला डीह क्षेत्र से जुड़ी है। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 1995 में परिवार के एक बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक व्यक्ति ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ।
1: और 1995 की वो घटना जिसने जीवन बदल दिया। गांव में अंधविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि छुटनी महतो को डायन कहकर सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा तो और

0: उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई, इसी वजह से कि वो डायन है। बाद में उन्हें अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा आखिरकार।
1: ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनी। गांव से निकलने के बाद छुटनी महतो की मुलाकात एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जो इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कानून प्रशासन और जागरूकता के माध्यम से इस कुप्रथा का मुकाबला करना उन्हें सिखाया। 1990 के दशक के मध्य से ही उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी आशा नामक संस्था के साथ मिलकर काम किया। वे प्रभावित महिलाओं तक पहुंचती, उनके मामलों की जानकारी जुटाती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा प्रशासन की सहायता से उन्हें सुरक्षा दिलाने का प्रयास करती।
0: छुटनी महतो ने केवल पीड़ित महिलाओं की मदद ही नहीं की बल्कि गांव गांव जाकर लोगों को समझाया कि बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या पारिवारिक परेशानियों को जादू टोने से जोड़ना गलत है। उन्होंने महिलाओं को यह भी संदेश दिया कि अंधविश्वास के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, ठीक नहीं होता। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला भी करना चाहिए।
1: और उनके अथक प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सैकड़ों से अधिक महिलाओं की मदद की है। और छुटनी महतो पुनर्वास केंद्र से भी जुड़ी रही जहां ऐसी महिलाओं को सहायता मिलती है जिन्हें डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया था। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की एक टीम भी विभिन्न गांवों में ऐसे मामलों पर नजर रखती है और सूचना मिलने पर सहायता के लिए पहुंचती है।
0: और उनकी कोशिश केवल किसी एक पीड़ित महिला की समस्या हल करना नहीं था बल्कि समाज की सोच को बदलना था। छुटनी महतो के लंबे सामाजिक संघर्ष और समाज सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। दिन था 25 जनवरी 2021 जब उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में झारखंड से उनका नाम शामिल किया गया। ये सम्मान उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ उन सभी महिलाओं के संघर्ष की भी पहचान बना जो अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है।
1: और छुटनी महतो का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अंधविश्वास का मुकाबला जागरूकता से किया जा सकता है, व्यक्तिगत पीड़ा को समाज की भलाई की शक्ति में बदला जा सकता है, महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है और एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। छुटनी महतो की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। जिस कुप्रथा ने कभी उनके अपने जीवन को झकझोर दिया था उसी के खिलाफ उन्होंने जीवन भर आवाज उठाने का फैसला किया
0: और उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे समाज की बेहतरी का माध्यम बनाया। और उनका जीवन हमें भी तो सिखाता है, अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी जागरूकता की लौ भी काफी होती है और छुटनी महतो उसी जागरूकता की एक मजबूत मशाल बनकर सामने आई है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं
1: जी।

0: विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
2: ममता जी, एक सखी ने लिखा है कि आपका कार्यक्रम ऐसा है कि छूटता ही नहीं। अभी सोने की इच्छा थी, कमरे में जाकर लाइट भी बंद करी, फिर मोबाइल पर चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए उंगली बढ़ाई, ना ना अब तो रिटायर हुई, ऑफिस की भी बंदिश नहीं, खुरपी कैंची और गार्डनिंग का सामान लेकर बाग में आई, गाना चल रहा है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है।
0: क्या बात है, तो गार्डनिंग कीजिए, सोने के लिए रात है ना, दिन में सोने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा आराम जरूरी है
2: जी।
0: तो लेकिन वो आराम सखी सहेली के समय तो मुलतवी की कर सकती हैं
2: जी। एक हमारे साथी ने नेत्र दान के बारे में लिखी है, आंखों या चक्षु दान की बात निकली है तब एक दुर्घटना याद आ गई। हमारी सोसाइटी के एक परिवार का इकलौता बेटा जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के वार्षिक उत्सव में मंच सजाने के कार्य के दौरान ऊंचे टेबल से गिर जाने की वजह से मौके पर ही उनका मृत्यु हो गई। और उनके माता पिता ने इस दुख की घड़ी में भी देर न करते हुए उनकी आंखों को दान करने का त्वरित निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनका बेटा किसी दो व्यक्ति में अपनी आंखों के द्वारा जीवित है।
0: क्या बात है, नेत्रदान महादान कहा जाता है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए और ये शुभ काम जरूर करना चाहिए। और सोनाली जी, आपको याद होगा कि एक जमाना ऐसा था जब घरों में दिन की शुरुआत और अंत भी गीतों से होता था। हमें तो याद है बचपन में कि सुबह उठते ही रेडियो शुरू हो जाता था और रेडियो से सुबह सुबह भजन आया करते थे। हालांकि ये सिलसिला अभी

0: भी जारी है और बहुत सारे घरों में ये होता है, सुबह के मंगल गीत, त्योहारों के गीत, विवाह गीत, रात को माँ की गोद में जो लोरी सुनाई देती थी, ये सब हमारे जीवन का सहज हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन कहीं कहीं अब जैसे गायब हो रही,
1: पीछे छूटते जा रहे हैं ये सब बातें। लोरी केवल बच्चों को सुलाने की धुन नहीं थी बल्कि माँ के प्रेम, दादी नानी के अनुभव और परिवार की भावनाओं का संगीत था। और इसी तरह पारंपरिक गीत हमारे लोक संस्कृति की ऐसी धरोहर थे जिन्हें किताबों से नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर सीखा जाता था।
0: बिल्कुल सही बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये सीखो, सीखकर हम पता चला कि मोबाइल में ढूंढ रहे हैं गाना और लोरी, फिर उस अपने बच्चे को सुना रहे हैं, बल्कि सुन सुन के याद भी हो जाती थी, वो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी,
1: उसकी धुन भी याद हो जाती थी।
0: तो बाकायदा टेक्स्ट ढूंढा जाता है गाने के, गीत के टेक्स्ट कहाँ मिल जाए, तो लिरिक्स, हम लिरिक्स मोबाइल से पढ़ते हैं और गाते हैं, हम मतलब आप मतलब हम सभी। आज जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें पारिवारिक संरचना ही ऐसी हो गई है कि इन गीतों की गूंज जैसे गायब हो रही है, पहले की तुलना में कम होती जा रही है। बहुत सारे लोकगीत हैं, लोरियां हैं ऐसी जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सुना भी नहीं होगा, और बच्चे के रोने पर माँ का उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे गुनगुनाना, जैसे कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे, फिर वो मतलब अपने जैसे उस बच्चे का नाम लेके कि अपने बच्चे का नाम,
1: उसमें
0: कि
1: उसके नाम जोड़े जाते थे,
0: किसी का नाम जोड़ दिया, तो ये होता था और ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती थी, सहज निकलता था मुंह से। और लोरी के शब्द भी बड़े सरल होते थे लेकिन उनमें भावनाओं की बड़ी गहराई होती थी। कभी माँ बच्चे के भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी उसमें, और कभी उसके लिए सुख समृद्धि की कामना भी करती थी, और कभी प्रकृति, चांद, सितारों और पक्षियों को अपनी लोरी का हिस्सा बना लेती थी। और बहुत सारी महिलाएं जिनमें गीत और कविता की प्रवृत्ति होती थी उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके भीतर एक कवि
1: छिपी हुई प्रतिभा है जी। और दादी नानी की लोरियों में तो उनके अपने जीवन के अनुभव भी घुल जाते थे ममता जी, इसलिए लोरी बच्चे को नींद देने के साथ साथ परिवार की स्मृतियों को भी जीवित रखती थी। और फिर पारंपरिक गीत भी, हर अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते थे, विवाह गीत, शादी के अवसर पर महिलाएं मिलकर गाती थी, बन्ना बन्नी के गाने गाते थे। और
0: आपको याद है क्या बन्ना बन्नी? तो कभी हम लोग तैयारी से आएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे,
1: बट ढोलक चाहिए उसमें साथ में।
0: हाँ ठीक है, ढोलक की व्यवस्था कर लेंगे और पारंपरिक गीत और इसी पर एक सखी सहेली हम करेंगे। अब देखते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं कि उनको ऐसा वाला प्रोग्राम चाहिए या नहीं,
1: पसंद आएगा या नहीं।
0: जी
1: जी। और है ना ममता जी, इन गीतों में हंसी मजाक, भावनाएं, रिश्तों की मिठास और बेटी की विदाई का दर्द भी दिखाई देता था।
0: बारिश के मौसम में झूले पड़ते थे, महिलाएं मिलकर सावन के गीत गाती थी, और कोई जो पटना बोलते हैं पटोहा
1: जी,
0: तो उसको झूले को झुलाते थे, और इनमें प्रकृति प्रेम और मायके की यादों का सुंदर चित्रण भी मिलता था उन गीतों में
1: जी। और साथ ही घर में बच्चे के जन्म पर खुशी व्यक्त करने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे, ये परिवार के सामूहिक खुशी का प्रतीक होते थे। और त्योहारों के गीत पे होली, दीपावली, तीज, गणगौर, नवरात्रि और अन्य पर्वों पर भी अलग अलग क्षेत्रों की अपनी लोकगीत परंपराएं भी रही है।
0: स्कूलों में लोकगीत और लोरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, बच्चों को स्थानीय भाषा और लोकगीतों से परिचित कराया जाता था, याद है कि नहीं?
1: बिल्कुल याद है।
0: और विवाह और त्योहारों में रिकॉर्डेड संगीत के साथ पारंपरिक गीतों को भी स्थान दिया जाता था।
1: और अगर इन गीतों को भी अभी भी अगर स्थान मिले तो कितना अच्छा होगा ममता जी।
0: बिल्कुल अच्छा होगा, ये रहा। भाई हमारा तो ये कहना है कि ये जो गीत कम सुनने को मिलते हैं लोरी की शक्ल में, श्रोता इन्हें साथ में गुनगुना सकते हैं।

0: भाई देखिए सुना लीजिए, हमारे श्रोताओं को तो ये लोरी पूरी याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप भी याद कर लीजिए और हमें भी याद है। तो हमारे एक श्रोता ने पूरी लोरी लिख भेजी है, तो इनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। और जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, ये लोरी वहां से लेकर अपने बच्चे को आज सुना सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने पोते को, नाती को, जो भी घर में छोटा बच्चा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो सोते समय कोई न कोई लोरी, जैसे चंदा मामा दूर के लल्ला लल्ला लोरी, कोई गीत गाते हुए सुलाती थी। अगर मैं रुक गई तो कहते थे मम्मी गाओ ना, जब तक गहरी नींद न हो जाए मुझे गाना ही पड़ता था। पर अब वही बेटियों को लोरी गाने का टाइम नहीं है, बस एक ऑडियो लगाकर बगल में रख देती है। और कामकाजी लड़कियों को नौकरी से टाइम बेटाइम घर आना पड़ता है, घर के कामकाज, बच्चे लोरी गाने का टाइम ही नहीं, बच्चों के लिए लोरी गाने का टाइम ही नहीं है। देश विदेश में रहने के कारण या दूसरे शहरों में रहने के कारण दादी नानी भी पास नहीं रहती हैं। भाई यहां हम ये कहेंगे कि अगर महिलाओं की नौकरी तो वो आजीविका के कारण करती है, मजबूरी है और करना भी चाहिए, तो लेकिन पिता है घर में तो पिता को सुनाना चाहिए।
1: हाँ।
0: दादा दादी है,
1: सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: हाँ।
0: जो घर में है उसे सुनाना चाहिए। और मान लीजिए कि दादी दादी को नानी को बहुत सारी लोरियां याद है, तो अब तो फोन का जमाना है, फोन पर वीडियो कॉल करके भी
1: सुना सकते हैं। एक हमारी सखी ने लिखा है कि लोरियों से अपना बचपन और अपने बच्चों का बचपन याद आ गया, और साथ ही कहती थी कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले, आवा बबुआ के मुहुआ में घुटुक, ए चंदा मामा आ रे आओ। एक सखी ने लिखकर भेजी।
0: और जब घुटुक जिसपे दूध पिलाने के नाम पर माए बच्चे को करती है घुटुक, अपने बच्चे का नाम लेगा तो कई बच्चे मुंह पर हाथ लगा लेते हैं कि नहीं घुटुक नहीं,
1: दूध पिलाएंगे,
0: घुटुक नहीं बोलो, बस बाकी लोरी सुनाओ, ये भी होता था।
1: एक साथी कहते कि हमारे यहाँ बेटा होने पर जो मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर गीत कहा जाता है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लोरियां विलुप्त हो गई हैं लेकिन पारंपरिक गीत तो अभी भी बरकरार हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो शादी ब्याह नामकरण कुआं पूजन वगैरह, उसमें आज भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिनके बिना आयोजनों में आनंद नहीं आता। ये पारंपरिक गीत अपनी लोकल भाषाओं में गाए जाते हैं जिनको सुनना एक अलग ही एहसास कराया जाता है। अभी तो जब शादी ब्याह होते हैं तो बहुत सारे रस्म होते हैं कई दिन, और उसमें छोटे छोटे रस्म के मंदिर जाती हैं महिलाएं,
1: कुआं पूजन,
0: हाँ, फिर वो मिट्टी की मिट्टी होती है तो मिट्टी पूजन करती हैं, वहाँ एक लोकगीत होता है, फिर वो एक मतलब सात महिलाएं एक बर्तन को पकड़ती हैं जिसे क्या बोलते हैं, सिकोहली बोलते हैं या फिर भौरी बोलते हैं, तो वो उठाती हैं तो उस समय एक गाना गाया जाता है, फिर वहां से निकलती हैं तब सड़क पर जब चलती हैं तब एक गाना, फिर दरवाजे पर आती हैं तो
1: तब गाना,
0: बहुत सारे गाने हैं। लेकिन हाँ, इन परंपराओं को, इन गीतों

0: को आने वाली पीढ़ी को बताना उन्हें
1: हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल
1: जी। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी, लोरी एक शांत मधुर और सौम्य गीत होता है जिसे माँ या अभिभावक अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए गाते हैं, पर आज आधुनिक जीवन शैली, एकल परिवार और डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक लोरिया और लोकगीत विलुप्त होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन और टीवी पर सिर्फ लोरी मिलती है आत्मीयता और प्यार नहीं, नई पीढ़ी का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति से दूर होना भी तो इन मौखिक परंपराओं के लुप्त होने का एक मुख्य कारण है।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि दुनिया बदली सो बदली, मगर ताज्जुब ये कि अब शायद ही कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाती हो। माँ और बच्चे के रिश्ते में पालना और लोरी का अटूट संबंध रहा है। लोरी की दुनिया दरअसल सपनों की दुनिया है। माँ की लोरी में ऐसे हसीन और सुहाने वादे होते हैं कि माँ के चेहरे पर आते भाव से रीझ कर हर बच्चे के चेहरे पर पहले मुस्कान और फिर आंखों में नींद आ जाती है और नींद में सपने होते हैं, तब शायद सपनों में माँ भी होती है। हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसी लोरियां हैं जिनको सुनकर कानों में आज भी मिठास घुल जाती है।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि लोरी बच्चे के लिए भाषा का पहला परिचय है और पहला संगीत हुआ करती थी। माँ की थपकियों की लय और उसकी धीमी आवाज में बहता वात्सल्य बच्चे को न केवल गहरी नींद में ले जाता था बल्कि उसे मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव भी कराता था। लोरी माँ और शिशु के बीच एक अनूठा संवाद थी जिसमें लोक कहानियां, प्रकृति और पारिवारिक रिश्ते ताने बाने की तरह बुने होते थे।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आपके विचार से लगता है कि ये तो मेरी ही बात है। समय मिलने पर ही मैं अपने शिशु से बातें करती थी। सुलाते समय लोरियां तो जरूर, स्वरचित लोरियां भी बेटा सुनता है। रूप कथा कहानी सुनकर वो बड़ा हुआ है, मेरी स्वरचित कहानी भी सुना है। इससे बच्चों में कल्पनाशीलता तो बढ़ती ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप एक इसका एक तरीका और है कि आप कहानी सुनाने लगती हैं तो दो चार लाइन सुनाइए और फिर पूछिए बच्चे से फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो वो भी उसमें तो शामिल होंगे उसमें।
0: बिल्कुल वो लाइन जोड़ेंगे कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और वो जब दहाड़ता था तो बहुत सारे वहाँ जानवर डर के मारे दुबक जाते, फिर क्या हुआ, तो बच्चे वहाँ पर बताएंगे आपको, इससे उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार होता है।
1: एक साथी ने कहा चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोरी गीतों में से एक है। ये गाना बच्चों को सुला रहे और उनका मन बहलाने के लिए पीढ़ियों से गाया जाता है। 50 साल पहले जिनका बचपन बीता होगा शायद ही कोई बच्चा इस लोरी के बिना सोया होगा, या माँ अपनी माँ, दादी माँ, बुआ नानी, मौसी की गोद में खेलते हुए इस लोरी को नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं होगा।
0: तो चलिए फिर ये लोरी एक बार फिर से सुनते हैं।

0: ये वाली लोरी कितने श्रोताओं को याद है जरा बताइए, अगर याद है तो पूरा लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, क्योंकि ये तो सुरक्षित रहता है, जब भी श्रोता चाहेंगे आपके इस कमेंट को पढ़ सकते हैं। और देखिए ना सोनाली जी, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं इसके लोरी के लिए
1: जी।
0: कि एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे जहां बेटा होने पर मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहां सोहर कहा जाता है, बेटा नहीं बल्कि बेटा बेटी क्योंकि बेटी के पैदा होने पर भी अब सोहर गाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ढोलक वाला प्रोग्राम तो अवश्य पसंद आएगा। देखिए आ गई टिप्पणी, तो आप तैयार हैं?
1: हाँ बिल्कुल तैयार हूँ।
0: हाँ तो अगली बार ढोलक लेके
1: बैठेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुहा में घुटुक। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जब हम ये गाया करते थे और सुना करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटा हो या बेटी हो सोहर खिलौना सभी के जन्मोत्सव छठी बरही में गाया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी बहुत माँ को देखा है बच्चों को लोरियां सुनाती हैं और आजकल तो अलेक्सा भी आ गई है, तो मेरा पोता छोटा था तो अलेक्सा पर हम लोग लोरी लगा देते थे और सुनता था। एक श्रोता ने लिखा है कि गुजराती लोरी है जो हमारे भाभी जी गाकर अपने बेटे को सुनाती थी, भाईलो मारो डायो पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी भाईलो मारो गयो हसी। ये लोरी सुनाती
1: यानी कितनी मिठास है ना, जो भी भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें एक अलग ही मिठास होती है, फिर वो हमें भले ही समझ ना आए पर उसकी मिठास हमारे दिल तक पहुंच जाती है।
0: सोनाली जी अब देखिए आपको ढोलक की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है ढोलक संगत के साथ सभी सखियों सहेलियों के गाने के प्रोग्राम कीजिए ना, सृजन भारती में भी ऐसा प्रोग्राम हो आनंद आ जाएगा। तो चलिए अब तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो टिप्पणियां आ रही हैं
1: जी
0: उसे पढ़ दिया।
1: अब जैसे कहा एक श्रोता ने कहा कि हमारे बेटे के जन्म होने पर वो जो खास
0: सोहर
1: गाया जाता है, तो वे बेटी के जन्म पर भी गाना चाहिए, बेटे बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि मेरे तो तीन बेटियां ही है, किसी भी भेदभाव की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से बेटियों को पालने की कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे भोजन एजुकेशन साफ सफाई अच्छा पहनना ओढ़ा सभी बहुत बेहतर करने की कोशिश की, एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जिसके कारण आज बड़ी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और एक कत्थक डांस स्कूल भी चला रही है और दूसरी बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है, दूसरे के बेटों से बेहतर है, वो भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, क्या बात है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि ये पुरानी मान्यता गलत साबित हो चुकी है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है, असलियत में बेटियां विवाह के बाद भी माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमलों के कारण काफी सुधार आया है, लोग बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं।
1: एक हमारे साथी ने कहा कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग क्यों हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती है, चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार, फिर खुद से पूछती हूँ कि जब प्यार दोनों से बराबर तो सोच में फर्क क्यों, शायद ये भेदभाव जानबूझकर नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही सोच का असर है, अब कोशिश है कि दोनों को सिर्फ बराबर प्यार नहीं बराबर भरोसा भी दे सकूं, अब बेटियां इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वह एरोप्लेन उड़ाने के साथ साथ देश के लिए बंदूक लेकर भी खड़ी है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि हमने यानी कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर कॉलेज स्कूल में शिक्षा दिलाई है, सबको उनकी रुचि के अनुसार हायर एजुकेशन कराया और बेटे अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और बेटियां भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए बेटियों को पहले आत्मनिर्भर होने का पूरा मौका दिया है।
1: क्या बात है। एक सखी ने लिखा है मेरे ससुराल में

0: बेटियां बहुत कम है, मेरी बेटियों के होने पर बहुत खुशियां मनाई गई, मेरे सास ससुर नंद बहुत खुश हुए थे, कभी हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि इनके तो बेटियां ही है। इतनी अच्छी उदाहरण है।
1: बिल्कुल, एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग हो जाती है। बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है, लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती हैं। चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार हैं। फिर खुद से पूछती हूँ, जब प्यार दोनों से बराबर है तो सोच में फर्क क्यों।
0: एक साथी ने लिखा है कि बेटे बेटी में भेदभाव ये क्यों होगा, जब लड़का लड़की सब बराबर है तो आजकल सभी क्षेत्र में दोनों बराबरी से अपनी भागीदारी देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या ढूंढ लेते हैं बेटे और बेटी में जो हमें भेदभाव सिखाए। मैं तो बेटा और बेटी दोनों की माँ हूँ, इसलिए मेरे लिए सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, किसी भी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं होता। जितनी बेटी लाडली है उतना बेटा भी है, दोनों को एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि अगर बेटी बेटे में भेदभाव की बात करें तो आज के युग में भेदभाव रखने का प्रमाण कम होता जा रहा है, क्योंकि आज की बेटियां बेटों के समकक्ष हो गई हैं, जो नौकरी करते हुए पूरा घर पूरा परिवार संभाल रही हैं, इसलिए उसे नारायणी भी कहते हैं। कोई अतिशयोक्ति न होगी, ये भेदभाव पुराने जमाने में जरूर था और माना जाता था कि केवल बेटा ही वंश आगे बढ़ा सकता है, जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। असल में पुराने जमाने में भी बेटियों को बाकायदा सक्षम बनाया जाता था। बहुत सारी महिलाएं वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया गया है, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन भूल सकता है। तो ये समय है, हाँ ये जरूर है कि अब जो समय है इसमें बेटियों को भी बराबरी का मौका मिल रहा है। तो जो लोग जो जिन घरों में अभी भी भेदभाव है, मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम से, इस चर्चा से वो भेदभाव करना छोड़ देंगे।
0: और अब गीत सुन ले,
1: सुनते हैं ये गाना।
2: कह दिए होश में आ

0: भाई हमारे भी अब जाने का वक्त हो रहा है, कुछ कहना है?
1: एक सखी ने लिखा है कि लोरी और पारंपरिक गीत के विषय ने सखी सहेली में चार चांद लगा दिए।
0: क्या बात है, आपकी टिप्पणियों ने चार चांद लगा दिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।